0: गुण चंगियाईया तट सब को निवे आप को पर को निवे ना कोय तर तर राज को लिए निवे सो गोरा होय अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा शेष न वाय क्या थी है जर दे कुस दे जाहे महला पहला
1: पाठ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगल समादं मुख चूट में भूखन सारं कृपाल ते हाल विचारं गाल माला तिलक ललाटं दो तोती वस्त्र पाटं जे जान स्वर्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो त्यावे विन सत गुरवाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना

ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देरि में तव्हां भगत कंवरराम साहिब जो सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ अॼु जा महिमान आहिनि उहो ॿुधंदो। आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशकीअ कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त भगत कंवरराम साहिब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

तव्हां भगत कवरराम साहिब जो सदाबहार आवाज़ ॿुधी रहिया हुआ। हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर पेश आहे तबसरो। केंद्रीय व्यापार ऐं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ॿुधरु ॾींहुं जापान जो पंहिंजो सरकारी दौरो पूरो कयो। इहो दौरो टोकियो, नागोया, ओसाका में वॾे सतह ते थियल मुलाक़ातनि में सिलसिले खां पोइ आयो, जंहिंजो मक़सदु भारत में जापानी सीड़पकारी खे तेज़ करण ऐं भागीदारीअ खे मज़बूत करण ऐं उभरजंदड़ ऐं हुकूमत अमली वारे खेत्रनि में बेतरफ़ी आर्थिक सहकार खे वधाइण हो। हिन दौरे जे दौरान श्री गोयल जापान सरकार जे वॾनि अॻवाननि, माली इदारनि ऐं कारोबारी अफ़सरनि सां, जिन मटीह खां वधीक वॾियुनि जापानी कंपनियुनि ऐं माली इदारनि जी अॻवानी शामिल हुई, जिन जूं भारत में अहम या वधंदड़ दिलचस्पियूं आहिनि, उन ते वसी ॻाल्हि ॿोल कई। इन मुलाक़ातनि में सीड़पकारी खे वधाइण, सप्लाई चेन खे मज़बूत करण, टेक्नोलॉजी जी भागीदारीअ खे वधाइण ऐं ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में कारोबारीअ खां कारोबारी सहकार लाइ नवां रस्ता ठाहिण ते ध्यानु ॾिनो वियो। हिन दौरे जे दौरान हिकु अहम मक़सदु भारत जे लाइ हिकु डिघी मुदती जापानी संस्थागत पूंजी खे जुटाइण हो। श्री गोयल ॿियनि वॾनि सीड़पकारी ऐं माली इदारनि खां सवाइ MUFG, मिज़ुहो, निमूरा, निपॉन लाइफ, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान ऐं मॉर्गन स्टैनली MUFG सिक्योरिटी समेत अॻवान जापानी माली इदारनि सां राब्तो कयो। इन ॻाल्हि ॿोल में भारत में सरमाए ऐं वहाउ खे वधीक मज़बूत करण ऐं मुल्क जे वधंदड़ बुनियादी ढांचे, पैदावारी, टेक्नोलॉजी ऐं माली माहौलियाती व्यवस्था जी हिमायत करण जे मौक़नि ते ॻोल्हि कई। मंत्रीअ कैपिटल गुड्स, मशीनरी ऐं ऑटोमेटिव, सेमी कंडक्टर ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप ऐं विदेशी संस्थागत निवेशकनि ते सेक्टर विशिष्ट गोल्ड टेबल मीटिंग जी अध्यक्षता पिण कई। इन राब्ते जापानी ऐं भारतीय कारोबारनि जे हिकु वसीअ तबिके खे हिकु ठाहे ऐं ठोस निवेश, टेक्नोलॉजी ऐं कारोबारी भागीदारी जी सुञाणप करण लाइ हिकु मंच मुहैया कयो। ख़ासि करे भारत जे टीयर ब ऐं टीयर टे लाइ सप्लायर इको सिस्टम ऐं MSME खे शामिल कंदे सेमी कंडक्टर ऐं AI गोल्ड टेबल मीटिंग में श्री गोयल 2032 ताईं सेमी कंडक्टर जी घुर्ज 15,000 करोड़ अमरीकी डॉलर ताईं पहुचण जे अंदाज सां हिकु विश्व जे मुक़ाबले वारे सेमी कंडक्टर इको सिस्टम ठाहिण जी भारत जे ख़्वाहिश ते रोशनी विधी। हुन सरकार जी 6 स्तंभ वारी हिकमत जी रूप रेखा पेश कई, जंहिं में चिप डिज़ाइन, सेमी कंडक्टर मशीनरी ऐं मवाद फैब्रिकेशन, ATMP व OSAT तहक़ीक़ ऐं तरक़ी ऐं क़ाबिलनि जी तरक़ी शामिल आहिनि। श्री गोयल अॻियां ज़ोर ॾींदे चयो त भारत जो माहिर ऐं नौजवाननि जो वॾो ज़खीरो जापान जी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जी महारत ऐं पैदावारी सलाहियतुनि सां गॾु भारत में आलमी मयार जे सेमी कंडक्टर ऐं टेक्नोलॉजी जी इनकलाब खे तेज़ करे सघे थो। हुन भारत जी वधंदड़ नवीकरणीय ऊर्जा जी क़ाबिलियत ऐं मज़बूत राष्ट्रीय पावरग्रिड खे सेमी कंडक्टर ठाहिण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं डेटा सेंटर जहिड़नि ऊर्जा वारी सनअतुनि जे लाइ अहम सहूलियत ॾिण वारनि तौरु नुमाया कयो। सेमी कंडक्टर ऐं AI जी चर्चाउनि में हिसो वठंदड़ जापानी कंपनियुनि सेमी कंडक्टर मवाद ऐं उपकरण, पावर सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स ऐं लागापियल उन्नत टेक्नोलॉजियुनि में भारत में पंहिंजी मौजूदगी

ये थे उदाहरण में दिलचस्पी जाहिर गई। चर्चाओं में उभरंदर सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स, झेलो की ढोलेरा एं सानंद में पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, झे में भरोसेमंद बिजली, अल्ट्रा प्योर पानी, माहिर जनशक्ति एं समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल आहिन। उन विषय ते पिण गालबोल कई। मंत्री जापान जे माली व्यापार एं व्यापार मंत्री एच ई मिस्टर एकेजावा रयोसी सा गड गड जेट्रो जेबीआईसी जेआईसीए जे वरिष्ठ नुमाइंदन सा गड गालबोल कई। गालबोल में व्यापार एं सड़क लचकदार सप्लाई चेन वधाई में सहकार टेक्नोलॉजी बुनियादी ढांचो एं भारत जी तरक्की जी कहानी में जापानी कंपनियों जी वधीक शामिल हुआ। 1500 खां वधीक अगवाणन जापानी कंपनियों जी नुमाइंदगी कंदड़ जापान कारोबारी महासंघ सा गड पेंजे गालबोल में श्री गोयल भारत जापान जी माली भागीदारी के वधंदर दायरे ते जोर डिनो, जै में रवायती व्यापार एं गड़ोगड़ माली सलामती लचकदार सप्लाई चेन जदीद टेक्नोलॉजी साफ सुथरी ऊर्जा बचाव बाबत लागापेल पैदावार एं मानुन जे विच में राब्तो शामिल आहिन। हुन जापानी कंपनियों के भारत में सड़पकारी वधाइण एं पेंजी मौजूदगी के वधाइण जी दावत डिनी। जापानी कारोबारी अगवानन मंत्री जो गर्मजोशी सा स्वागत कयो ए मुख्य मसलन ते संदस रसाई ए सरगर्म गालबोल जी सारा कई। भारत जी तरक्की जी कहानी में पेंजी मजबूत आथत के वरी जाहिर कंदे कारोबारी अगवानन समूरे भारत में हिकमत अमली वारन लगापन के वधाइण ए सिड़पन में विविधता आनन जे लाए पेंजी पाबंदगी जाहिर कई। श्री गोयल नागोया में यूक्रेन एं बेन अगवाण कारोबारी संगठन जे सहकार सां आयोजित कयल भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप रोड शो के भी संबोधित कयो। क्यूब क्षेत्र जो 80 खां वधीक जापानी कंपनियों इन रोड शो में शिरकत कई, जैमें ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, मशीन टूल्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स एं एसएमई ते गुफ्तगू कई वही। श्री गोयल जोर डिनो त भारत जे नौजवान सलाहियत वारन जे समूह ते एं क्यूब क्षेत्र जी टेक्नोलॉजी एं इंजीनियरिंग जी ताकत जो मिलाप नई पैदावारी एं टेक्नोलॉजी जी भागीदारी लाए वड़ी गुंजाइश पेश करे थो। भारत जे मजबूत आर्थिक बुनियादन के नुमाया कंदे श्री गोयल जिक्र कयो त आलमी मुश्किलात जे बावजूद भारतीय आर्थिक 7.5% वाध दर्ज कई ए 2047 ताई 30 trillion अमरीकी डॉलर जी इकोनॉमिक्स बणजण जे ख्वाहिश डाहो अगते वधी रही आहे। हुन जोर डिनो त भारत जो वडो ए वधंदर ख्वाहिशमंद विचो तबको वधंदर डिजिटल इकोनॉमिक्स मजबूत बैंकिंग सेक्टर तजदीद जोग ऊर्जा जी सलाहियत ए बेहतर कारोबारी माहौल डिगी मुदती सेड़पकारन लाए अहम मौका पैदा करे रहा आहिन। इन दौरे सा इंदर ढाके में भारत में जापानी निजी सेड़प में 2 trillion जेपीवाई जे हदफ जे लाए कोशिशों अगते वधियों गहते 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे जापान दौरे दौरान राधी थेल हुई। श्री गोयल भारत जी तरक्की जे इंदर मरहले में खास करे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर माली शेवाउन सेमीकंडक्टरन एआई साफ ऊर्जा ए बेन इंदर पीढ़िया जी सनयतन में जापानी इदारती सड़पकारन ए कंपनियों जी वधीक शिरकत जी घुर कई। मंत्री निकेई एशिया पारा संचालित एक फायरसाइड चैट में भी शिरकत कई, जैमें जापान ए भारत जे कारोबारी ए मीडिया कम्युनिटीज सा बेतरफा आर्थिक लागापन जे वधंदर शकलन ते गालबोल कई वई। इन दौरे में भारत जापान खास हिकमत अमली ए भागीदारी में मजबूत रफ्तार जी तस्दीक कई ए तजारत सड़पकारी टेक्नोलॉजी ए
इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन

खे वधीक घेरो करण जी कोशिशुनि खे नई रफ़्तार ॾिनी। इन भारत जे आलमी मुक़ाबले वारे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ऐं सीड़पकारी जे मर्कज़ में तब्दील थियण में जापान जी वधीक शिरकत जे बुनियाद खे मज़बूत कयो ऐं गॾोगॾु बाहिमी फ़ाइदेमंद तरक़ी ऐं जिदत जे लाइ नवा रस्ता खोलिया।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ से। तेखा अलावा तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते बुधी सकंदा आहियो।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर अचो त अच्छा असां ॿुधूं अॼु जो महिमान, ऐं अॼु जा महिमान आहिनि दुष्यंत आहुजा ऐं वीना श्रृंगी।
1: अॼु जो महिमान हिन प्रोग्राम तहत असां हिकु अहिड़ी शख़्सियत खे नींढ ॾिनी आहे जिन जो वास्तो संगीत जे दुनिया सां आहे। उन्हनि जो दादा राम पंजवाणी जे मुख़्तलिफ़ संगीत जे प्रोग्रामनि में जेको साथ रहियो आहे दुष्यंत आहुजा आहे। त मां दुष्यंत आहुजा जी अॼु जे महिमान तहत पंहिंजे हिंद ऐं सिंध जे ॿुधंदड़ तरफ़ां ऑल इंडिया रेडियो जे सिंधी सर्विस तरफ़ां मरहबा करियां थी। ऐं दुष्यंत, असां तव्हां सां गुफ़्तगु कंदासीं संगीत जे हवाले सां। तव्हां मास्टर चूहर राम जेके तव्हांजा पिता आहिनि, ऐं इन खां अलावा पंहिंजो जेको तव्हांजो वॾो भाउ आहे जयकिशन, उन्हनि जी जेका आहे तव्हांखे संगीत जेको आहे उन्हनि जी विरासत में छत्र छाया में तव्हां जेका आहे से तव्हांजो संगीत परवान चढ़ियो, त इहो शौक़ु जेको आहे सो घर वटां मिलियो। ऐं जॾहिं असां इन शौक़ जो ज़िक्र कयूं था त तव्हांखे इहो यादि आहे त पहिरीं रचना तव्हां कहिड़ी जेका आहे?
2: बिल्कुलु, मां भैरवी में इहा रचना कई आहे शाह साईं जे राणल इंदुम रात।
1: जी जी, त राणो जेको
2: तव्हांखे मां ॿुधायां थो।
1: असांखे ख़ुशी थींदी त तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल खां वधीक कुझु लाइनूं जेके आहिनि तव्हांजी रचना।
2: ज़रूरु, मां उहो ई चाहींदुसि।
1: जी जी,
2: मां उहा तव्हांखे रचना ॿुधायां थो।

0: त उते तव्हां सिर्फ़ सिंधी ज़बान में गायो था भुज में
1: मां सिंधी ऐं गुजराती पिण गुजरातीअ में मां 10 सालनि खां ॻायां थो
0: त गुजराती में जेको आहे तव्हां संगीत जेको पंहिंजो पेश कयो था त उहो कहिड़े टाइप जी तव्हां खणो था रचना
1: ग़ज़लूं ऐं गीत बिल्कुल
0: ऐं तव्हांजो गुजरात एकेडमी सां तकरीबन वास्तो रहियो आहे त उते तव्हांजो कहिड़ो योगदान आहे
1: उते उन्हनि जो मां सुगम जेका कमेटी आहे सभ्य आहियां
0: जी जी
1: ऐं उन्हनि जा जेके बि कॉन्सर्ट थींदा आहिनि सॼे गुजरात में उनमें बि इन्हनि जा चुनंदा आर्टिस्ट जेके आहिनि जीअं त पुरुषोत्तम उपाध्याय रास बिहारी देसाई हर्षिदा रावल जनार्दन रावल जेके उतां जा वॾा वॾा आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि सां असांखे ॻाइण जो मौको मिलंदो आहे ऐं इहो मुंहिंजो फ़ख्रु आहे भई मां सिंधी थी करे उन्हनि सां गॾु अॼु सघां थो
0: त उते तव्हां ॾिसो था जेको गुजराती संगीत जो हले थो हिन वक़्तु रुझान जेको आहे ऐं असांजो सिंधी संगीत जेको भुज वग़ैरह साइड ते त हुन में कुझु जेको आहे सुरनि जो मेलाप या कुझु अहिड़ो तर्ज़ मिलंदड़ जुड़ंदड़ आहे ईअं ॿोली त ॻाल्हाइनि था सम्झी वेंदा
1: आहियूं सही ॻाल्हि आहे पर असांजो फोक मूंखे लॻे थो हुननि खां घणो रिच आहे
0: जी जी
1: ज़बरदस्त रिच आहे पर हुननि जी जेका हीअं मौसीक़ी में सुगम संगीत हुननि जो आहे उहो असां खां घणो रिच आहे सिंधी फोक असांजे पासो
0: वधीक आहे
1: हा बिल्कुल
0: भला इहो जेको फोक संगीत जीअं तव्हांखे चयो त तव्हांखे विरसे मिलियो त अव्हांजो पिता बि जेको आहे उन तरफ़ हुननि जो रुझान हो
1: हा पाण ॻाईंदड़ हुआ हुननि खे मास्तर चूड़ामी करे मञियो वेंदो आहे सिंध में बि उहे क्लास हलाईंदा हुआ संगीत जा क्लास हलाईंदा हुआ उन्हनि बि कंहिं टाइम मास्टर चंदर दादा राम पंजवा इन्हनि सां गॾु ई प्रोग्राम कया आहिनि दादा दुखायल सां गॾु घणा साल रहिया
0: जी जी
1: उन्हनि गॾु प्रोग्राम सॼे हिन सिंध में घुमिया आहिनि
0: तव्हांजा पिता जेके आहिनि ऐं तव्हांजो वास्तो सिंध में कहिड़े इलाइक़े सां
1: असां लाड़काणे जा
0: आहियूं
1: पर मुंहिंजो जनम हिंद में थियल
0: आहे तव्हां विरहाङे खां पोइ जी पैदाइश आहियो
1: बिल्कुलु
0: ऐं तव्हां जॾहिं आया तव्हांजा वॾा जेके आहिनि से डायरेक्ट भुज में आया या ॿिए कंहिं हंधि
1: न असां पहिरीं कल्याण कैम्प में लथा हुआसीं ऐं उन खां पोइ पंजाब में असांजो चवणु हिन पासे थियो कच्छ में
0: त हाणे उते ई तई रिहाइश आहे त मां इहो चवंदसि जीअं तव्हां शाह लतीफ़ जो ई राणो ॻातो त इन खां अलावा ऐं फोक संगीत जो बि तव्हां ज़िक्र कयो त उन में सिंधी फोक में कहिड़ो तव्हांजो पसंदीदा इहे त घणेई तमामु रिच आहे पर हिकु ॿ लाइन जेका आहे असांजे ॿुधंदड़ खे ॿुधाईंदा त उहो उन्हनि खे सुठो लॻंदो
1: ज़रूरु।

वाह, तव्हां ही ख़ूबसूरत जेको आहे राणो असांखे ॿुधायो, मिठाई घोट शाह अब्दुल लतीफ़ जो। ऐं मां हिन सिलसिले में दुष्यंत हिकु ॿी ॻाल्हि चवणु चाहींदसि, जीअं त तव्हांजो रेडियो सां ॿिनि ॾहाकनि खां वठी तक़रीबन वास्तो आहे,

0: दुष्यंत एॾो ख़ूबसूरत ही जेको तव्हां असांखे ॿुधाई रचना जेका गीत ॿुधायो त दिलि चाहे थी त असीं ॻाल्हि ॿोल न करियूं, सिर्फ़ संगीत जो सिलसिलो ई जारी रहे ऐं ॻाल्हाइण जी का गुंजाइश न रहे। पर वरी बि के मजबूरियूं के सुवाल ज़हन में उथनि था, जहिड़ो कि तव्हांजे पसंदीदा शायर जे बारे में ॼाणण जी असांजे मन में उकीर आहे। इन खां अलावा सिंध जो जेको संगीत आहे, जेके सिंध जा ॻाईंदड़ आहिनि, उन्हनि जे बारे में बि तव्हांजी राय ॼाणण चाहींदासीं।
1: उन्हनि सिंध में पहिरें दा फनकार आहिनि, उन्हनि मां मोहम्मद जुमन, मास्टर मोहम्मद जुमन, मास्टर मोहम्मद यूसुफ, वहीद अली, इन्हनि जो को मटु कान्हे, आदिला परवीन, इहे सुरीला आर्टिस्ट आहिनि। असांखे उन्हनि मां जे बू बि मिले त असां लाइ घणी इबादत।
0: तव्हां थर जो ज़िक्र कयो ऐं थर जो इलाइक़ो जेको आहे उनजी वाबस्तगी हिकु ख़ासि करे किरदार मारवी सां रही आहे, हुबल वतनी वाले सां, त उनजे का कोई कलाम उन टाइप जो तव्हांखे हिन वक़्तु या ॾोहीड़े सां को पहाड़ी में राग वग़ैरह ज़हन में अचे त असीं ॿुधण चाहींदासीं?
1: ज़रूरु ॿुधाईंदुसि।
2: तव्हां अॼु जो महिमान दुष्यंत आहुजा जे बारे में ॿुधी रहिया हुआ। हींअर अचो, हींअर पेश आहे ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। नेपाल में बोट जे हादसे खां पोइ 84 भारतीय शहरी बची विया, जॾहिं 320 भारतीय शहरी अञा ताईं राब्ते खां ॿाहिरि आहिनि। भारत बोट मुतासिर नेपाल ॾांहुं 10 इंसानी इमदाद खणी 30 जहाज मोकिलियो। नेपाल तिब्बत में तबाही कंदड़ बोट में मरण वारनि जो अंग 579 थी वियो। सरहद जे ॿिन्ही पासनि खां 1900 खां वधीक माण्हू गुम आहिनि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अॼु उज़्बेकिस्तान ऐं किर्गिस्तान जे चइनि ॾींहनि जे दौरे ते निकरंदो। नई दिल्ली में गडि॒यल दफ़ाई कमेटी जे इफ़्ताही इजलास दौरान बेतरफ़ी रक्षा सहयोग खे वधीक मज़बूत करण ते मुतफ़िक थिया ऐं भारत जे विलावान सेंथल कुमार फाइनल में घर जे पसंदीदा बालाज फारकास खे शिक्षक ॾियण खां पोइ हंगरी में PSA बुडापेस्ट आकाश ओपन खटियो ओपन टाइनियल खटियो

0: तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजो प्रोग्राम पूरो थी रहियो आहे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी

0: यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग अब भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्यों के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी वे भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें अभी भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और भाषा संबंधी त्रुटियां पाई जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his two-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप सुनेंगे विधि शर्मा।

द्वारा गाए भजन आपके साथ संगत कर रहे हैं सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर पशुपतिनाथ मिश्रा।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में विधि शर्मा द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर पशुपति नाथ मिश्रा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:30 और

पूरे 30 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में।

जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत तो हुई है अजूबा गीत के साथ और आज ना हम बात भी कुछ करेंगे अजूबे के टाइप की, यानी कुछ ऐसी बात जिसका हमसे कहते हैं ना रिश्ता होता है, हम जिन्हें कुछ ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें हम रेगुलर देखते हैं लेकिन नहीं देखते हैं। जी हाँ, आज मैं सुबह ना आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी कि आपने नाश्ता किया या नहीं किया, मैं ये पूछूंगी आपका दिन कैसा जा रहा है, क्योंकि दिन की शुरुआत तो दोस्तों अभी हुई है और वीकेंड है तो थोड़ा सा लेट ही होती है वैसे तो, लेकिन आई एम श्योर कि आप ये जो कार्यक्रम है ना उसे जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे श्रोता हमारा जो ये शो है ना गीतों भरी गुड मॉर्निंग कभी भी मिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने आसपास देखने के लिए कहूंगी। जी हाँ, आज कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, आज सिर्फ पूछेंगे कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं, सिर्फ इस बारे में आज हम बात करेंगे देखने के लिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में ना दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हर दिन दिखाई देती हैं लेकिन हम उन्हें कभी देखते नहीं हैं। है ना थोड़ा अजूबे वाली बात कि देखते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। लगा आज आपको अजीब, तो चलिए आज की सुबह कुछ ऐसी ही चीजों को थोड़ा गौर से देखते हैं और बात करते हैं उन्हीं चीजों के बारे में, जैसे कि दरवाजा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे दरवाजे की, जिसे हम दिन में न जाने कितनी बार खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, वो होता है दरवाजा। सुबह घर से निकलते वक्त दरवाजा बंद किया, दरवाजा खोला, स्कूल पहुंचे तो दरवाजे में से होके हम अपने स्कूल में घुसे, क्लासरूम में घुसे, ऑफिस गए तो तीसरा दरवाजा हमें मिला। जी हाँ, दरवाजे के जरिए हम अंदर गए अपने ऑफिस के और उसी दरवाजे से शाम को वापस आ गए। लेकिन कभी सोचा है एक दरवाजा सिर्फ रास्ता नहीं होता, वो दो जगहों के बीच की सीमा होता है, एक तरफ घर की दुनिया और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया। और मजेदार बात तो ये है कि दोस्तों दरवाजा कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं पूछता कि तुम खुश हो या परेशान, वो तो बस खुलता है और बंद होता है और रास्ता दे देता है आपको आगे बढ़ने के लिए। शायद हमें कभी कभी जिंदगी के दरवाजों की तरह

आशा की पहल।

जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। बात यहाँ चल रही है कुछ देखने वाली चीजों की जिन्हें अक्सर हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते हैं। ऐसी ही दूसरी चीज है सीढ़ियाँ। जी हाँ, लेडर्स, और कई बार आम बोलचाल की भाषा में ना उसे जीना भी कहते हैं। होता है ना, घरों में भी होता है, ऑफिस में भी होता है और बहुत सारी जगहों पे होता है एक्चुअली में, जहाँ अगर हमें कहीं ऊपर जाना है तो वो जो है ना हमें मिल जाता है। जी हाँ, अब जरा अपने आसपास की सीढ़ियों को ही याद कीजिए। हम रोज उन पर चढ़ते हैं लेकिन कभी उनकी तरफ देखा नहीं, ना नहीं देखा। सीढ़ियों की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो कभी एक छलांग में मंजिल तक पहुंचाने का दावा नहीं करती है। वो कहती है एक कदम, फिर दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम, बस ऐसे ही सारे कदम, और ऐसे ही धीरे धीरे धीरे धीरे आप ऊपर पहुंच जाते हैं। शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, हम मंजिल को देखकर परेशान हो जाते हैं लेकिन सीढ़ियां हमें सिखाती हैं कि बस अगला कदम उठाओ और बढ़ जाओ अपनी मंजिल की ओर।

कि अगर आसमान छूना है तो सीढ़ियों का सहारा तो लेना पड़ेगा और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना होगा और आसमान को छूना होगा। चलिए चलते हैं अगली चीज की ओर जो हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते हैं, सीरियसली तो बिल्कुल ही नहीं लेते, कभी कभी बहुत जल्दीबाजी होती है ना, वो है ट्रैफिक सिग्नल। जी हाँ, अब आते हैं शहर की एक ऐसी चीज पर जिसे देखकर मैं शायद ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे यार फिर से एक और रेड लाइट और लेट हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, एक छोटी सी रेड लाइट सैकड़ों लोगों को रोक देती है। देखिए कितनी पावर है ना उसमें। कभी सोचा है क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ना रुकना भी जरूरी होता है दोस्त। लाल बत्ती हमें कोई लंबा भाषण तो नहीं देती है, बस ये बताती है कि आप जो है ना इन तीन रंगों के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में चले, पहले रुके, तैयार रहे और फिर चले। जी हाँ, काश जिंदगी में भी ऐसा कोई सिग्नल होता। अगर ऐसा सिग्नल होता ना दोस्तों, वाकई में हमारी जो लाइफ है ना सॉर्टेड होती। किसी मुश्किल समय में लाल बत्ती जलती है और कहती है अभी रुको, फैसला मत लो। जल्दीबाजी में फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, और जब सब सही समय आता है तब हरी बत्ती कहती है बस यही सही वक्त है, अब चलो।

जहां वक्त हो चुका है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:45। आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता के साथ।

चलते हैं अगली चीज की ओर। अगली ऐसी चीज जिसे हम अक्सर देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, वो है पार्क की बेंच। जी हाँ, वो खुद कहीं नहीं जाती है दोस्तों। सुबह कोई उस पर बैठकर अखबार पढ़ता है, तो कोई बैठकर गप्पे मारता है, तो कोई चुपचाप सामने बस देखता रहता है कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, तो कोई थक कर बस कुछ मिनट आराम करता है। बेंच सबको जगह देती है, लेकिन किसी की कहानी अपने साथ नहीं ले जाती। कितनी सारी ऐसी कहानियां हैं उसके सामने जो है गुजर जाती हैं, और वो बस चुप रहती है और उन्हें देखती रहती है। शायद इसीलिए कुछ चीजें बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं।

0: सब स्कूल तो गए होंगे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब अपनी जिंदगी में हर कोई स्कूल तो जरूर ही जाता है, तो स्कूल की घंटी याद है कुछ?
1: जी हाँ,
0: स्कूल की घंटी उन लोगों के लिए जो स्कूल जाते हैं, एक आवाज और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। क्लास शुरू होती है या फिर छुट्टी हो जाती है, लेकिन घंटी सिर्फ स्कूल में नहीं बजती दोस्तों, जिंदगी में भी कई बार ऐसी घंटियां बजती हैं। कभी कोई मौका कहता है अब शुरू करो, कभी कोई परिस्थिति कहती है अब आगे बढ़ो, और कभी जिंदगी खुद कहती है अब अगला अध्याय जो है ना शुरू करने का समय आ चुका है, क्योंकि उसकी घंटी बज चुकी है। तो चलो उठो और आगे बढ़ो।

खिड़की, जहाँ आप सभी के घरों में खिड़की होती है, ऑफिस में होती है, स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, जहाँ खिड़की खुद कहीं नहीं जाती लेकिन दुनिया को अंदर ले आती है। कभी बैठे हैं आप खिड़की पे, खिड़की के पास, और देख रहे होते हैं पूरी दुनिया को, तो बस यही काम होता है खिड़की का, आपको पूरी दुनिया दिखाने का, जैसे धूप, हवा, बारिश, आवाजें, पेड़ों की हलचल, आसमान, सब कुछ। और शायद खिड़की हमें एक खूबसूरत बात भी सिखाती है दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है, हम जहां हैं उसके बाहर भी बहुत कुछ है, नई जगह है, नए लोग हैं, नए अनुभव हैं और नई कहानियां भी हैं। इसलिए अगर आज कभी लगे कि जिंदगी एक जगह रुक गई है, तो बस एक बार खिड़की खोलकर बाहर जरूर देखिएगा, शायद आपका नजरिया बदल जाए दुनिया को देखने का।

दोस्तों, हम जिंदगी में ना बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं, जैसे नई जगह, नई चीजें, नए अनुभव, लेकिन कभी कभी नया देखने के लिए ना जहाँ जाने की जरूरत नहीं होती है, यानी उस जगह जाने की जरूरत नहीं होती है, बस पुरानी किसी चीज को नई नजर से देखने भर की जरूरत होती है। जैसे कि एक ही सड़क हो जिस सड़क पर आप रोज जाते हैं, चलते हैं, एक ही घर जिस घर में आप रहते हैं, एक ही पेड़ जो ठीक आपके घर के सामने है, एक ही रास्ता जिस रास्ते से आप रोज गुजरते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन बस नजर बदल जाए तो वही दुनिया थोड़ी अलग लगने लगती है।

तो दोस्तों, आज जब आप अपनी रोज की जिंदगी में निकले ना, तो सिर्फ रास्ते से मत गुजरिएगा, रास्ते को देखिएगा, उसे महसूस कीजिएगा। सिर्फ घड़ी को मत देखिएगा, समय को महसूस कीजिएगा। सिर्फ खिड़की मत खोलिएगा, बाहर की दुनिया को देखिएगा और उसे भी महसूस कीजिएगा। और सिर्फ लोगों के बीच से मत गुजरिएगा, कभी उनकी मुस्कान को भी नोटिस कीजिएगा। क्योंकि जिंदगी में ना बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे सामने रोज होता है, लेकिन हमारी नजर वहां तक पहुंचती ही नहीं। मैं हूं आपकी दोस्त और आज की इस सुबह का छोटा सा संदेश बस इतना कि कभी कभी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती है, उसे देखने का अपना तरीका बदलना होता है। बस इसी खूबसूरत सोच के साथ आपकी सुबह खूबसूरत हो, आपका दिन शानदार हो। और आज कम से कम एक चीज ऐसी जरूर कीजिएगा, दिखाइए, जरूर दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी सच में देखा ही नहीं था। और बस इसी आशा के साथ आपसे विदा जाती है आपकी ये दोस्त। आप अपना ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए और स्वच्छता रखिए। जल्द ही आपसे मिलने का वादा लिए इजाजत चाहती है आपकी ये दोस्त। टेक केयर, बाय बाय।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
1: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी भर भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं। 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल ज्यादा बचत ज्यादा काम। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंट्रल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तमिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अफर्ट ट्रांजिट्री में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ 30 विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार

0: दोनों सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 0112308871 0112308719। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
0: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सीएनजी के मूल्य में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित सीएनजी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
0: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में

0: देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमरीका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिन्दुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थाने गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमरीका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितम्बर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary.

0: खबर तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से दो दिन के दौरे पर उज्बेकिस्तान जाएंगे। वजीर आजम उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव की दावत पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यह वजीर आजम का उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में बताया कि अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर सदर मिर्जियोयेव के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमा ताशकंद में दो तरफा अहमियत के हामिल मामलात के पूरे मंजरनामे पर बातचीत करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के 10 सरकर्दा तजारती शराकतदारों में शामिल हैं, जिसकी दो तरफा तजारत तकरीबन $1 अरब है और ये गुज़श्ता चंद वर्षों में तजारत में कई गुना इजाफे का नतीजा है। मेडिकल कानकनी और दिफा अहम शोबे हैं, जिनमें बाहमी ताउन के बहुत से इम्कान मौजूद हैं। दिफा के शोबे में भारत का उज्बेकिस्तान के साथ देरीना और कसीर जेती इश्तराक है। साल 2019 में दिफा से मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया गया था। भारत और उज्बेकिस्तान मुश्तरका फौजी मशकों दोस्तलिक में हिस्सा लेते रहे हैं और इस सिलसिले की सातवीं मशक इस साल अप्रैल में उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस तनाजुर में वजीर आजम मोदी का दौरा बहुत अहम है और तवक्को है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक और कारोबारी साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने की बुनियाद उस्तवार होगी। ताशकंद से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: उज्बेकिस्तान में भारतीय सफीर स्मिता पंत ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तेजी के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सभी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा।
2: डिस्पाइट कनेक्टिविटी बॉटलनेक्स, इंडिया और उज्बेकिस्तान नेचुरल मार्केट्स हैं। हम ज्यादा निर्यात कर सकते हैं। हम इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी, केमिकल, डाई, सर्जिकल इक्विपमेंट्स इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बस ये रिसोर्स रिच नेशन है। स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है वो है कनेक्टिविटी। तो इसको लेके दोनों लीडर्स बात करेंगे, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।
0: मोहतरमा स्मिता पंत ने यह भी कहा कि गुज़श्ता कुछ वर्षों में भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कारोबार में कई गुना इजाफा हुआ है और वजीर आजम के इस दौरे में दोनों मुल्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रुकावटों को दूर करने पर बातचीत करेंगे। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस तरह भारत इस मिसाइल निजाम का बाजाब्ता खरीदार बन गया है और दोनों मुल्क भारत में इसे मुश्तरका तौर पर तैयार करने की समत काम करेंगे। भारत ने अमरीकी सिफारतखाने और कौंसिल खाने ने एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए पेशकश और मंजूर करने से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। सिफारतखाने ने कहा है कि अमरीका भारतीय फौज के इस कदम का खैर मकदम करता है। भारत में अमरीका के सफीर सर्गियो गौर ने कहा है कि इस समझौते से भारतीय फौज के लिए अमरीका की मदद की मजबूती का इजहार होता है और इससे दोनों मुल्कों की दिफाई सनतों के लिए मिलकर काम करने के नए मौके पैदा होंगे। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 579 तक पहुंच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल सरकार की तरफ से जारी किए गए आदादशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में 101 अफराद जेर इलाज हैं। इसके अलावा जो 1924 अफराद लापता हैं, उनमें पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले एहलकार, गैर मुल्की शहरी, सिविलियन अफराद और सिक्योरिटी और सरकारी एहलकार शामिल हैं। पनबिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले 933 अफराद के लापता होने की खबर है, जबकि 517 गैर मुल्की शहरियों से अब तक राबता कायम नहीं हो सका है। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू के लिए रवाना हुई। वजीर खारजा डॉ एस जी शंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध के रोज अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राबता कायम नहीं हो सका है या उनके लापता होने की खबर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 17 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद में रोग की पहचान विषय पर विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियो में है एक विशेष गेस्ट। हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ और

0: टाइप आयुर्वेदिक स्कॉलर, तीन उंगलियों से आपकी रेडियल आर्टरी जो आपकी रिस्ट से थोड़ा सा नीचे होती है वहां पे अपनी तीन उंगलियां रख के आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसमें आपके डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी ऑर्गन हेल्थ, आपका बैलेंस और आपके इम्बैलेंसेस, हर चीज का पता लग सकता है।
1: तो इसका इतिहास क्या है, कब से ये शुरुआत हुई इसकी?
0: देखिए, ये जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है, आयुर्वेद जो हमारे वेदों से ओरिजिनेट करता है, हमारे वेदों का जो ज्ञान है वो चेतना का ज्ञान है। और नाड़ी परीक्षा में हम चेतना एक व्यक्ति की मेजर करते हैं और अलग अलग इसके लेवल्स होते हैं। कुछ वैद बहुत ऊपर के ही बता पाते हैं और कुछ वैद बहुत ही डीप, बल्कि आपको उस समय पे क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या क्या सोच में आपका आ रहा है, क्या क्या चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, हर चीज बहुत आराम से रीड कर सकते हैं।
1: फिजिकल के साथ मेंटल रीडिंग्स भी पॉसिबल,
0: फिजिकल के साथ मेंटल और स्पिरिचुअल एज वेल।
1: तो ये नाड़ी परीक्षण जो होता है, इसमें जब चिकित्सक ये करता है तो किन किन चीजों का ध्यान रखता है?
0: इसमें तो सबसे पहली चीज है कि हम जो शरीर के तीन बायोमार्कर्स जिसको कहते हैं, या हम इनको दोष कहते हैं, वात पित्त और कफ, इसको मेजर करते हैं। इसके साथ साथ जो भी, देखिए डायग्नोस्टिक ऐसी चीज है, नाड़ी परीक्षा इसको अलग कैसे है, क्योंकि जो चीज होने वाली है वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो इम्बैलेंसेस आपके होने शुरू हो गए हैं, कितने टाइम से चल रहे हैं, कितने सीवियर हैं, और आपको और किस किस चीजों से के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, ये हर चीज मेजर हो सकती है नाड़ी परीक्षा से।
1: जी, और नाड़ी कितने प्रकार की होती है अगर हम इसे समझना चाहें तो?
0: देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो तीन नाड़ी हम रीड करते हैं, वात पित्त और कफ की, और उसके बीच के अलग अलग परमिटेशन और अलग अलग कॉम्बिनेशन डाल के, और फिर सब दोषास में भी जाते हैं, पूरा अंदर जाके जितने भी हम इसके कॉम्बिनेशन होते हैं उसको रीड करके जो बॉडी माइंड हेल्थ होती है उसका एक कंक्लूजन लेते हैं।
1: तो इसमें क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है? जैसे कोई आपके पास आया और वो अपनी नाड़ी का परीक्षण कराना चाहता है तो किन चीजों का आप लोग ध्यान रखते हैं?
0: देखिए, आइडियली हमेशा खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने खा लिया तो नाड़ी में ये भी पता लगता है आपने खाना खाया है और आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो गया है, तो उससे नाड़ी के कुछ कुछ चीजें ढक जाती हैं। फॉर अ कम्प्लीट एक्यूरेट रीडिंग खाली पेट रहना चाहिए, और जो वैद होते हैं उनको भी एट पीस में रहना चाहिए, जो पेशेंट होता है उनको भी एट पीस में रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, बस आंख बंद करके बैठना चाहिए।
1: तो लगभग कितना समय लगता है इस परीक्षण में?
0: देखिए, इसमें 30 सेकंड भी कह सकते हैं, 2 मिनट भी कह सकते हैं, अलग अलग वैद्यों का अलग अलग तरीका होता है। ये एक बहुत ऑब्जेक्टिव एज वेल एज वेरी सब्जेक्टिव, ये ऐसी टेक्निक है जो इस दोनों को लेती है, क्योंकि टैंजिबल इनटैंजिबल दोनों होता है, और जहां पे भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो जाता है बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते,
1: लेकिन पता लगता है अगर सही चिकित्सक है, आयुर्वेद का विशेषज्ञ है, तो वो सही बता सकता है कि इस समय आपके फिजिकल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल भी आपने बताया, मेंटल लेवल पे क्या चल रहा है,
0: बहुत सही पता लगता
1: है। तो अन्य जो चिकित्सा प्रणाली है, जो मॉडर्न मेडिसिन हम कहते हैं, उससे इसको कैसे अलग आप समझते हैं और क्या इसमें भिन्नताएं हैं आपस में?
0: देखिए, सबसे पहली चीज ये है, ये नॉन इन्वेसिव, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हम बाकी चीजें करते हैं, MRI, CT स्कैन, X-ray, सारी चीजें करते हैं, वो बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करता है, चाहे X-ray होती है, चाहे इंजेक्शन होता है। इसमें क्या है, ये नॉन इन्वेसिव एंड नॉन इफेक्टिंग, इसमें बस तीन उंगलियां हैं और ये एक साइंस है, ये हम किसी को भी सिखा सकते हैं, जिसके पास भी आयुर्वेद का छोटा थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वो सीख सकते हैं। और दुनिया भर में महर्षि जी की जो संस्था है उनमें 9000 एलोपैथिक डॉक्टर्स को अराउंड द वर्ल्ड, हमने उनको नाड़ी का ज्ञान दिया है। तो आज एक इटालियन डॉक्टर जो शायद से 20 साल पहले आयुर्वेद को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता था, आज वो अपने पेशेंट्स को नाड़ी देख के एक त्रिफला प्रिस्क्राइब कर रहा है, या एक आयुर्वेदिक मेडिसिन और अपनी नॉर्मल मेडिसिन का एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जिसको मैं मानता हूँ कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई लक्ष्मण जी, कि कई बार ऐसा होता है हम अलग अलग चीजों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं कि ये मॉडर्न मेडिसिन है वो अलग जा रही है, आयुर्वेद अलग जा रहा है, होम्योपैथी अलग जा रहा है, पर एक कम्बाइंड इंटीग्रेशन में जब वो काम करे तो आपने एलोपैथी डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया है तो वो दोनों चीजों को समझ सकते हैं, और नाड़ी को देखकर और डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखकर।

0: ये पर जैसे युवा हैं और आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं उसकी तरफ लोगों का इतना ज्यादा रुख हो गया है कि लोग इस तरफ सोच ही नहीं रहे हैं, तो किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं? क्या आप अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर रहे हैं?
1: जी देखिए, हम तो 1986 से आयुर्वेद को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। 1986 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली स्टैंडर्डाइज आयुर्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन बनी और लीगली हमने 6 कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट करा आयुर्वेद। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहली थी जिसने क्लिनिकल ट्रायल आयुर्वेद में किया, पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक क्लिनिकल ट्रायल योग आसन में और ध्यान में किया।
0: अच्छा।
1: और ये 1970s से शुरू हो गया था। सो इसमें क्या है, एक तो है साइंटिफिक बैकिंग, एक है क्वालिटी कंट्रोल और एक है कि आयुर्वेद को सिंप्लीफाई करना और इतना सिंप्लीफाई करना कि उसकी जो एसेंस है वो डाइल्यूट ना हो और लोगों तक पहुंचाना। तो ये हमारी संस्था है जो मेघल से अभी 55 देशों में है और वो आयुर्वेद का ज्ञान, योग का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान हर जगह फैला रही है।
0: जी, और हम देख रहे हैं सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, जब से मिनिस्ट्री आयुष बनी है और इतने सारे प्रयास हो रहे हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
1: कुछ सालों से आयुर्वेद का ऐसा पुश हुआ है,
0: बिल्कुल,
1: हमारी सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से और मोदी जी स्पेशली आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत पुश मिला है, बहुत ही रिकग्निशन मिली है, इतने सारे अब क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं आयुर्वेद में, तो समय लगता है इसमें, बट बहुत जल्दी आप ये देखेंगे हमारे गट माइक्रोबायोम से लेके, लीकी गट सिंड्रोम से लेके, लिम्फैटिक सिस्टम, ग्लिम्फैटिक सिस्टम, ये सारी चीजें आयुर्वेद में लिखी हुई थी, बट आजकल ये इतने बड़े ट्रेंड्स बन गए हैं। बहुत, मतलब हजारों करोड़ों की रिसर्चेस हो रही हैं इसमें हर साल और धीरे धीरे हम सबको पता चलेगा जो आयुर्वेद कहता था वही है असली में, एंड साइंटिफिक रिसर्च इज येट टू कैच अप ऑन आयुर्वेद।
0: आयुर्वेद शुरू से यहाँ है पर हमें सिर्फ उसकी सही पहचान करनी है और आगे बढ़ना है और अब कदम बढ़ रहे हैं तो आगे मंजिल तक हम पहुंचेंगे। चलते चलते मैं चाहूंगी कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ जहां पर आपको लगा कि आपने पहले से ही नाड़ी से पता लगा लिया और उसको फायदा हुआ।
1: देखिए, ऐसे तो हमारे हॉस्पिटल्स में तो रोज ही बहुत सारे केसेस होते हैं। मुझे याद है जब मैं खुद सीख रहा था
0: जी
1: और मैं सारे लेवल जानता नहीं था, हमारे गुरु ये बताते थे अगर आप चेतना को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड इन प्योर कॉन्शियसनेस, आपकी पल्स, आपकी नाड़ी हमेशा और अच्छी होगी और डीप जाएगी। और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, हम लोग को बोलते थे कि लोग पकड़ो उनकी, देखो नाड़ी चेक करो क्या फील हो रहा है। और एक बार मैंने बस 3 उंगली रखी थी और मुझे उनके थॉट प्रोसेस सब कुछ आने लग गया, ये इस समय मैं ध्यान से उठा ही था और मैं किसी और की चेक कर रहा था और मुझे ये पता चल गया कि इस बार उसने ध्यान नहीं किया, उसने बस आंख बंद करके बस बैठा हुआ था। मैंने कहा आपने ध्यान नहीं किया, आप आजकल कर नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा आपको क्या समझा चलगा, और ये एकदम ऐसे थॉट आते हैं। तो बहुत बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं, बहुत ही अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स और इम्बैलेंसेज, डिजीजेज, बहुत सारे लोगों को पता है मुझे इतना सर दर्द हो रहा है, बट क्या रीजन है, ये हम नाड़ी परीक्षा से देख सकते हैं कि रीजन ऑफ माय हेडेक, रीजन ऑफ माय प्रॉब्लम, रूट कॉज अगर पता नहीं होगा तो रूट कॉज से जाएंगे कैसे
0: और फिर इलाज होगा क्या।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा लक्ष्मण जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी, एक निजी सा प्रश्न मन में आ रहा था, क्या आपने अपने में भी कोई ऐसा अनुभव किया, आपकी फैमिली में, वाइफ के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए आपके?
1: जी शालिनी जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मेरी वाइफ, एक दिन मैंने उनकी नाड़ी देखी और मुझे 2 नाड़ियां दिखी और उस समय हमने कुछ टेस्ट या कुछ करवाए नहीं थे और फिर उसी समय पता चला कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कुछ समय बाद, ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ समय बाद जब मैंने चेक की तो बच्चे तक के उनकी भी सारी क्वालिटीज नाड़ी में आ जाती है। तो जब कोई भी प्रेग्नेंट होता है उनकी 2 पल्स चलती है, खुद की बीबी की।
0: बहुत सारी बातें नाड़ी से पता लग सकती हैं, ये हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुंची और इसको और समझना है, इसे और आगे तक लेके जाना है। और अगर हमें नाड़ी में कुछ ऐसा दिखता है तो किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम उस रोग को आने से रोक सकते हैं, ये भी एक बहुत जरूरी बात है।
1: जी, तो पहला तो है कि रूट कॉज पता हो जाए, जब हमें रूट कॉज पता चल गया तो उसके बाद वो रूट कॉज की क्या कॉज है, क्या हमने अपनी लाइफस्टाइल में सब किया। देखिए आप, बोले आजकल हर एक चीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे चाहे कैंसर बोले, चाहे ब्लड प्रेशर बोले, चाहे कितनी सारी चीजें।

0: अब साइंस ये भी प्रूव कर रही है कि कम से कम जेनेटिक और ज्यादा से ज्यादा लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। तो एक बार पल्स से नाड़ी से हमें रूट कॉज पता चल गया, फिर आयुर्वेदिक डाइट, मेडिसिन, लाइफस्टाइल, रूटीन, पंचकर्म से हम वापस से अपना बैलेंस कैसे ला सकते हैं।
1: बहुत सारी जानकारी आज हमें पल्स डायग्नोसिस यानी नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद में रोग की पहचान विषय पर मिली। और हमारे साथ रहे लक्ष्मण श्रीवास्तव जी, आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, महर्षि आयुर्वेद अस्पताल के निदेशक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर यहां आए और इतनी विस्तृत जानकारी इस विषय पर हम तक और हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई है। बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए।
0: धन्यवाद शालिनी जी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, नेत्रदान को महादान भी कहा जाता है। नेत्रदान कर आप किसी को आंखों की रोशनी दे सकते हैं। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो देख नहीं सकते, पर मरणोपरांत अपनी आंखें दान कर आप मरने के बाद भी अपनी आंखों से उनकी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। नेत्रदान से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको पता चलेंगी इस बातचीत से। बीडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डायरेक्टर और नेत्र विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरिता बेरी से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। हम इसे बहुत लोग मरणोपरांत नेत्रदान करना भी चाहते हैं, किंतु कैसे करें, कहां करें, ये जानकारी ना होने के अभाव से वो चाहकर भी नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। जानकारी विस्तृत रूप से हमें देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता बेरी। तो पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता बेरी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
2: शुक्रिया।
1: तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले जाने कि जो नेत्रदान होता है, आई डोनेशन होता है, क्या है एक्चुअली?
2: आई डोनेशन का मतलब है कि जो हम मरणोपरांत आंख का डोनेट करते हैं, जो कि हमारी आंख जो बनी हुई है उसका सिर्फ अगला हिस्सा जिसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा, यही लिया जाता है और इसी का इलाज होता है आई डोनेशन से। हम ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि जो आंख की रेटिना, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स है, वो आई डोनेशन से ठीक नहीं होती है, परंतु हम आगे का जो हिस्सा है जो सारे एटमोस्फेयर में भी होता है उसी में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अल्सर हो गया, इवन विटामिन ए डेफिशिएंसी, चोट लग गई, उसके कारण इसमें जब ओपेसिटी आ जाती है तो बिल्कुल दिखना कम या बंद हो जाता है, दोनों आंखें इन्वॉल्व हो जाए तो अंधापन आ जाता है, उसके इलाज आई डोनेशन से हो सकता है। कुछ एक जमांडरू बीमारियां भी होती हैं जो जन्म से ही कॉर्नियल ओपेसिटी के साथ जन्म लेते हैं बच्चे। और भी जैसे है कि कई बार जब सफेद मोतिया का ऑपरेशन होता है उसकी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसके कारण हमारा कॉर्निया खराब हो जाता है। कुछ लोगों को काला मोतिया इतना ज्यादा हो जाता है कि जो आगे की परत कॉर्निया है उसमें खराबी आ जाती है। तो इन सब जो बीमारियों को जो आपने बताया जो कि कॉर्निया की हो सकती है, उसमें आई डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कैसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया है कि आगे का जो कंचा है उसमें अगर सफेदी आ जाएगी तो जो हमारे आगे की रेज है वो हमारे अंदर नहीं जा पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। ये जो कंचा है, ये जब मरणोपरांत यही कंचा निकाल के बदला जा सकता है तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जो हमारी देखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हमारी रेज है वो अब अंदर जा सकेंगे आंख के अंदर, तो आगे का कॉर्निया बदला जाएगा और उसमें हम देख पाएंगे।
1: जी, तो सब हमने ये तो जाना कि क्यों इम्पोर्टेंट है नेत्रदान करना, क्यों जरूरी है, पर कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे मिथ्स इसके साथ जुड़े होते हैं।
2: ये मिथ्स बिल्कुल हमें खत्म करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई डोनेशन में मिथ्स से है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने आंख को दान कर दिया तो अगले जन्म में उनकी आंखें हिलन ना हो, ये तो बिल्कुल गलत है। सब कुछ आपको मालूम ही है, जल जाता है, जल दफनाया जाता है, तो आंखें तो चली ही जाती है, परंतु जो आप इतना नेक काम करके जाएंगे आपके अगले जन्म में जरूर फलित होगा, पहले तो आप ये समझ लें। दूसरा है कि इसमें शरीर के ऊपर कुछ भी कोई विकार कुछ नहीं आता है। जब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसको कैसे निकाला जाता है तो आप समझ जाएंगे, तो बिल्कुल कोई विकार नहीं आता है और बिल्कुल सेफली किया जा सकता है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को इसका जागरूकता होनी चाहिए कि कहां फोन करना है, कैसे बुलाना है। इसमें दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आप अपना ही डोनर फॉर्म भर के अपने रिलेटिव्स और आई बैंक में जमा कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपकी डेथ हो तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ये आपकी विश थी, ये आप चाहते थे कि आप अपने आईज डोनेट करें, और आपके जो बिल्कुल नेक्स्ट टू किन जिसको कहते हैं, बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार

0: ही इसका फॉर्म भर के आपकी आईज डोनेट कर सकते हैं। जो भी आई बैंक आपके पास में है कहीं पे भी भारत में, वहां पर अगर आपने कार्ड दिया हुआ है तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी अपनी रजामंदी दे रखी है, तो वो आके आपका आंख का दान ले लेंगे। अगर वो करना चाहता है, हो सकता है उसने डिस्कस किया हो कोई भी कि मैं आई डोनेट करना चाहता हूँ, पर फॉर्मली वो फॉर्म भरकर नहीं कर पाया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो क्या सिर्फ फैमिली के कंसेंट से हो सकता है?
1: बिल्कुल,
0: फैमिली ही कंसेंट देती है, वो ही साइन करती है कि हमें डोनेट करना है।
1: अच्छा,
0: तो ये हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है
0: जी। तो ये भी बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसे वर्ग भी हो सकता है जो नहीं कर सकता है? कुछ ऐसा कारण बन सकता है कि कोई नेत्रदान चाहे पर कर ना सके?
1: कुछ एक बीमारियां होती हैं जिसके कारण डेथ हुई होती है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, HIV, रेबीज, और कुछ ऐसे दिमागी के वायरस होते हैं जो कि नेत्रदान वाला कॉर्निया जो हिस्सा है उसमें हो सकता है, तो डोनर में आ सकता है। सिमिलरली आंख की जो कोई कैंसर होता है या वायरल प्रॉब्लम्स होती है उसमें प्रॉब्लम वो बहुत कम होती है। तो मेरी राय में सभी को नेत्रदान करना चाहिए। ये जिसको नहीं करना है वो डॉक्टर जब उसको प्रोसेस करते हैं तब डिसाइड कर लेते हैं।
0: अच्छा, तो ये भी बताइए प्रोसेस क्या होता है?
1: शांति जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को यही रहता है कि क्या करें ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक फोन नंबर आई बैंक का आपके पास होना चाहिए, और आपके नजदीकी रिश्तेदार को पता होना चाहिए कि ये आपकी इच्छा है। अगर आपने इच्छा नहीं भी जाहिर की है तो भी रिश्तेदार की अगर इच्छा है तो भी ये हो सकता है। वो फोन करेंगे और जैसे ही फोन करेंगे तो टीम पूरी आ जाती है। इस दौरान आप जो शरीर है उसके आंखें बंद कर दीजिए, पंखा ऑफ कर दीजिए, एसी को ऑन रहने दीजिएगा।
0: अच्छा।
1: उसके ऊपर गीली साफ कॉटन दोनों आंखों पर रख दीजिएगा और थोड़ा सा एक पिलो थोड़ा सा सिर को ऊपर करके रखिएगा, और 6 और 8 घंटे के बीच में ये टीम विदिन टाइम अंतराल में आ जानी चाहिए, और उसको जो कॉर्निया और थोड़ा सा 3 से 4 मिलीमीटर क्लियरा उसको ले लेते हैं। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और उसके अंदर पर एक कैप लगा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये डोनेट हो गया है। और जब डॉक्टर की टीम आती है तो सबसे पहले वो अपने नजदीकी रिश्तेदार से एक फॉर्म साइन करवाती है कि हम डोनेट करने के लिए राजी हैं। दूसरा एक देखते हैं कि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट और किस कारण डेथ हुई है। तीसरा वो ले लेती है कॉर्निया और फिर उसमें एक ब्लड सैंपल लेते हैं, अबाउट 10 ml सैंपल लेके जाते हैं, जिससे ये जो मैंने बताया है वायरल मार्कर्स के लिए, ये वायरल मार्कर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे पर्सन को नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी वो कॉर्निया रिसर्च पर्पज के लिए यूज हो सकता है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए डोनेट करना हर एक के बस में है और करना भी चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने बोली कि रिसर्च भी बहुत जरूरी है, और जब तक रिसर्च नहीं होगी तो कई बीमारियां जो है उससे संबंधित उसका हल हमें नहीं मिलेगा। ब्रेन डेड को कहा जाता है कि वो आई डोनेट कर सकते हैं या कोई डेड हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस?
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जान लीजिए कि जैसे बहुत सारे हमारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग, लिवर, ये सिर्फ जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे अंदर संचार है, तभी हो सकता है। तो वो ब्रेन डेड जो होता है उसको अपनी कोई सुध-बुध नहीं रहती है, वो शरीर से निकलने वाली है आत्मा, परंतु उसी स्टेट पे ये ऑर्गन्स है डोनेट हो सकते हैं। जैसे मैंने फिर बताया, फिर से रिपीट करती हूँ, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, परंतु जैसे आंख है, त्वचा है, बोन्स है, ये मृत शरीर से भी निकाल के डोनेट हो सकती है। इसलिए इनका डोनेशन सिंपल है, आसान है और जागरूकता फैलने की जरूरत है।
0: ये भी जानना चाहूंगी, जो आप बता रहे हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है इसकी सक्सेस रेट क्या होती है?
1: जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो जो हमारा कॉर्निया होता है, जो आगे का कंचा हम समझ रहे हैं, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। तो जैसे हम कंपेयर करें किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो रिजेक्शन हो जाते हैं अगर हम एक दूसरे आदमी का लगाते हैं, तो बहुत सारी दवाइयां देनी पड़ती है ताकि रिजेक्शन ना हो। ये रिजेक्शन कॉर्निया में नहीं होती, इतनी आम नहीं है, फिर भी इसमें रिएक्शन जरूर होते हैं, तो 1 साल तक ये रिएक्शन ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। तो इसलिए ट्रांसप्लांट होने के बाद भी मरीज को बार बार आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, तो यूजुअली 1-2 साल तक उनको आंख के डॉक्टर के पास जाते रहना होता है, और अगर जरूरत पड़े तो बाद में भी चश्मा भी लग जाता है, परंतु निगाह काफी अच्छी आ जाती है, नियरली 80% सक्सेस रेट हो जाता है।
0: जी, जैसा आपने बताया कि आईज निकाल ली है, कॉर्निया निकाल कर
1: कितनी देर तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो कॉर्निया निकाल के जब हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालते हैं तो हम उसको 3 दिन तक जिंदा रख सकते हैं,
0: 3 दिन तक उसको इस्तेमाल
1: किया जा सकता है। आजकल रिसर्च के दौरान और लंबा लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है, पर इंडिया में हम 3 दिन ही रखते हैं। उसके अंदर ही आई बैंक डॉक्टर्स और रजिस्ट्रेशन में जो पेशेंट है उनको बुला के उसको टिश्यू को दे दिया जाता है।
0: जी, तो एक पर्सन अगर अपनी आई डोनेट करता है तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है?
1: एक पर्सन अगर करता है तो मिनिमम 2 लोगों को फायदा, क्योंकि एक आंख एक को जाएगी। पर हमारे पास ऐसे भी है कि कुछ आंखें 8 लोगों तक भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कॉर्निया के भी अब बड़े हिस्से हो गए हैं जिसको एंडोथेलियम, डेस्मिन मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, एपिथेलियम और इवन कॉर्निया के कंजंक्टिवा के साथ वाले कंजंक्टिवल टिश्यू भी यूज किया जा सकता है। तो ये प्रशिक्षण के बाद ही पता चलता है कि ये कॉर्निया कितनों को लग सकता है। 2 को तो मिनिमम लग ही सकता है और ज्यादा को भी लग सकता है।
0: तो बहुत सारे लोगों को, लाभ पहुंचा सकते हैं,
1: बहुत तरह की बीमारियों को।
0: बिल्कुल, और साथ में रिसर्च भी अपने बोला कि इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी भागीदारी की जरूरत है। आप क्या कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते हमारे आकाशवाणी के माध्यम से कि किस तरह से ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट टू मेक दिस अ सक्सेस?
1: ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब कम्युनिटी का ही प्रेरणा होनी चाहिए कि वो अपने जो मृतक हो गए हैं, एक तो ग्रीफ उस वक्त बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के अगर आपके पास आई बैंक को फोन कर दिया जाए तो ये सब बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो पहले भी इसकी चर्चा फैमिली में होनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हम ये चाहते हैं और ये आई बैंक के नंबर्स हैं। इसको ये नहीं सोचना है कि कई लोग सोचते हैं कि हम मरने की बात ना करें, ऐसा नहीं है। आप अपना जैसे विल लिखते हैं इसी तरह से आप अपने दान का भी सबको बताएं, सब एक फॉर्म जो है वो खुद भी रखें, बैंक में भी दीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक प्लान तरीके से चले। बाकी जो अस्पताल में लोग होते हैं वहां पे हमारे पास ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं, वो आपको भी बताते रहते हैं कि भी देखो ऐसा हो गया है तो आप डोनेट करेंगे तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए फायदा रहेगा। और जब इस जैसे पखवाड़ा हो रहा है इसमें जो लोगों ने डोनेट किया होता है उन फैमिलीज को फेलिसिटेट भी किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है बुला के। तो ये भी एक आई बैंक का जरूरी काम होता है और आई डॉक्टर्स भी, तो थोड़ा उत्साह मिलता है।
0: आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने नेत्रदान पर बहुत सारी जानकारी डॉक्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाई और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता बैरी को, आप यहां आए और समय निकाला और इतनी जानकारी आपने पहुंचाई। नेत्रदान महादान, अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे डायरेक्टर नेरी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और नेत्र विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरिता बैरी से बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम धरती आकाश।
3: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
4: नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद करेंगे अगस्त माह से जुड़े भारत के उन अमर वैज्ञानिकों को और जानेंगे उनकी गौरवशाली यात्रा को, जिसमें रसायन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। सबसे पहले बात करते हैं उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने अगस्त महीने में इस धरती पर जन्म लिया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 2 अगस्त 1861 बंगाल प्रेसिडेंसी के रारोली काटीपाड़ा गांव में हुआ। एडिनबरा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट के दौरान उन्होंने प्रतिष्ठित होप प्राइज जीता। भारत लौटकर 1895 में उन्होंने स्थिर मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। वर्ष 1901 में उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की, जिसे भारत की पहली आधुनिक दवा कंपनी माना गया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइट बैचलर की उपाधि और एडिनबरा विश्वविद्यालय का फैराडे गोल्ड मेडल प्रदान किया। साथ ही उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। उनका निधन 16 जून 1944 को हुआ। अगले वैज्ञानिक हैं पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया कृषि व भू विज्ञान वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया। उनका जन्म 2 अगस्त 1878 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास हुआ। उन्होंने

नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नामक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता पर बल दिया और लगभग 30 डिजाइन प्रस्तुत किए, जो बाद में संशोधित होकर आज के तिरंगे का आधार बना। उनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। अगले वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ। उन्होंने 11 नवम्बर 1947 को अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। इसके बाद 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन शुरू किया। अंततः 15 अगस्त 1969 को उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो की नींव रखी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। उन्हें वर्ष 1966 में पद्म भूषण और मृत्यु उपरांत 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 30 दिसम्बर 1971 को हुआ। उनके निधन के बाद 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में गया, जो उनके सपने का साकार रूप था। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। 1960 के दशक में उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर भारत में गेहूं की उन्नत किस्मों को अपनाया, जिससे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। उन्हें वर्ष 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, जो कृषि जगत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मान माना जाता है। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। वर्ष 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। अगले वैज्ञानिक है डॉक्टर एस चंद्रशेखर। डॉक्टर एस चंद्रशेखर भारत के एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। उनका जन्म 6 अगस्त 1930 को कोलकाता में हुआ। वर्ष 1977 में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल नामक एक बिल्कुल नए प्रकार के द्रव क्रिस्टल की खोज की, जो आज LCD डिस्प्ले जैसी तकनीकों की बुनियाद है। वर्ष 1994 में उन्हें प्रतिष्ठित रॉयल मेडल मिला और 1998 में यूनेस्को का नील्स बोहर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक तथा रूसी लिक्विड क्रिस्टल सोसाइटी का फ्रेडरिक्स मेडल भी मिला। भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 8 मार्च 2004 को हुआ। अगले वैज्ञानिक हैं N.A. नरसिम्हम। N.A. नरसिम्हम भारत के प्रमुख भौतिकविद थे। उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी वर्णक्रम विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 15 अगस्त 1922 को उड़ीसा में हुआ। उन्होंने आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर गहन शोध किया। उनका शोध मुख्यतः अणुओं की संरचना को समझने और विभिन्न गैसों के अवशोषण स्पेक्ट्रम के विश्लेषण पर केंद्रित था, जिसने वायुमंडलीय और खगोलीय भौतिकी की समझ को भी समृद्ध किया। उनका निधन 8 अप्रैल 2002 को हुआ। अगले वैज्ञानिक है परमनाथ भादुड़ी। परमनाथ भादुड़ी भारत के एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 21 अगस्त 1908 को कोलकाता में हुआ। वे पादप कोशिका अनुवांशिकी और राइजोबियम जीवाणु के क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उनके शोध ने भारतीय किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और जैविक तरीकों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की दिशा में मार्ग दिखाया। उनकी यह खोज कृषि विज्ञान में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की समझ और जैव उर्वरकों के विकास में एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। उनका निधन 31 दिसंबर 1992 को हुआ। अगले वैज्ञानिक है डॉक्टर M.G.K. मेनन। डॉक्टर M.G.K. मेनन का जन्म 28 अगस्त 1928 को मंगलोर में हुआ। कणिका भौतिकी में अग्रणी शोध करने वाले मेनन को कोलार गोल्ड फील्ड्स में हुए कॉस्मिक किरण प्रयोगों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। वे इसरो के दूसरे अध्यक्ष और DRDO के महानिदेशक भी रहे। उन्हें वर्ष 1970 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वे वर्ष 1988 से 1993 तक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2008 में उनके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह नाम 7564 गोकू मेनन रखा गया। 22 नवंबर 2016 को 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अब जानेंगे अगस्त में निधन को प्राप्त प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। डॉक्टर एस चंद्रशेखर आधुनिक खगोल भौतिकी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। 1983 में उन्होंने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वे लगभग 2 दशक तक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के प्रधान संपादक रहे और शिकागो विश्वविद्यालय में 50 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट प्रदान करने
करने में मार्गदर्शन दिया।

0: 21 अगस्त 1995 को शिकागो में हृदयाघात से उनका निधन हुआ। उनके सम्मान में नासा के एक्सरे टेलीस्कोप का नाम चंद्रा एक्सरे वेधशाला रखा गया। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर येल्ला तरगड़ा सुब्बाराव। डॉक्टर सुब्बाराव का जन्म आंध्र प्रदेश के भीमाराव में हुआ था। हार्वर्ड में शोध के दौरान उन्होंने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की भूमिका स्पष्ट की तथा फिस्क सुब्बाराव पद्धति विकसित की। उन्होंने फोलिक एसिड के संश्लेषण में अग्रणी भूमिका निभाई और मेथोट्रेक्सेट दवा विकसित की। यह दवा बचपन के ल्यूकेमिया के इलाज में पहली प्रभावी कीमोथेरेपी दवाओं में से एक है और आज भी विश्व भर में कैंसर उपचार में उपयोग होती है। 8 अगस्त 1948 को न्यूयॉर्क में हृदयाघात से उनका निधन हो गया। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शिशिर कुमार मित्रा। डॉक्टर शिशिर कुमार मित्रा एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। उनका जन्म 1890 में कोलकाता के पास कुन्नागर में हुआ था। उन्होंने आयन मंडल पर विश्व प्रसिद्ध शोध किया जो रेडियो तरंगों के लंबी दूरी के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें 1958 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। 1938 में ब्रिटिश सरकार ने MBE की उपाधि दी और 1962 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 13 अगस्त 1963 को कोलकाता में उनका निधन हुआ। 2019 में इसरो के चंद्रयान 2 और विटर ने चंद्रमा पर उनके नाम पर बने मित्रा क्रेटर की तस्वीरें भेजी। यह किसी भारतीय वैज्ञानिक के लिए दुर्लभ अंतरिक्ष सम्मान है। अगले वैज्ञानिक है पुष्पा मित्रा भार्गव। डॉक्टर पुष्पा मित्रा भार्गव भारत के सर्वोत्कृष्ट जीव विज्ञानी थे। उनका जन्म 1928 में अजमेर में हुआ। उन्होंने हैदराबाद में सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्थापना की। उन्होंने आणविक जीव विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर गिरीश साहनी। डॉक्टर गिरीश साहनी भारत के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी विद और विज्ञान प्रशासक थे। साहनी का शोध मुख्य रूप से हृदय संबंधी जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था। उन्हें रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज के विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। यह एक जीवन रक्षक दवा है जो हृदयाघात के दौरान रक्त के थक्कों को घोलने में इस्तेमाल होती है। स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा के विकास से भारत विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रहा और यह जीवन रक्षक दवा हृदय रोगियों के लिए बहुत सस्ती हो गई। 19 अगस्त 2024 को चंडीगढ़ में 68 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ।
1: आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को 2 कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के DNA में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
2: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम DNA भी बोलते हैं वो होता है। DNA जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो DNA का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का, अलग अलग जीवाणुओं का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। DNA जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है। किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, बहुत मुश्किल है और केवल ATGC से कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं, वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहां से

0: शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
0: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
1: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
0: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हीमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर, जो आप सुधारते हैं जिनको, ये होती कैसे है?
0: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो है फैमिली में ही है, जैसे कि आपने रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करती है, तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं। जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है, इन 3 बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज, अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इम्पोर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

0: भजन पेश कर रहे थे हरि ओम शरण। इसके साथ ही सुबह का ही प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत प्रोग्राम आज सवेरे।
1: मैं और सरबजीत पलटते हैं एक और पन्ना आज सवेरे का और ढूंढ लाते हैं वो घटनाएं, वो व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से, जिन्हें हम आज याद करेंगे। और एक साल बाद जब आप आज खोलेंगे ना, कहेंगे अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था, है ना सरबजीत?
2: बिल्कुल।
1: कहां से शुरू कर रखी हो? बात 1831 की। इंग्लैंड के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया था। नाम थोड़ा सा भारी है लेकिन इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहरा है। सोचिए, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर और ट्रांसफार्मर जैसी तकनीकों में बुनियाद जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जिस बिजली से आज हमारा रेडियो चल रहा है उसकी कहानी में आज का दिन एक अध्याय के रूप में जुड़ा हुआ है। इतिहास की कहानी को सरभ जी थोड़ा सा गंभीर कर लेते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। बात 29 अगस्त 1949 की। सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और यह परीक्षण कजाकिस्तान के ऐसे क्षेत्र में हुआ जिसे फर्स्ट लाइटनिंग यानी आरडीएस के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को और तेज कर दिया और शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर में इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया। लेकिन इतिहास कभी सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, वो हमें चेतावनी भी देता है। और सरबजीत ऐसी ही चेतावनी दी गई थी जब परमाणु परीक्षण हुआ, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट घोषित किया। और ये साल ये दिवस 2009 में स्थापित किया गया और पहली बार 2010 में मनाया गया।
2: 1998 ऑन दिस डे सचिन तेंदुलकर रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न।
1: तो ये थी वो इतिहास की तमाम घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और इतनी डिटेल में मैंने और सरब

0: Justice, anti-imperialism, humanity, rebellion against oppression and religious devotion.
1: साहित्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नजरुल ने लगभग 3000 गानों की रचना की और साथ ही अधिकांश को स्वर भी दिया। इनके संगीत के आजकल नजरुल संगीत या नजरुली गीति के नाम से जाना चाहता है।

0: कहते हैं ना कि न कुछ चेहरे सिर्फ पर्दे पर दिखाई देते हैं, कुछ नाम इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त बीत जाने के बाद भी यादों में मुस्कुराते हैं। आज की इस छोटी सी महफिल आज सवेरे में अलग अलग रंग, तो सबसे पहले बात अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। अगस्त 1905 इलाहाबाद आज का प्रयागराज, यही जन्म हुआ था हॉकी के जादूगर खिलाड़ी ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद रात में बहुत अभ्यास करा करते थे सरबजीत, इसीलिए उनके साथियों ने उनका उपनाम रख दिया चांद। असली नाम उनका ध्यान सिंह था। हॉकी में ध्यानचंद सा खिलाड़ी न तो कभी हुआ और न होगा। वो जितने बड़े खिलाड़ी थे उतने बड़े नेक दिल इंसान भी थे। बचपन से ही खेलों के प्रति लगा, फिर सेना में भर्ती और हॉकी से ऐसा रिश्ता बना कि देखते ही देखते दुनिया उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगी। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक और फिर स्वर्ण पदक।
1: मूविंग ऑन फर्दर इन आवर लिस्ट नवीन, टुडे वी आर विशिंग मेनी गुड विशेस टू द ग्रेट रिचा शर्मा। शी हैज अ ब्यूटिफुल वॉइस, शी इज नोन फॉर हर लवली रेंडिशंस ऑफ डिवोशनल म्यूजिक एंड वेरी थॉटफुल सॉन्ग्स शी इज बीन रेंडरिंग। सो लेट्स हियर दिस ब्यूटिफुल नंबर बाय रिचा शर्मा।

0: सरब जी, तब बात उस दौर की जब रेडियो पर गीत बजता था तो लोग काम छोड़कर बस सुनने बैठ जाते थे। बात कर रहे हैं उस एक्ट्रेस की जिसकी एक मुस्कान पर एक जमाने में तमाम सिने प्रेमी फिदा थे। नाम लीना चंद्रावरकर का। लीना चंद्रावरकर का आज जन्मदिन है। लीना चंद्रावरकर का नाम लेते ही सामने आता है एक चंचल, खूबसूरत और मुस्कुराती हुई अभिनेत्री। धारवाड़ कर्नाटक में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और उनकी खूबसूरती के साथ उनकी बासूमियत और चुलबुलापन दर्शकों को बहुत पसंद आया और फिर उनके ऊपर फिल्माए गए गीत और उस दौर का ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं,
1: जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगे।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के चार दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं ताकि इक्तिसादी और दिफाई इश्तराक बढ़ाया जा सके। भारत ने जैवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 589 तक पहुंच गई है जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। सरकार अगले महीने से हर 15 दिन में शक्कर अलॉट करने का निजाम शुरू करेगी ताकि मार्केट में शक्कर की बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। और भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फरकाज को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर उज़्बेकिस्तान रवाना हो गए हैं। वजीर आजम उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद जा रहे हैं। ये वजीर आजम का उज़्बेकिस्तान का चौथा दौरा होगा। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में बताया कि अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटजिक साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के खातिर सदर मिर्ज़ियोयेव

एफ के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों रहनुमा ताशकंद में दो तरफा अहमियत के हामिल मामलात के पूरे मंजरनामे पर बातचीत करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के 10 सरकर्दा तजारती शराकतदारों में शामिल है, जिसकी दो तरफा तजारत तकरीबन $1 अरब है और ये गुज़श्ता चंद बरसों में तजारत में कई गुना इजाफे का नतीजा है। मेडिकल, कानकनी और दिफा अहम शोबे हैं, जिनमें बाहमी ताउन को के बहुत से इम्कान मौजूद हैं। दिफा के शोबे में भारत का उज्बेकिस्तान के साथ देरीना और कसीर जेती इश्तराक है। साल 2019 में दिफा से मुतालिक एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम किया गया था। भारत और उज्बेकिस्तान मुश्तरक फौजी मशकों दोस्तलिक में हिस्सा लेते रहे हैं और इस सिलसिले की सातवीं मशक इस साल अप्रैल में उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस तनाजुर में वजीर आजम मोदी का दौरा बहुत अहम है और तवक्को है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटजिक और कारोबारी साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने की बुनियाद उस्तवार होगी। उज्बेकिस्तान में भारतीय सफीर स्मिता पंत ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगु में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तेजी के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सभी शुबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुहतरमा स्मिता पंत ने यह भी कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान कारोबार में कई गुना इजाफा हुआ है और वजीर आजम के इस दौरे में दोनों मुल्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रुकावटों को दूर करने पर बातचीत करेंगे। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस तरह भारत इस मिसाइल निजाम का बाजाब्ता खरीदार बन गया है और दोनों मुल्क भारत में इसे मुश्तरक तौर पर तैयार करने की समत काम करेंगे। भारत में अमरीकी सफारतखाने और कौंसलखाने ने एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए पेशकश और मंजूर करने से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। सफारतखाने ने कहा है कि अमरीका भारतीय फौज के इस कदम का खैर मकदम करता है। भारत में अमरीका के सफीर सर्जियो गौर ने कहा है कि इस समझौते से भारतीय फौज के लिए अमरीका की मदद की मजबूती का इजहार होता है और इससे दोनों मुल्कों की दिफाई सनतों के लिए मिलकर काम करने के नए मौके पैदा होंगे। नेपाल और तिब्बत में अचानक तबाहकुन सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 589 तक पहुंच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल सरकार की तरफ से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में 101 अफराद जेर इलाज हैं। इसके अलावा जो 1924 अफराद लापता हैं, उनमें पन बिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले अहलकार, गैर मुल्की शहरी, सिविलियन अफराद और सिक्योरिटी और सरकारी अहलकार शामिल हैं। पन बिजली प्रोजेक्टों पर काम करने वाले 933 अफराद के लापता होने की खबर है, जबकि 517 गैर मुल्की शहरियों से अब तक राब्ता कायम नहीं हो सका है। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। 10 टन इमदादी सामान लेकर तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू के लिए रवाना हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों, तिब्बी अमले के अहलकारों और टनल में फंसे हुए अफराद का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए 11 अरकान पर मुश्तमिल एक टीम भी भेजी गई है। उन्होंने नेपाल में जारी राहत और बचाव कोशिशों में भारत की मदद का इरादा भी किया। वजारत खारजा ने कहा कि नेपाल में बुध के रोज अचानक सैलाब आने के सानहे के बाद से 320 भारतीय शहरियों से राब्ता कायम नहीं हो सका है, ये उनके लापता होने की खबर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। इसके अलावा इसे आकाशवाणी न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिये के फौरन बाद ये प्रोग्राम इलाकाई जबानों में नश्र होगा।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में शक्कर की कोई कमी नहीं है और मुनासिब कीमत पर शक्कर के खातिर दस्तयाबी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। सार्फिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि हालिया दिनों में शक्कर मिलों से बराह रास्त हासिल होने वाले शक्कर की कीमतों में तकरीबन 20% की कमी आई है, जबकि शक्कर की खुर्दा कीमत में भी कमी आनी शुरू हो गई है। वजारत ने बताया कि उसने शक्कर की खातिर दस्तयाबी और घरेलू मंडी में इसकी सप्लाई की मसनू कमी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए कई सरगर्म इकदाम किए हैं। हुकूमत मुल्क भर में शक्कर की कीमत, जखीरे और नकलो हरकत पर करीबी नजर रख रही है। ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत विकसित पंजाब के बगैर विकसित भारत नहीं बन सकता। उन्होंने पंजाब के किसानों को यकीन दहानी कराई है कि मरकजी हुकूमत उनके मफादात के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। भारत के वेलोन सेंथिल कुमार ने फाइनल में हंगरी के बालाज फरकाज को 3-0 से हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। सेंथिल कुमार ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 18 और एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी एविन योएन जी को 3-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल के सनसनीखेज मुकाबले में अपने हमवतन वीर चोटारानी को 3-2 से शिकस्त दी थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, ताकि इक़्तिसादी और दिफाई इश्तराक बढ़ाया जा सके। भारत ने जैवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 589 तक पहुंच गई है, जबकि 1924 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। सरकार अगले महीने से हर 15 दिन में शक्कर अलॉट करने का निजाम शुरू करेगी, ताकि मार्केट में शक्कर की बर वक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। और भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फरकाज को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है अखबार जरिए पर मबनी शम्मे फरोजा।
2: हुब्बे वतन एक फितरी एहसास और जज्बा है, इसलिए शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसे अपने वतन से मोहब्बत और कल्बी लगाव न हो। वतन से इसी ताल्लुक खातिर की वजह से वतन को मादर वतन कहा गया है, जिसका मफहूम है कि इंसान अपने वतन से उसी अंदाज की वालेहाना मोहब्बत करता है जिस तरह अपनी मां से मोहब्बत करता है। मां से मोहब्बत भी तो एक ऐसा जज्बा है जो कुदरत की तरफ से वदियत किया जाता है। इंसान एक जगह पैदा होता है, आमतौर पर वहीं नश्वनुमा पाता है, बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, दोस्त अहबाब बनाता है, उसकी शख्सियत वहीं निखरती और अपने उरूज को पहुंचती है। अब सोचिए, ऐसी जगह से किसे मोहब्बत न होगी, और ये मोहब्बत बेलाग होगी, और यही हुब्बे वतन है। जाए रिहाइश और मकामे पैदाइश से लगाव के मामले में तो इंसान और हैवान सभी के एहसासात मुश्तरक हैं। इंसान अवायल दौर से ही गुनागुन जरूरतों की वजह से सफर करता रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहा है। ये आरजी तौर पर भी हुआ और मुस्तकिल तौर पर भी हुआ है, आज भी होता रहता है, लेकिन इंसान ने हमेशा किसी न किसी अंदाज से अपने वतन को याद किया है, जिसकी झलकियां हमें आज भी देखने को मिलती रहती हैं। तृतीय हिंद अमीर खुसरो हिंदुस्तानी तहजीब के एक नुमाया फर्द हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुए और अपने वतन से टूटकर मोहब्बत की। वो हिंदुस्तान को दुनिया के दूसरे ममालिक पर फौकियत देते हैं, उनको हमारी तारीख और समाज से वालेहाना मोहब्बत है। वो अपने मुल्क को जन्नत निशान कहते हैं, और मजहबी अदब में जन्नत की जो खसूसियात बयान की गई हैं, उनमें से बास को हिंदुस्तान में भी तलाश कर लेते हैं। वो अपने इस हुब्बे वतन के

उससे अगले प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे महिमा कासेवा और मजहर अली खान की गाई चंद गैर फिल्मी गजलों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर हमारी नशात जारी है। रिश्तों के जुगनू लीजिए सुनिए जनाब हृदय कौल भारती का तहरीर करदा ये ड्रामा।

0: ایک چھوٹے سے قصبے کی یہ کہانی کسی حقیقی واقعے پر مبنی تو نہیں، لیکن اس کی فضا اور دور، ایک حقیقت اور اس دور کی کوک میں جو کچھ پنپتا رہا، ان کی پرچھائیاں آپ اس کہانی میں محسوس کریں گے۔ یہ کہانی ہے ان سچائیوں کی، پرچھائیاں، پرچھائیاں، پرچھائیاں۔
1: दादी की पोती जाग रही हूँ, आगे बोलो।
2: मुझे मालूम था आप जाग रही होंगी, मैं तो बस
1: दादी को तंग करने के लिए चिल्ला रही थी।
2: हाँ, कुछ ऐसा ही। नाश्ता लाऊं आपके लिए?
1: शायदा बेटी, बाकी सभी कर चुके?
3: सभी कौन, एक भाईजान ही तो है, वो कब के तैयार होके जा भी चुके। बस दादी और मैं, अब एक आप है और एक ये आपकी इकलौती पोती।
1: इकलौती क्यों पगली, ऐसा नहीं कहते। अरे बच्ची, कोई इकलौता नहीं होता, अल्लाह ताला की जात उसके साथ रहती है।
2: ओ दादी, आप भी बात को कहां से कहां खींच लाई। मैं तो सिर्फ अपनी

0: और आपकी हालत बयान कर रही थी।
1: जानती हूँ तो क्या कह रही थी, खूब जानती हूँ। अरे बच्ची, मैं भी तो कभी तेरी उम्र की ही थी।
0: अच्छा,
1: मैं भी कुछ ऐसी
0: ऐसी थी। ऐसी कैसी ही दादी, बताओ ना कैसी थी आप, क्या था आपका जमाना?
1: अरे कुछ खास नहीं था, अब कोई इतराने वाली बात नहीं थी उसमें।
0: अच्छा।
1: तावीज बनाकर गले से लगाए रखने वाला कोई वाकया नहीं था उसमें। उस
0: दादी माँ, ठीक तो है ना? मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। आप कुछ कहना नहीं, आप नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। मैं अब भी आई।
1: सुन तो,
2: मैं बस ये गई और वो आई।
1: अल्लाह, तू बड़ा करीम है, इस बिन माँ की बच्ची पर हमेशा करम की निगाह रखना मेरे मौला।
2: देखा दादी, मैं ये गई और वो आई, मैंने कहा था ना, और ये रही गर्मा गर्म चाय।
1: जीती है बच्ची। अरे पागली, इस बुढ़िया से इतना लगाव अच्छा नहीं। हाँ, पका हुआ फल हो कभी भी।
0: बस बस दादी, आगे नहीं, अब बात चाय की चुस्कियाँ लीजिए, ताकि ऐसी बात के लिए मुंह खाली न रहे।
1: अरे बहुत बोलने लगी है बच्ची।
0: कहाँ बोलती हूँ मैं दादी, मैं तो बस इतना भर बोल लेती हूँ कि किसी को गूंगी ना लगूं।
1: अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था।
0: हाँ, आप ही तो कहती है ना, लड़कियों को कम बोलना चाहिए, इसीलिए।
1: अच्छा अच्छा, तो मेरी बच्ची मेरे कहे पर अमल कर रही है। और जो तुम बोलती तो कितना बोलती तुम?
0: बहुत सारा मेरी अच्छी दादी। अब चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है।
1: हाँ बेटी।
2: एक बात पूछूं दादी माँ?
1: अच्छा, गर्मा गर्म चाय पिला दी है तो कीमत तो वसूल करेगी ही। हाँ, पूछ पूछ।
2: आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना?
1: लड़की अब पूछना, फुजूल में थकाना दे मुझे।
2: वो अभी हमने मकान बदल दिया, ऐसे अब अपने मकान में आ गए हैं, ये ना।
1: अरे बस यही पूछना था।
2: नहीं नहीं, कुछ और भी।
1: अरे तो कहना।
2: वो आपने अपने जेवरों का डिब्बा, लकड़ी का बड़ा संदूक, सभी कुछ नौकरों पे ऐसे छोड़ा जैसे सब्जी तरकारी का टुकड़ा हो।
1: आए तो क्या अपने कंधे पर उठा कर ले आती। और फिर मुझे मालूम था ना,
2: क्या
1: मेरी सयानी होशियार समझदार बच्ची एक दिन का इधर से उधर नहीं होने देगी।
0: दादी माँ, आप ही तो कहती हैं कि झूठ का बोझ इंसान को चैन की नींद नहीं सोने देता। रोजे कयामत अल्लाह ताला के सामने।
1: आए तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
2: मैंने ऐसा तो नहीं कहा दादी, लेकिन।
1: हाँ हाँ बोल, लेकिन क्या?
2: लेकिन वो दादी माँ, ये कि वो डिब्बा आपने मुझे उठाने नहीं दिया जो एक सत भी आपके सराहने पड़ा है।
1: ओहो लड़की, तुम इस बक्से के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? इसमें मेरी जान है, इसीलिए किसी को हाथ नहीं लगाने देती हूँ बस।
0: और दादी माँ, आप मेरी जान भी हैं, जिगर भी हैं, जाने जिगर हैं, इसीलिए तो मैं बक्से को देखना चाहती हूँ, बल्कि देखने का हक रखती हूँ।
1: ये हक की बात तुमने काफी वजनदार कही।
0: हाँ
1: वाकई, हक तो रखती हो तुम। अच्छा उठा लाओ बक्सा। हा? दिखाती हूँ। चाबी ये तकिए के नीचे है।
2: आप नाराज तो नहीं हुई ना?
1: अरे अब लाओ भी, नहीं तो मेरा इरादा बदल जाएगा।
2: अब भी नहीं, अब भी नहीं। ये रहा आपका डिब्बा और ये चाबी
1: ये ले।
2: मैं खोलूं?
1: क्यों, तुझे ताला खोलना नहीं आता?
2: नहीं नहीं, आता तो है लेकिन।
1: खोल खोल। हाँ खोल।
2: ये खुल गया ताला, ये उठा ढक्कन और ये, अरे दादी माँ इसमें तो।
1: क्यों, कुछ नहीं है क्या?
2: नहीं, नहीं है दादी माँ, लेकिन
1: है तो निकाल देख। अरे बुद्ध सी बनी क्या देख रही है?
2: किताब है वो सीधा सी, तीसरी जमात की तारीख की किताब, किस जमाने की है।
1: अरे बच्ची, किसी जमाने की नहीं बल्कि तेरी दादी के जमाने की।
2: इस बक्से में तो कुछ भी नहीं।
1: ये क्या कम है, तेरी दादी के सभी ख्वाब, तमाम जिंदगी इसी में दफन है।
2: दादी माँ ये क्या कह रही हैं आप?
1: ठीक कह रही हूँ शाइस्ता बेटी, ये किताब मेरे लिए बहुत कुछ है, सब कुछ।
2: दादी
1: मेरी यादों का खजाना।
2: दादी माँ आप रो रही है?
1: नहीं रे, ये तो बस ऐसे ही यादों की धूल आंखों में आ गई। मेरा घर, मेरा गांव छोटा जरूर था लेकिन वहां भी इंसान ही आबाद थे, छोटी छोटी खुशियों गमों के दरमियान, आधे अधूरे ख्वाबों के जजीरों के सहारे ढूंढती मिलती थी और उसी के बीच में थी मेरी सहेली अश्मी। अश्मी मेरी जान, मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है उस आया का नाम संगरमाल। संगरमाल नाम था उसका, एक हरे बदन के एकदम कोरी, बुढ़ापे ने आवाज में कमाल की नरमी दी थी। इबादत समझकर अपना काम करती थी वो, लड़कियों को घरों से लाकर स्कूल ले जाना। बेचारी माँ बाप कभी कभी ऐसे छिड़कते थे जैसे उनकी बेटियां पढ़कर संगरमाल पर एहसान कर रही थी। मेरी माँ तो रोज ही ऐसा करती थी। हाँ उस दिन भी जब वो अश्मी को लेकर।
3: अश्मी बेटे ऐसे चलेगी तो आज भी कल की तरह देर हो जाएगी। देखा ना कल किस बुरी तरह से तुम्हें डांटा और मुझे भी।
0: किसने संगरी मासी? किसने डांटा?
3: तेरी मास्टर ने और किसने?
0: लेकिन संगरी मासी मैं तो चल ही रही हूँ ना, और कितना तेज चलू
3: जितना मैं चलती हूँ।
0: तब तो मासी मुझे दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा।
3: क्यों, मैं क्या दौड़ रही हूँ?
0: नहीं दौड़ती तो नहीं, लेकिन अगर मेरी टांगे भी आपकी जितनी लंबी होती तो
3: बस, मैं बस, बस, बस मेरी अम्मा बस कर, चल जैसा तेरा जी में आए वैसा कर। तौबा मेरी, इस चटाकी से तो बात करना।

0: जा रही है?
1: चलना, तू भी, बहुत मजा आएगा।
0: नहीं, अब्बू मना करते हैं।
1: क्यों क्यों मना करते हैं? पढ़ाई करना कोई बुरी बात थोड़ी है।
0: पर अम्मा भी तो नहीं मानती।
1: तुमने कहा नहीं, वहाँ पढ़ाई होती है। ये देख, देखना मेरी तख्ती।
0: तुमने लिखा है?
1: और नहीं तो क्या, मैं इससे भी साफ लिख सकती हूँ। बताए, कल मुझे 5 में से पूरे 5 नंबर मिले लिखाई पर।
0: वो क्या होता है?
1: वो होता है बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा सारा। मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, सच्ची।
2: लड़की, चल चल, काफी हो गया। अब ऐसे ही चलती रहेगी तो स्कूल पहुँचते पहुँचते फाटक बंद हुआ होगा। हाँ,
3: अरे यो संगरी है, स्कूल में नौकरानी है तो नौकरानी की तरह ही रहे है। कितनी बार कहा है तुमसे कि सारा स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, फिर क्यों आती है यहाँ? हमारे खानदान की लड़कियाँ ऐसे बाहर नहीं घूमती। चल चल चल सारा, अंदर चल चल चल चल।
1: अरे पता है, नाक वाली है तू, खानदानी है, मगर ये अश्मी भी कोई घूमने नहीं आती, पढ़ने आती है, इल्म सीखने।
3: हाँ ए लो, कुछ भी हो बाहर तो जाती है ना लड़की की जात।
1: ये तो अपनी अपनी समझ है। वैसे मैं भी तुम्हारी लाडली को स्कूल ले जाने नहीं आई थी, ये तो इस अश्मी ने उसे देख लिया तो रुक गई। स्कूल में तहजीब भी सिखाते हैं।
3: लो, अब ये हमें सिखाएगी तहजीब। और बात तो देखो, ऐसे कर रही है जैसे यही अश्मी की माँ है।
1: माँ होना मेरे नसीब में कहाँ, चपरासन हूँ स्कूल की, जो कहते हैं वही करती हूँ।
3: ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, बजा लाओ तुम अपनी नौकरी, लेकिन हमारी बेटी को स्कूल विस्कूल के बखेड़े में मत घसीटो। मैं कह देती हूँ 100 बात की एक बात।
1: तो मैं भी इस गली में से नहीं गुजरती, पर क्या करूँ, मजबूरी है, रास्ता भी यहीं से जाता है। चल अश्मी, काफी वक्त बर्बाद हो गया यहाँ।
3: हाँ, फिर आती क्यों है, जाओ।
4: देखो भाई, तुम पे ये चुप्पी फंपती नहीं।
3: अब क्या कहूँ, तुम तो जानो मैं कभी किसी मामले में पड़ती नहीं, पर कोई घर आकर तुमसे उलझे तो चुप भी तो नहीं रहा जा सकता।
0: क्यों, ऐसा क्या हुआ, कोई झगड़ने आया था क्या?
3: बराबर बराबर समझी तू, झगड़ने ही तो आई थी वो संगरी, है ना संगरी, जो स्कूल की नौकरानी।
0: संगर माल।
3: हाँ, काहे की माल, और संगरी कहो संगरी। जब से लड़कियों के स्कूल में नौकरानी बनी है, किसी को खातिर में ही नहीं लाती।
4: हाँ? अरे भाई, नौकरी पर लग गई है ना, इसीलिए इसीलिए अपने आप को मर्द समझने लगी है।
3: अरे वो तो मर्दों के भी कान कुतरने लगी है। जहाँ भी कोई लड़की नजर आई, बस उसे स्कूल जाने के लिए उकसाती रहती है, उकसाती रहती है। अरे आज तो सारा के पीछे पड़ गई।
4: अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ?
3: फिर क्या, भगा दिया मैंने उसे दरवाजे से ही। वो कादर है ना, कादरदार, उसकी लड़की साथ थी।
4: कादर, कादर कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो डाकखाने में हरकारा है,
3: वही एरिया घिसती है, गांव गांव चिट्ठियां बांटते, वही वही अपनी लड़की को स्कूल भेज रहा है।
4: तो क्या कादर हरकारे की लड़की अश्मी स्कूल जाती है?
1: लो, लो, तुम्हें नहीं मालूम, उसे तो बाप ने स्कूल खुलते ही दाखिल करवाया था।
3: वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, पूछने वाला कौन है, न जोरू न जाता, अल्लाह मियाँ से नाता। हम तो ऐसा नहीं ना कर सकते। तुम जानो, हमारे खानदान की लड़कियां घर की दहलीज सिर्फ एक बार पार करती हैं, जब उनकी शादी हो जाती है।
4: हाँ, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये खानदानी चोचले भी सिर्फ

0: आज मरे तो कल मियां दूसरी की तलाश करता है।
1: और क्या?
0: हाँ सच कहती हूँ, मेरे बस की होती तो मैं भी स्कूल पढ़ने जाती हूँ।
1: लो इसकी सुनो, सींग न फूटे सब बचे ही रही।
2: दो सिलेबस, दो यहाँ, तीन हासिल, नहीं नहीं नहीं, हाँ दो और ये तीन।
3: ये हो गई मेरे बेटे के लिए चाय तैयार। अब मैं अपनी अश्मी बेटी को एक प्याला गरम गरम चाय पिलाता हूँ, फिर देखना स्कूल का काम चटोपट हो जाएगा।
2: ओह अबू, आपने क्यों बनाई? मैं खुद ही बनाती ना।
3: बनाएगी बिटिया, तू भी बनाएगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। अभी तो मेरी अश्मी बिटिया सिर्फ पढ़ाई करेगी, सिर्फ पढ़ाई।
2: उफ अबू, ये क्या फिर कहवा, मुझे तो सिर्फ नमक वाली चाय चाहिए।
3: जानता हूँ मेरी बच्ची, तुमको सिर्फ नमक वाली चाय पसंद है, समावार से निकली बिल्कुल गर्मा गर्म चाय। लेकिन क्या है बेटी, कहवे से दिमाग तेज रहता है, देख लेना चाय पीते ही दिमाग हवाई जहाज की तरह उड़ने लगेगा। सभी पढ़े लिखे यही चाय तो पीते हैं। चल मेरे बच्चे, पी ले बेटा, पी ले, चले उठा के ले ले। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश।
4: अरे सारा बेटी, आओ आओ, बहुत अच्छे मौके पे आई हो। मैं तो सोच ही रहा था कि कोई अच्छी सी बेटी हमारे साथ आकर चाय पिए। ये देख, मैंने एक प्याली पहले ही ज्यादा रख रखी है ना। चाय अच्छी बनी है ना सारा बेटी?
2: जी।
4: अच्छा बेटी ये बताओ, तुम्हें नमकीन चाय अच्छी लगती है या कहवा?
2: जी दोनों।
4: देखा अश्मी बेटा, ऐसी होती हैं अच्छी लड़कियां, जो मिले उसी में खुश।
2: मैं भी इनके घर में ऐसे ही कहती हूँ अबू।
4: तो बिटिया हमें बनाती है क्यों?
3: अच्छा अब तुम दोनों बातें करो, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ, ठीक है?
2: क्या अबू, कुछ लाना है? मैं ले आऊंगी।
3: नहीं नहीं बेटा, तुमसे नहीं होगा, तू अपना काम कर।
2: अश्मी मैं ना तुम्हारी किताबें देखने आई हूँ।
5: ओह कौन सी वाली?
2: सबे।
5: ओह तू भी स्कूल आएगी क्या?
2: ना अम्मा मना करती हैं, कहती है अच्छे घर की लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती। तू अपनी किताब दिखाना, वो तस्वीरों वाली दिखाना पहले। अश्मी इसमें महाराजा बहादुर की तस्वीर भी है।
5: है ना,
2: दिखा तो जरा।
5: ये है महाराजा की तस्वीर।
2: जरा जरा ठीक से दिखा तो, ये महाराजा बहादुर है, मोटा है ना। ये इसके सर पे क्या है?
5: क्या ये तो पगड़ी है, साफ तो दिखता है।
2: ये नहीं, ये जो पगड़ी के ऊपर है वो चील के पर जैसा।
5: ये अरे पागल, ये तो चील का पर नहीं, ताज है, ताज।
2: ताज ऐसा होता है?
5: और नहीं तो क्या।
2: ये कौन है?
5: ये है अकबर।
2: अकबर कौन?
5: अरे पड़ोस वाला अकबर नहीं, अकबर आजम बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह था ये।
2: अच्छा उसकी भी कहानी है इसमें?
5: अरे पागल है तू बुद्धू, कहीं की कहानी है तभी तो तस्वीर है।
2: अश्मी ये किताब मुझे दे देगी?
5: अरे तुझे दू, मैं कैसे पढ़ूंगी फिर?
2: देना, बहन नहीं है मेरी।
5: पागल हो गई है तू, क्या करेगी इसका?
2: तू देना।
5: कैसे दू, मारेगी नहीं मास्टर जी स्कूल में मुझे, पता है कितना पीटती है वो, किताब नहीं साथ होने पर। हाँ ना बाबा ना, नहीं दूंगी।
2: अश्मी देख देख, तू मुझे किताब देगी ना तो मैं तुम्हें ये कान का झुमका दूंगी, चांदी का है, बिल्कुल नया।
5: नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सारा, मैं ये किताब

0: जानते? मैं कभी तुमसे मिलने यहाँ नहीं आऊंगी, तू मेरी सहेली नहीं है। जा रही
1: सारा। अरे सुन तो सारा।
2: अरे खादर भाई।
3: जी बड़े बाबू।
2: अरे भाई वो कल टेलीग्राम उसी वक्त पहुंचा दिया था ना?
3: जी बड़े बाबू, वो कुरैशी बाबू की साइकिल ले गया था ना,
2: हाँ हाँ।
3: इसलिए काम जल्दी हो गया।
2: अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार तू ये मुझे बड़े बाबू मत कहा कर।
3: क्यों?
2: ते कितनी बार कहा तुमसे कि ये सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेज हूँ जिन्हें हम बहुत पहले भगा चुके हैं यहाँ से।
3: वो बड़े बाबू,
2: हाँ
3: मेरी अर्जी का क्या हुआ बड़े बाबू?
2: ओहो फिर वही राग। अरे मेरे भाई, मेरे यार, मेरे जिगर, मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। श्रीनगर में किसी भी पोस्ट ऑफिस में हर कार्य की पोस्ट है ही नहीं।
3: वो
2: अब ऐसे में मैं कैसे ट्रांसफर करा दूं तुम्हारा, बताओ?
3: आप मुझे वहाँ चपरासी की जगह रखवा दीजिए, पानी पिलाने वाले की जगह दिलवा दीजिए। मैं बाबू लोगों की चिलम भरा करूंगा, कुछ भी करूंगा बड़े बाबू, लेकिन मेरी बदली जरूर करवा दीजिए।
4: इतनी भी क्या मजबूरी है शहर जाने की? कोई जायदाद हाथ लगने वाली है क्या?
3: मजबूरी है बाबू, तभी तो कहता हूँ।
2: अरे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, यकीन करो मैं तुम्हारे ट्रांसफर के लिए कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कादर भाई मैं कोशिश ही तो कर सकता हूँ, बदली के ऑर्डर तो मैं नहीं निकाल सकता ना
4: जी। ऐसी भी क्या मजबूरी है बड़े बाबू कि आप छुट्टी लेकर इसकी सिफारिश करने शहर जाते हैं?
2: मजबूरी ही है, और मजबूरी ये है कि इसकी एक ही औलाद है, इसकी बच्ची, और ये उसे पढ़ाना चाहता है। हमारे कस्बे में एक ही प्राइमरी स्कूल है, पांचवी जमात तक। अब तुम इसकी मजबूरी समझ गए ना? आगे पढ़ाना चाहता है ये अपनी बच्ची को।
4: आप तो नाराज हो गए बड़े बाबू।
2: नहीं नहीं मैं नाराज बिल्कुल नहीं हुआ, मैं बस ये समझा रहा था कि इस मजबूरी की वजह क्या है
3: जी।
2: वो कादर भाई।
3: जी जी बड़े बाबू।
2: अब आप खड़े क्यों हैं? जाइए अपना काम कीजिए और देखते हैं ऊपर वाले को क्या मंजूर है।
3: ठीक कहते हैं आप, ऊपर वाला बड़ा रहीम है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही।
2: अच्छा अरे हाँ कादर भाई।
3: जी।
2: अरे जरा सुनो तो।
3: जी हाँ।
2: अरे मान लो अगर तुम्हारी बदली हो भी गई वहाँ, तो वहाँ रहोगे कहाँ भाई? मेरा मतलब है इसका कुछ रहने का बंदोबस्त है वहाँ? नहीं
3: वो तो हो जाएगा, मेरी बहन है वहाँ।
2: अच्छा अच्छा।
3: अकेली है, शोर फेरी का काम किया करता था, शाल साड़ियाँ सनाना सूट, एक सीजन गया फिर लौट कर नहीं आया।
2: ओहो लेकिन क्यों?
3: क्या बताऊं, जितने मुंह उतनी बातें। पर उसके साथ ही फेरी वाले कहते हैं कि किसी दूसरी औरत के साथ निकाह पढ़वाया, वही दुकान दिलाने का लालच दिया उन्होंने। अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ।
2: ओह मैं बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा खादर भाई कोई बच्चा बच्चा?
3: हाँ हाँ बड़े बाबू एक बेटा है, मिस्त्री का काम करता है किसी वर्कशॉप में।
2: चलो तुम्हारे जाने से उसे भी कुछ सहारा मिल जाएगा। ठीक है तुम जाओ, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा भगवान ने चाहा तो।
1: अबू
2: हाँ?
1: हम शहर से वापस कब आएंगे?
5: ओफो अपने कपड़े ठीक से ट्रंक में रख ले, अभी हम यहीं हैं और तुम्हें वापस आने की फिक्र होने लगी।
1: अगले साल
5: जब तेरी पढ़ाई पूरी होगी तब। चल अब बातों में वक्त जाया मत कर, सवेरे ही यहाँ से निकलना है।
1: लेकिन अबू हम क्यों नहीं?
5: कहा ना वक्त जाया मत कर, इतनी मुश्किल से तो बदली करवाई है, बड़े बाबू का अगर मन बदल गया फिर कुछ नहीं कर सकेंगे हम।
1: अच्छा
5: चलो कर ले।
1: अबू मैं थोड़ी देर के लिए खेलने जाऊं?
5: खेलने जाएगी? ये जो इतना काम पड़ा है।
1: अबू जाने दो ना, एक आज ही तो खेलना है।
5: अच्छा बेटा पर जल्दी आना।
1: हाँ, जल्दी आऊंगी। अच्छा अबू।

0: आई हूँ यहाँ?
1: सारा सारा हम जा रहे हैं गांव छोड़कर।
0: तो मैं क्या करूँ?
1: हम नेशा के लिए जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: शहर।
0: क्यों?
1: अबू की बदली हो गई है। सुन, तू मुझसे नाराज है ना? देख देख, तेरे लिए एक चीज लाई हूँ।
0: किताब?
1: हाँ किताब, मैं वापस नहीं मांगूंगी। ले, ले लेना इसे।
0: अब मैं जाती हूँ सारा,
1: अबू ने जल्दी आने को कहा है।
0: अच्छा
1: अच्छा,
0: कितनी अच्छी किताब है।
2: अश्मी अश्मी अश्मी, अरे सुन तो।
0: अश्मी क्या? ये रख ली।
2: क्या? अपनी मुट्ठी बंद कर।
0: नहीं नहीं,
2: देखना नहीं,
0: मेरी कसम है। घर जाके खोलना, ठीक है ना?
1: अच्छा,
0: घर जाके।
1: घर जाके जाती हूँ।
0: आइए ये डॉक्टर, हम आप एक यहाँ देख रहे थे।
3: मुझे आने में जरा देर होगी।
0: नहीं नहीं, आप तो वक्त पे यहीं। ये दादी माँ की तबीयत अचानक कुछ बिगड़ गई, पुराने वक्तों को याद कर रही थी।
3: एक्साइटमेंट में अक्सर ऐसा हो जाता है।
0: आइए आइए।
3: हाँ
0: यहाँ
3: जी,
0: इस तरफ से
3: जी।
0: ये है हमारी दादी माँ।
3: अच्छा अच्छा। अब अरे सारा, सारा तू भी कहीं ख्वाब तो नहीं दिख रही सारा?
0: डॉक्टर सब कुछ कीजिए। दादी माँ, दादी
3: घबराओ नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तुम्हारी दादी। मैं इंजेक्शन देती हूँ, फिलहाल ये बाजू कैसे पकड़ो अपनी दादी का। हाँ
0: जल्दी
3: अच्छी तरह पकड़ो, इसे बचपन से उछल कूद करने की आदत। बस बस, अब थोड़ी देर में आराम आ जाएगा।
4: रिश्तों के जुगनू, अभी आप सुन रहे थे जनाब हृदय कौर भारती का तहरीर करता ये ड्रामा। तरतीबो पेशकश जनाब मोतीलाल काशो की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे अनवर अकील, जगदीश दुआ, एम रजा, नीरव अग्रवाल, फ्लोराबोस, माला कुमार और शारदा गुप्ता। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडेज पर हमारी नशात का सिलसिला जारी है। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में खराज तहसीन उस अदाकारा को जिनका आज यौम पैदाइश है। 70-60 की दहाई में वो बहुत मकबूल रही और हिंदी फिल्मों में एक अलग मकाम बनाया। ये वो दौर था जिसमें राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारे फिल्मी मैदान में थे। महबूब की मेहंदी, मन का मीत, रखवाला, मन चली जैसी फिल्मों से उन्हें कामयाबी मिली और नाम मिला। आप समझ गए होंगे हम किस अदाकारा की बात कर रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं लीना चंदावरकर की। आज के प्रोग्राम में उन्हीं के फिल्मों के चंद नाम में हम आपको सुनवाना चाहेंगे। लीना चंदावरकर 29 अगस्त यानी आज के दिन 1950 को कर्नाटक के धारवाड़ में एक कोंकणी मराठी खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद मोहतरम फौज में थे और कम उम्र में ही लीना ने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, दूसरा मकाम हासिल किया। उसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और 60 की दहाई के आखिर और 70 की दहाई की शुरुआत में कई उम्दा फिल्में उन्होंने की। और उनकी दूसरी शादी किशोर दास से हुई थी।
5: क्या हुआ?
6: हाय, गम का फसाना बन गया। अच्छा
5: अच्छा जी,

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

बैराग फिल्म का नगमा सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कल्याण जी आनंद जी की थी मौसीकी और नगमा निगार थे आनंद बख्शी। और ये सुनिए अपने रंग हजार फिल्म का दो गाना, आवाजें किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की, मौसीकी तरतीब दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गुरु नानक देव के दिखाए रास्ते में अपने रब को हमेशा याद रखना, उसका नाम जपना सबसे अहम बात मानी गई है। जप जी साहब रोजाना सुबह बेशतर सिख पढ़ते सुनते हैं, उसमें गुरु साहब फरमाते हैं,

0: इल्म और मेहनत से कुदरत के अनासिर पर भी फतह पाते हैं। ऐसे लोग अपने रब को याद रखते हैं, उससे प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग गुरु के कहने पर नहीं चलते, सो में बिसर न जाई उन पर लागू नहीं। वो तो उसे भूलकर अपने गुरूर और तकबर में गुनाहों की राह पे दौड़े चले जाते हैं। जब जी साहब में उनका जिक्र यूं आया है,
1: असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल पख खाए, असंख

इश्क की वो मंजिल जहां प्यार कभी भूलता ही नहीं, आशिको माशूक के दरमियान फासले मिटाना शुरू कर देती है। ऐसी कैफियत हमारे सूफी संतों ने बड़े प्यारे लफ्जों में बयान की है।

0: शो में बिसरना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे जनाब सुरेंद्र सिंह का तहरीर करदा की फीचर, तरतीब पेशकश प्रेम वोहरा की थी, सलाहकार थे मुजीब सिद्दीकी और प्रेम वोहरा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 12 बजे चाहते हैं अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि उनके इस दौरे से वस्ती एशिया में भारत की स्ट्रेटेजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और खित्ते से तहजीबी ताल्लुक गहरा होगा। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 629 तक पहुंच गई है, जबकि 2000 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ तेल से मुतालिक अब तक के सबसे बड़े मुआहदे का ऐलान किया है। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास फरकास को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के अपने 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए। अपने अलविदाई बयान में जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि उनके दौरे से वस्ती एशिया में भारत की स्ट्रेटेजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और खित्ते से तहजीबी ताल्लुक गहरा होगा। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में भारत उज्बेकिस्तान स्ट्रेटेजिक साझेदारी में काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई है। वजीर आजम ने कहा कि वह तिजारत और सरमायाकारी, डिजिटल कनेक्टिविटी, दिफा, तवानाई के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और विकसित भारत और यंग उज्बेकिस्तान के मुश्तरका विजन को तेजी से आगे बढ़ाने के सिलसिले में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने कहा कि वह किर्गिज जमहूरिया के सदर की दावत पर शंघाई तआवुन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बिश्केक जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वह सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मौके की बुनियाद पर खित्ते के लिए भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने और दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी से पाक खित्ते के लिए साथी अरकान के साथ मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। उज्बेकिस्तान में भारतीय सफीर स्मिता पंत ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तेजी के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सभी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मोहतरमा स्मिता पंत ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान कारोबार में कई गुना इजाफा हुआ है और वजीर आजम के इस दौरे में दोनों मुल्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रूकावटों को दूर करने पर बातचीत करेंगे। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस तरह भारत इस मिसाइल निजाम का बाजाब्ता खरीदार बन गया है और दोनों मुल्क भारत में इसे मुश्तरक तौर पर तैयार करने की समत काम करेंगे। भारत में अमरीकी सिफारतखाने और कौंसिल खाने ने एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए पेशकश और मंजूर करने से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत किए।

0: क्रिकेट में आज दुबई में खवातीन के टी20 एशिया कप में ग्रुप बी के एक मैच में श्रीलंका का मुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय खवातीन की क्रिकेट टीम कल थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच 5 सितंबर को होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि उनके इस दौरे से वस्ती एशिया में भारत की स्ट्रेटेजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और खित्ते से तहजीबी ताल्लुक गहरा होगा। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 629 तक पहुंच गई है, जबकि 2000 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ तेल से मुतालिक अब तक के सबसे बड़े मुआहदे का ऐलान किया है। और भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फरकास को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटी फ्रेडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। मेरे सुर मेरा तुम्हारा, इस प्रोग्राम में सुनिए चंद फिल्मी दुकानें। आगाज जिंदगी तेरे नाम फिल्म के दुकाने से, आवाजें अफजाल साबरी और ऋचा शर्मा की, मौसीकी साजिद वाजिद की और कलाम है जलीस शेरवानी का।

मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से। इस प्रोग्राम की अगली पेशकश ऋचा शर्मा की आवाज में नापा, जिसमें कुणाल गांजावाला उनका साथ दे रहे हैं। फिल्म है सिंघम, मौसीकी अजय अतुल की।

उन्हीं सुनी थाल फिल्म का नगमा अशोक भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण का गाया हुआ नगमा। 11 नंबर की मौसीकी यार रहमान की।

0: आज हम नचले फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे ऋचा शर्मा, कैलाश खेर और सलीम मर्चेंट की आवाजों में। मौसीकी तरतीब दी थी सलीम सुलेमान ने। मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। सामने ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं तारीख सास प्रोग्राम। मौजू है तक्षशिला यूनिवर्सिटी।
1: तक्षशिला यूनिवर्सिटी का शुमार हिन्दुस्तान की कदीम तरीन इल्मी दरसगाहों में होता है। तीसरी सदी कबल मसीह में मौर्य हुकूमत के दौर में ये इदारा मुल्क और बैरून मुल्क अहम तालीमी मरकज माना जाता था और हिंदुस्तान का तरीके तालीम बहुत मयारी माना जाता था। कदीम हिंदुस्तान में तालीम और जहनी तरबियत को बहुत अहमियत दी जाती थी और तालीम के तीन अहम मकसद माने जाते थे, तहसील इल्म के साथ जहनी तरबियत और तीसरा ये कि मजहबी रसूम अदा करने की लियाकत। मुल्क में जगह जगह दीनी दरसगाहें कायम थीं जिनमें तक्षशिला को मरकजी और अहम मकाम हासिल था। तक्षशिला में मुल्क के अलावा बैरून मुल्क से भी बड़ी तादाद में तालिब इल्म तालीम हासिल करने आते थे। हिंदुस्तानी उलूम और फलसफे को यूनान में बहुत कदर की नजर से देखा जाता था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सिकंदर ने मशरिकी मुहिम के लिए कूच किया तो उसके उस्ताद अरस्तू ने उसको मशवरा दिया कि हिंदुस्तानी उलूम हासिल करने के लिए वो अपने साथ कुछ यूनानी आलिम लेता जाए। चुनांचे हिंदुस्तान पहुंचकर सिकंदर तक्षशिला गया और बहुत मुतासर हुआ। वो अपने साथ चंद हिंदुस्तानी तबीबों को यूनान ले गया। तक्षशिला आला तालीम का ऐसा मरकज था जहां मुख्तलिफ उलूम की तालीम एक साथ दी जाती थी। तक्षशिला के बारे में तफसील बुद्ध मजहब की जातक कहानियों से मिलती है। तक्षशिला के निसाब में कमोबेश 68 किस्म के उलूम और फनून शामिल थे जिनमें मजहब, सियासी नजरियात के अलावा सिपागिरी, तीरंदाजी, तिब, जराही, फलकियात, मौसीकी

0: अलावा दीगर अलूम भी शामिल थे। जब लड़का शऊरमंद हो जाता तो उसको तालीम और तरबियत के लिए तक्षशिला में दाखिल कर दिया जाता था, जहां वो कई बरसों तक तालीम हासिल करता था। तालीम हासिल करने के बाद जब वो वापस घर जाता तो समाज में कदर के नजर से देखा जाता था। उस्ताद के लिए हक्कुल मेहनत तय था, जो शागिर्द को पढ़ाई शुरू करने से पहले या उस दौरान अदा करना होता था। गरीब तालिबे इल्मों को तालीम के लिए कुछ देना नहीं पड़ता था, बस उस्ताद के घर का काम करना होता था। लेकिन जब तालिबे इल्म क्लास में एक जगह बैठते तो वहां अमीर और गरीब की कोई तफरीक नहीं की जाती थी। एक जमात में आमतौर से कई सौ तलबा शामिल होते थे। हर एक उस्ताद के साथ बतौर नायब उनके मुमताज साबिक तालिबे इल्म भी शामिल होते थे। तक्षशिला में रोजमर्रा का काम बहुत कायदे के साथ शुरू होता था। हर एक तालिबे इल्म अंधेरे से बेदार हो जाता और जरूरियात से फारिग होकर पढ़ने में मसरूफ हो जाता। ये सिलसिला दोपहर के खाने के वक्त तक जारी रहता। दोपहर को कुछ देर आराम के बाद शाम का वक्त उन असबाक को दोहराने में सरफ किया जाता जो सुबह को पढ़ाए गए थे। यह तरीके तालीम हकीकत पर मबनी था, जिसमें तालिबे इल्म की जहनी इस्तेदाद का ख्याल रखा जाता था। उस्ताद बातों बातों में सब कुछ बता देता था। इसकी एक मिसाल शहजादा जीविक की कहानी है, जो 7 बरसों तक वहां जेर तालीम रहा। नौजवान शहजादा जब तालीम मुकम्मल कर रहा था तो उसके गुरु ने कहा कि जाओ शहर के गिर्दो नवा में घूमकर कोई ऐसी बूटी या पौधा तलाश करो जिसको दवा में इस्तेमाल न किया जा सके, और अगर कोई पौधा मिले तो मेरे पास लाना। जीविक कई दिनों तक शहर के चारों तरफ जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। जब उसने अपनी तलाश और नाकामी की रुदाद गुरु को सुनाई तो गुरु ने उसको शाबाशी दी और उसको घर जाने की इजाजत दी, यानी तालिबे इल्म इम्तिहान में कामयाब हो गया। ये तरीके तालीम ऐसा था कि इल्म जहन पर नक्श हो जाता था। तक्षशिला के असातिज़ा में ऐसी शख्सियत शामिल थी जिनके इल्म और फन की शोहरत मुल्क के अलावा बैरून मुल्क में भी फैली हुई थी। उनमें बहुत सी एहसास शख्सियत शामिल थी, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध की अहम शागिर्द अंगोली माल, जैविक जो शाही तबीबी थे, हिंदुस्तानी तिब के माहिर चरक, संस्कृत जुबान के माहिर और कवायद नवीस पानी, मौर्या सल्तनत के वजीर आजम और सियासी मुफक्किर चाणक्या यहां पढ़ाते थे। तक्षशिला का तर्ज तालीम बहुत मरबूत और मौसर था, जिसके नतायज बड़े देरपा और दूर रस होते थे। चीनी सयाह हिवन सॉन्ग लिखता है कि जब तालिबे इल्म तालीम मुकम्मल करके 30 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसका किरदार सादगी की मिसाल होता है। वो अपना वक्त इल्म और फन के गहरे और अमीक मसाइल हल करने में सरफ करता है। इसी हिंदुस्तानी तर्ज तालीम की नुमाइंदा और अलामत थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी।
1: तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इस मौजू के हवाले से भी आपने तारीख साज प्रोग्राम सुना। तहरी जनाब सज्जाद रिजवी की थी, रावी थी फूला पंडिता। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा।
2: क्या

0: इस नंबर के साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
3: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: प्रोफेसर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र जो है, जो ये इलाके हैं, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ है, तो ये अब इतनी गंभीर और अनिश्चित क्यों होती जा रही है? इसमें जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है और ग्लेशियर के पिघलने या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी, या फिर भूमि के इस्तेमाल में जो बदलाव हो रहा है, कौन से ऐसे मूल कारण हैं?
4: देखिए, ये जो हमारी तीव्र गति की बाढ़ है, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है ज्यादातर, और सडन आकस्मिक होती है और काफी स्वीयर भी होती है इसके इम्पैक्ट्स। और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो हमारी वर्षा की इंटेंसिटी बदल रही है, माप बदल रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा, जो टेम्परेचर चेंजेज हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट भी बढ़ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है रिवर्स में, और इसके अलावा हाई अल्टीट्यूड लेवल्स में जो है भूस्खलन की घटनाएं भी काफी घटित हो रही हैं। तो इस तरह से मिलकर, एक तो ग्लेशियर का पिघलना जलवायु परिवर्तन की वजह से, जिसमें हमारे एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, दूसरा हमारे यहाँ जो वर्षा अधिक मात्रा में हो रही है जिसको हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं, और तीसरा भूस्खलन भी हो रहे हैं इनके साथ। तो बड़े रॉक डिटैचमेंट्स में, जैसे कि हमारी धौली गंगा रिवर में भी हुआ था पहले, ऋषि गंगा और धौली गंगा में 7 फरवरी 2021 में, और ऐसे ही सिक्किम में लोनाक लेक में हुआ था 4 अक्टूबर 2023 में। तो इसी तरह की ये घटना इस बार नेपाल में घटित हुई है। मौसम के पूर्वानुमान के बावजूद भी संभावनाएं नहीं पल लगा पाए कि इस तरह की तीव्र गति की बाढ़ आ सकती है, जो जिसका ओरिजिन जो है चाइना से हुआ, और उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से काफी लोग उसमें मौत का शिकार हुए
3: जी।
4: और आपदा से ग्रसित हुए, अभी भी काफी लोग लापता हैं। और इस तरह की परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि हमारे सामने पहली बार आई हैं, कई बार, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे चमोली का दिया, सिक्किम का दिया, और ऐसे ही और कई इलाकों में भी बाढ़ आती रही है, हिमाचल में भी आई है
3: जी।
4: और जम्मू एंड कश्मीर में भी आई है। तो इस तरह का प्रक्रियाएं प्राकृतिक है, परंतु इसमें हमारी मानवीय दखलअंदाजी जो है ज्यादातर हमारे शिकार होने का कारण बनती है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में अपने निवास स्थल भवन बना रहे हैं, संरचनाएं बना रहे हैं जो बाढ़ आपदा से ग्रसित रहती हैं। यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है, और सामान्य मौसम की जानकारी होते हुए भी, जो कि हमारा भारतीय मौसम विभाग जैसे अक्सर 7 दिन पहले या पूरे मानसून सीजन का पूर्वानुमान देता है, और उसका 3 दिन का भी देता है, फिर डेली बेसिस और ओवरली बेसिस पे भी डॉपलर वेदर रडार के जरिए वो सूचनाएं प्रदान करता है।
3: ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, यानी कि जिसे हम हिंदी

0: बॉडी डिटैच हुआ था एक बड़े रॉकफॉल के साथ। इसी तरह से ये इस बार भी हुआ कि 1 किलोमीटर से ज्यादा का स्लो फेस गिरा और उसके साथ ग्लेशियर बॉडी भी आई और उसके बाद एक लेक बनी और सडन उसका ब्रेचिंग हुआ। तो ये जानकारी भूस्खलन व संबंधित जो समय अवधि के अनुसार ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। अदरवाइज मौसम की और ग्लेशियर मेल्ट की जानकारियां डिस्चार्ज और एटमोस्फेरिक मॉनिटरिंग के जरिए हम रखते
1: जी
0: हैं वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम से।
1: प्रोफेसर साहब, कई बार इस तरह की जब आपदाएं आती हैं तो सवाल ये उठता है कि ये घटना पूरी तरह से प्राकृतिक रही है या इंसानी गतिविधियों ने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जिसकी वजह से हमें ऐसी विनाशकारी परिस्थिति देखने को पड़ी है। एक वैज्ञानिक नजरिए से आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हिमालय में मानवीय हस्तक्षेप के बाद बाढ़ के खतरे बढ़ रहे हैं?
0: आपने बिल्कुल सही बोला है, मानवीय दखलंदाजी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बढ़ गई है। हम लोग जो भी बाढ़ क्षेत्र थे, जो जैसे हम 3 जोन में फ्लड जोनेशन में बात करते हैं,
1: जी
0: एक तो है प्रोविटेड जोन जिसमें नदी को हमेशा आना है जाना है और मानसून में उसका बड़ी मात्रा में डिस्चार्ज वहां पे दिखना है, परंतु उसके बाद हमारा एक रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है और एक हमारा होता है परमिटेड, परमिटेड विद रेगुलेशंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड जोन में ही बना दे रहे हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान। अगर आपने देखा हो इस बाढ़ में भी नदी किनारे बहुत सारे घर थे
1: राइट
0: और नदी के बीचों बीच जो अक्षर में ब्रिजेज भी बन रहे हैं ना, वो हम अभी भी शॉर्टेस्ट स्पैन देख के बना रहे हैं, हम
1: जी
0: सेफ्टी मेजर्स देखते हुए नहीं बना रहे हैं। शॉर्टेस्ट स्पैन में पानी की वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है और उसके साथ जब सेडिमेंट आता है तो उसकी इरोजिव कैपेसिटी कई गुना हो जाती है, तो ऐसे में ब्रिज के पियर्स बिल्कुल जो है इरोड हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्रिज भी पानी के साथ बहता हुआ जाता है।
1: जी
0: तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि आपके रोपवेज हैं या झूला पुल हैं या दूसरे पुल बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं या फिर सड़कें हैं, ये सब भी आपदा का शिकार बन जाती हैं क्योंकि उनका जो डिजाइन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ये उस हिसाब से नहीं है जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का ध्यान दिया गया।
1: जी
0: तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि किस तरह की आपदाएं से हमारी जो संरचनाएं या भवन प्रभावित हो सकते हैं और उसके लिए क्या बचाव कार्य हमें करने चाहिए और किस तरह का निर्माण कार्य हमें करना चाहिए, विकास कार्य करना चाहिए, तब तक हम सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर सकते हैं।
1: जी
0: एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना
1: जी
0: चाहूंगा,
1: जरूर जरूर
0: अगर आपने नेपाल की खबरें सुनी हैं तो बहुत
1: जी
0: सारे लोग हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं जिनको इस लोकल फिनोमिनस का आइडिया भी नहीं होता, उन्होंने कभी ऐसी फ्लैश फ्लड्स देखी भी नहीं है, वो इसका ज्यादा शिकार बनते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जन समुदाय होते हैं, उन्होंने कई बार अपने जीवन में इस तरह की प्रक्रियाएं देखी होती हैं तो उनको पता है कि ऐसा कुछ भी घटित होता है तो जान माल का खतरा है और ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए और जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको भी अपने साथ ऊपर ले जाना चाहिए। वो पहले से तैयारी करते हैं मानसून सीजन के लिए, हमारे यहाँ जो विभाग है उनको भी पहले से मानसून के लिए तैयार किया जाता है और पहले से रिसोर्सेज भी डेडिकेट किए जाते हैं और पहले से प्री पोजिशनिंग भी करते हैं हम अपने रेस्पॉन्स फोर्सेज की।
1: जी
0: तो ये सब प्रक्रियाएं होते हुए इसके अलावा पूर्व चेतावनी उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में दी जाती है ताकि वो लोग पहले से अपने सही सुरक्षित स्थान पर रिक्तिकरण कर पाए।
1: प्रोफेसर साहब, आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो मैं इस क्वेश्चन पर आने वाला था। हम अगर नेपाल की बात करते हैं तो ये जो अचानक से बाढ़ आई जिसके बाद हमने देखा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जानमाल का भी वहां पर लॉस हुआ है, तो राहत और बचाव अभियान शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ता नहीं मिला, सड़कें तबाह हुई, पुल और संचार व्यवस्था सब एक साथ बाधित हुए। तो भारत के नजरिए से अगर हम इस फ्लड को देखते हैं तो हमें क्या समझना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए?
0: देखिए जैसे मैंने कहा आपका सारा एक्सेसिबिलिटी उसमें मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें पहले से ये जो रेड अलर्ट देते हैं और जो हाई रिस्क जोन में हम डिफाइन कर देते हैं एरिया को,
1: जी
0: वहां के लिए पूर्व तैयारी की बहुत जरूरत होती है। आपदा के दौरान हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते अगर हमने पूर्व तैयारी नहीं की है, तो उस केस में आप स्ट्रीम एरिया से हेल्प इजीली आ सकती है, डाउन स्ट्रीम एरिया कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसे में जो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो जल का प्रवाह भी बढ़ जाता है और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है और उसका कटाव भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से नीचे से ऊपर की तरफ को मदद पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु ऊपरी

0: क्षेत्र हैं जहां पर हमने पहले से इस तरह की सामग्री एकत्रित की हो,
1: जी
0: जो हम आपदा से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको मदद के लिए पहुंचा सके, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ये प्री पोजिशनिंग की, जो मैंने कहा, रिसोर्सेज की भी और पर्सनल की भी, ये बहुत जरूरी होता है।
1: प्रोफेसर साहब, अभी अगर हम वर्तमान चीजों की बात करते हैं तो उपग्रह चित्र होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, दूर संवेदी तकनीक है, इन सब का काफी विकास हो रहा है और इन तकनीकों की मदद से मौसम से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें इस दिशा में बहुत कामकाज करने की जरूरत है, क्योंकि अचानक से जो बाढ़ आ रही है उसकी जानकारी इकट्ठा कर पाना शायद अभी उतना आसान नहीं हो पाया है?
0: बाढ़ एक वार्षिक प्रक्रिया है। मौसम की जानकारी, जैसे आपने भी बोला, काफी अच्छे तरह से आज के दिन में हम कर पा रहे हैं, परंतु जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों की ढाल की जो स्थिरता की परिस्थितियां हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी नहीं। हालांकि हम स्थिरता निर्धारित कर देते कि स्थिर है या कम स्थिर है, या एवरेज औसत स्थिरता है या अस्थिरता है, ये सारी चीजों का हमें एक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए हम जोनेशन मैपिंग करते हैं, उसके जरिए आइडिया लगा लेते हैं। परंतु किस समय इस तरह के भूस्खलन होंगे जिनसे नदियां बाधित हो सकती हैं, जिनसे ग्लोफ या लॉफ, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड, और लॉफ बोलते हैं लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स फ्लड, वो बन सकती हैं और उससे फ्लैश फ्लड्स हो सकती हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति है जिसके बारे में हमें और अच्छा, रिलायबल, क्रेडिबल पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने की जरूरत है। इसके अलावा ये एरियाज काफी कठिन होते हैं पहुंच के हिसाब से,
1: जी
0: और वहां पर एक कार्य करना, तकनीक का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको वहां पर समुदाय आधारित जोखिम आपदा प्रबंधन की ज्यादा जरूरत है। वहां पे समुदाय आधारित पूर्व चेतावनी तंत्र लगाने चाहिए जो लोकल कम्युनिटी खुद से ऑपरेट कर सके और पहले से अलर्ट्स अपने आप से जारी कर सके और वहां के लोगों को इवैक्यूएट कर सके। तो स्थानीय कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की भी जरूरत है, जहां हम सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम या एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। एआई हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि हम पे इसमें बहुत सारा डाटा एक साथ मल्टीपली और डिफरेंटली यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए। परंतु सैटेलाइट हो, एआई हो या और कोई भी सिस्टम हो, उसका फायदा तब है जब स्थानीय जो जनता है, जन
1: जी
0: समुदाय है, उस तक वो सूचना पहुंचे जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, ताकि वो अपने बचाव के लिए उचित कार्रवाइयां कर सकें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसे आपने जिक्र किया कि लोकल कम्युनिटी का सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीज में, तो हमें इस चीज की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी उन तक पहुंचाएं और साथ में ही ऐसी व्यवस्था करें कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो सबसे पहले मानवीय और तकनीकी सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके।
0: बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, वहां से एक ऐप को लॉन्च किया गया, सचेत ऐप को,
1: जी
0: जो जियो फेंस्ड है और मल्टीलिंगुअल है, तो लोकल एरियाज के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए पुश मैसेजिंग स्कीम है। तो इस तरह की जो एप्स हैं, जिसको हम कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के जरिए अपनी आपदा प्रबंधन जो इकाइयां हैं उनको भी देते हैं, और इसके अलावा हर व्यक्ति तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में एक ना एक व्यक्ति के पास तो मोबाइल रहता ही है।
1: जी
0: तो मोबाइल के जरिए जो हम ये आउटरीच की कोशिश कर रहे हैं और पूर्व चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा कई और भी स्मार्ट एप्स डेवलप हो रही हैं, जैसे तमिलनाडु ने टीएन स्मार्ट बनाया, ऐसे ही असम ने फ्लूज करके मॉडल बनाया फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, मुंबई चेन्नई ने भी आई फ्लोज करके बनाया, और हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी एक ऐप लॉन्च करी फ्लड वॉच करके।
1: जी
0: तो इस तरह की सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर सबके पास हो, और इसके अलावा अगर आप फंस जाते हो उस सबके बावजूद भी, तो आप डिसास्टर हेल्पलाइन 112 पे कॉल कर पाए।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: अभी आप सुन रहे थे हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पूर्व चेतावनी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: उज्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने एतमाद जाहिर किया है कि उनके इस दौरे से वस्ती एशिया में भारत की कलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी और खित्ते से तहजीबी ताल्लुक गहरा होगा। भारत ने जेवलिन टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल निजाम खरीदने के लिए अमरीका के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 626 तक पहुंच गई जबकि 2000 अफराद अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद तेज कर दी है और भारत के बेलावेन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फरकास को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का टाइटल जीत लिया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात।

0: शुभन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बेस फ्रेकास को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का टाइटल जीत लिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सहपहर 3 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
1: आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क।
3: श्रोताओं, राखी ने फिल्म शर्मिली में दोहरी भूमिका निभाई थी, कंचन और कामिनी की, जहां कंचन बेहद शांत शर्मिली और सीधे साधे स्वभाव की लड़की है, वहीं कामिनी एक मॉडर्न चंचल और बिंदास जीने वाली लड़की है। इसकी सफलता ने उन्हें उस दशक की हिंदी फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। इस फिल्म से रंजीत ने भी डेब्यू किया था। फिल्म की शुरुआत रोमांटिक ट्रैक से होती है, लेकिन आधे ड्यूरेशन के बाद ये रहस्य और थ्रिलर की ओर एक शानदार मोड़ लेती है। इस फिल्म ने राखी को रातों रात एक स्टार बना दिया।

श्रोताओं, शर्मीली फिल्म का संगीत भारतीय दर्शकों के बीच तुरंत हिट हो गया। एसडी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध, नीरज द्वारा लिखित और किशोर कुमार, लता मंगेशकर तथा आशा भोसले द्वारा गाए गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये गीत 1971 की बिना का गीतमाला के शीर्ष 10 गीतों में शामिल थे। फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा अलग अलग गीतों के रूप में गाया गया गीत खिलते हैं गुल यहां भीम पलासी राग में है, जबकि मेघा छाए आधी रात पटदीप राग में है।

श्रोताओं, फिल्म शर्मीली अपने दौर की उन फिल्मों में से है जो वैसे तो एक रोमांटिक कहानी के रूप में प्रचारित हुई थी, लेकिन फिल्म देखने पर उसमें सस्पेंस थ्रिलर के साथ अजब भावनाओं की कई परतें छुपी हुई हैं। फिल्म की कहानी मशहूर लेखक गुलशन नंदा की थी, जिनकी कहानियों में रोमांस के साथ साथ रहस्य भी हमेशा मौजूद रहता था। गुलशन नंदा की लेखनी को सिनेमा में ढालना आसान नहीं होता था, लेकिन समीर गांगुली ने इसे बहुत संतुलन के साथ पर्दे पर उतारा।

इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति और जाते जाते आप सभी के लिए फिल्म का ये आखिरी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। मैं सरबजीत कौर, प्रलयस बुलेटिन दिया खास खबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्वीर उज्बेकिस्तान किर्गिज गणराज के अपने 4 दिन दौरे लिए रवाना हो गए थे। भारत अर्जेंटीना सांझी व्यापार कमेटी की चौथी मीटिंग ब्यूनो आयरस विच हुई। मीटिंग विच स्थापित कार्य योजना की समीक्षा की गई। भारत दी सब तो महान खेड शख्सियतों विचों एक मेजर ध्यान चंद के जन्मदिन मौके आज देश भर विच राष्ट्रीय खेड दिवस मनाया जा रहा है। नेपाल विच आए भयानक हड़ा कारण मरण वाले की गिनती बढ़ के 626 हो गई है, जबकि 2000 तो वध लोग अजे भी लापता ने। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजशकिया ने कहा है कि जेकर अमरीका शांति समझौते दी शर्तों की पालना करता है तो ईरान भी अपनी वचनबद्धतावां नूं पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अज सवेरे उज़्बेकिस्तान किर्गिज गणराज से अपने 4 दिन दौरे लिए रवाना हो गए ने। अपने रवानगी बयान में श्री मोदी ने विश्वास प्रगट किया कि उज़्बेकिस्तान किर्गिज गणराज की उन्होंने यात्रा मध्य एशिया विच भारत की रणनीतिक भाईवाली मजबूत करेगी और खेतर नाल सभ्यता के संपर्क नूं होर डूंघा करेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही के सालों में भारत उज़्बेकिस्तान रणनीतिक भाईवाली विच अहम तरक्की हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव नाल व्यापार ते निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा, ऊर्जा विच सहयोग नूं होर डूंघा करन अते विकसित भारत ते यांगी उज़्बेकिस्तान दे सांझे दृष्टिकोणां नूं अगे वधाउण ते चर्चा दी तांग रखदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि किर्गिज गणराज के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के सदे ते ओ 26वें एससीओ सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई बिश्केक जाणगे। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा, संपर्क ते मौकियां ते आधारित इस खेतर लई भारत के दृष्टिकोण नूं अगे वधाउण अते दहशतगर्दी, वक्खवाद ते कट्टड़वाद दे कहर तों मुक्त खेतर लई साथी मैंबरां नाल काम करन दी उम्मीद कर रहे ने। प्रधानमंत्री की यात्रा दौरान दुर्लभ धरती खनिजा विच सहयोग बारे महत्वपूर्ण फैसले बारे काफी चर्चा होने की उम्मीद है। आकाशवाणी खबरों नाल एक इंटरव्यू विच उज़्बेकिस्तान विच भारतीय राजदूत स्मिता पंत ने कहा कि उज़्बेकिस्तान कुदरती वसीलियां नाल भरपूर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ताशकंद यात्रा विच खनन अते दुर्लभ धरती खनिज खेतरां विच निवेश ते तकनालोजी तबादले ते भी चर्चा की जाएगी।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: भारत अर्जेंटीना सांझी व्यापार कमेटी की चौथी मीटिंग ब्यूनस आयरस विच हुई। मीटिंग विच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2025 विच अर्जेंटीना यात्रा दौरान स्थापित कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोवां देशों ने रणनीतिक अते आर्थिक संबंधां नूं होर मजबूत करन दी अपनी वचनबद्धता नूं दोहराया। माइनिंग, ऊर्जा अते बुनियादी ढांचे दे खेतरां विच निवेश दे मौके ते चर्चा की गई। भारत दे मिनरल्स फॉरन इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना दे लिथियम खेतर विच भी महत्वपूर्ण प्रगति की। कंपनी ने कैटामार्का विच ड्रिलिंग का दूजा पड़ाव पूरा कर लिया, जो कि अर्जेंटीना विच एक भारतीय कंपनी वालों पहला लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट है। साल्टा अते जुयूव सूबे विच भी नवे मौकियां दी कोख कीती जा रही है। भारत दी सब तो महान खेड शख्सियतां विचों एक मेजर ध्यान चंद के जन्मदिन मौके आज देश भर विच राष्ट्रीय खेड दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के अमीर खेड विरसे का जश्न मनाउंदा है अते लोकां नूं खेडां नूं आपणे रोजाना जीवन का नियमित हिस्सा बनाउण लई उत्साहित करदा है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रीय खेड दिवस 2026 नूं 3 दिन देशव्यापी मुहिम वजों मनाया जा

0: करते हुए का नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज जम्हूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से अहम नौबियत की साझेदारी मुस्तहकम होगी और वस्ती एशिया के साथ तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। नेपाल में अचानक सैलाब आ जाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 626 हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। ईरान के सदर पेजेशकियान ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इंतहाई मोहताज है। आज खेलकूद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है और खेलों से वाबस्ता अफराद की लगन को सराहा है। और IMD ने ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज जम्हूरिया के अपने 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले अपने बयान में जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि उनके दौरे से वस्ती एशिया में भारत की स्ट्रेटजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और खित्ते से तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। उन्होंने कहा है कि हालिया बरसों में भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटजिक साझेदारी में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो तिजारत और सरमायाकारी, डिजिटल कनेक्टिविटी, दफा, तवानाई के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के मुश्तरक विजन को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने ताल्लुकात को अहम नौइयत की साझेदारी की सतह तक बढ़ाया है। इसके बाद से दोतरफा ताल्लुकात में कई शोबों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान करीबी, कसीर रुखी और बढ़ती हुई सियासी साझेदारी में इजाफा होगा। बातचीत के दौरान बाहमी इश्तराक के कई शोबों को शामिल किए जाने और दोतरफा ताउन को मुस्तहकम किए जाने के तरीके तलाश किए जाने की उम्मीद है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि किर्गिज जम्हूरिया के सदर सादिर ज़ापारोव की दावत पर शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बिश्केक जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि वह सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मवाकिब की बुनियाद पर खित्ते के लिए भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने और दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी की लानत से पाक खित्ते के लिए साथी अरकान के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूने मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। इसके अलावा इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी नशरिया के फौरन बाद यह प्रोग्राम इलाकाई जबानों में नशर होगा। नेपाल और तिब्बत में तबाह कुन अचानक सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर आज सुबह तक 626 हो गई थी, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। पुलिस ने चितवन से 233, नवलपरासी ईस्ट से 158, गोरखा से 48, नवलपरासी वेस्ट से 47, धारिंग से 45, नुआकोट से 41, तरूह से 31 और रसुआ से 13 लाशें बरामद की हैं। मुतासर जिले में बचाव और इमदादी कामों के साथ साथ लापता अफराद की तलाश जारी है। बचाए गए अफराद को महफूज जगहों पर ले जाया जा रहा है। वज़ारत ख़ारिजा ने कल बताया था कि 320 भारतीय बाशिंदों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है या वो बुध को अचानक सैलाब में लापता हो गए थे। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत नजाद अफराद से भी, जिनके पास दूसरे मुल्कों की शहरियत है, कोई राबता कायम नहीं हो सका है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान जनाब जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली पनबिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय बाशिंदों को بچا لیا گیا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ چین کی طرف والے علاقے

0: 400 के करीब भारतीय बाशिंदे महफूज हैं और उन्होंने अपने कुंबे वालों से राब्ता कायम कर रखा है। सरकार ने वजारत खारजा में कंट्रोल रूम कायम किया है जो रात दिन काम कर रहा है। काठमांडू और बीजिंग में भारत के सफारतखाने बाहमी तालमेल से काम कर रहे हैं। काठमांडू में वाकई भारत के सफारतखाने का ये नंबर है +9779851306807 +9779701705000 +9779813261117। पीजिंग में भारत के सफारतखाने का नंबर यह है +86185182845। इसी दौरान भारत ने नेपाल को इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद के काम में और तेजी कर दी है। 10 टन की इमदादी सामान लेकर भारत की तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू पहुंची। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। वेनेजुएला के साथ यह तारीखी मुआहदा अमरीका को 65 अरब बैरल से ज्यादा के तस्दीक शुदा खाम तेल के जखाए पर अक्सरियती कंट्रोल फराहम करेगा। उन्होंने कहा है कि यह मुआहदा अमरीकी टैक्स दहिंदगान के किसी खर्च के बगैर हासिल किया गया है और इससे कुल अमरीकी तेल के जखाए दोगुना से भी ज्यादा हो जाएंगे। भारत के खेलों की एक अदीम शान शख्सियत मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में खेलों के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत के खेलों के मालामाल विरसे की अहमियत को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है और लोगों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की जाती है कि वो खेलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज का दिन एक घंटा खेल के मैदान में मौजू के तहत मनाया जा रहा है और इसके तीन अहम सुतून तय किए गए हैं, प्ले, ट्रिब्यूट और मूव। इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया जा रहा है। दिल्ली में मरकजी वोदरा डॉ मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की शानदार कारकर्दगी आने वाली नस्लों को हौसला फराहम करती रहेगी। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को गुलाय अकीदत नजर किए। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश मनाने के लिए हर साल खेलकूद का कौमी दिन मनाया जाता है।
1: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। आज सुबह से मुझे सूचना मिल रही है लाखों की संख्या हर गली में मैदान में देश के युवा एक घंटे के लिए खेलने के लिए आए हैं। मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा।
0: ईरान के सदर मसूद पेशकियान ने कहा है कि तेहरान अमरीका के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार है, साथ ही वो मोहताद भी है। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर अमरीका समझौते का एहतराम करता है तो ईरान भी उसकी पासवानी करेगा। ईरान के सदर ने कहा है कि जून के अमन समझौते के मुफाहमतनामे को फिर से सरगर्म करने के लिए सिफारती कोशिशें मरकूज की जा सकती हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने पीर तक के लिए ओडिशा में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, मगरबी बंगाल के गंगा वाले इलाके, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और शिमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कौमी राजधानी में अगले 7 दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में किसी खातिर खा तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से अहम नौइयत की साझेदारी मुस्तहकम होगी और वस्ती एशिया के साथ तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। नेपाल में अचानक सैलाब आ जाने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 626 हो गई है जबकि 2000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत ने इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा कर दिया है। अमरीका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। ईरान के सदर मसूद पेशकियान ने कहा है कि ईरान के साथ अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वो इंतहाई मुहतात है और आज खेलकूद का कौमी दिन मनाया जा रहा है।

0: News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
2: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
1: इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
2: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में

0: उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 01-230-88-719 और 01-230-1213। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@nea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +9779851316807 प्लस का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रूपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं। ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, पे एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
3: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में

0: फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
1: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। बैंडविड्थ 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं 1970 के दशक की मशहूर फिल्म अभिनेत्री लीना चंद्रवरकर।

श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात हो और उसकी सबसे चुलबुली, हसीन और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हमारी लीना चंद्रवरकर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी मनमोहक मुस्कान और सहज अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली लीना जी का फिल्मी सफर किसी हसीन और प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है।

शब्दों में भी याद है कि आज लीना चंद्रवरकर का जन्मदिन भी है। लीना जी को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य बने रहे और वो हमेशा खुश रहें और लोगों को प्रेरणा देती रहें। लीना चंद्रवरकर का सफर जो है 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ। जब वो पर्दे पर आईं तो उनकी सादगी और ताजगी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी इस अनोखी कशिश और शुरुआती सफलता को बयां करता है फिल्म मन की आंखें। इस फिल्म के गीत जिसमें मिठास और जज्बात दोनों थे, इसने इंडस्ट्री में लोगों को काफी लोकप्रिय बनाया और 1970 के दशक में ही लीना जी का नाम सफलता की गारंटी बन गया। उन्होंने उस दौर के तमाम बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पलकों पर बिठाया। फिल्म महबूब के मेहंदी में जब उन पर यह सदाबहार गीत फिल्माया गया, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, तो

श्रोताओं, प्यार की कोमल भावनाओं और शर्मीले एहसासों को पर्दे पर जीवंत करने में लीला जी माहिर थी। जब फिल्म अजनबी में उन पर और राजेश खन्ना साहब पर बर्फ की ढकी वादियों में ये गाना फिल्माया गया, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, तो लीला जी की सादगी और मुस्कान ने इस रोमांटिक गीत में जान डाल दी। एक अदाकारा के रूप में उनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना हो गया।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

श्रोताओ, फिल्मी पर्दों के साथ साथ लीना जी का जीवन, निजी जीवन भी सुरों और गीतों की गहराइयों से जुड़ा रहा। महान गायक किशोर कुमार के साथ उनका रिश्ता उनके जीवन का एक बेहद खूबसूरत अध्याय बना। हालांकि लीना जी को अपने व्यक्तिगत जीवन में कई कठिन परिस्थितियों और दुखों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी अंदरूनी ताकत और मुस्कान को बनाए रखा।

श्रोताओं, लीना चंद्रवरकर का फिल्मी सफर सिर्फ एक अभिनेत्री की कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि ये खूबसूरत गीतों, सादगी, हंसी और जिंदगी जीने के जज्बे का एक यादगार गुलदस्ता है। आज भी जब ये गीत रेडियो या स्क्रीन पर बजते हैं, तो लीना जी की वो मनमोहक मुस्कान हमारे दिलों में फिर से ताजा हो जाती है।

0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprediodelhi@gmail.com।
1: जीवन भर हम

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही कलाकार अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। दिन के 3 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम

नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। उससे थोड़ी ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर मेरे पसंद प्रोग्राम में आप सुनेंगे फिल्मी नगमे। 3:30 पर सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे बुंदेलखंडी लोकगीत। 4 बजे से आप फिल्मी नगमों का लुत्फ उठा सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम के 4:50 तक जारी रहेगा। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और 5 बजे आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

0: मैम, 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से अहम नौवियत की साझेदारी मुस्तहकम होगी और वस्ती एशिया के साथ तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। नेपाल में अचानक सैलाब आ जाने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 626 हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत ने इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में

खफा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। ईरान के सदर मसूद पेदिशकियान ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इंतहाई मोहतात है। और आज खेल कूद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है और खेलों से वाबस्ता अफराद की लगन को सराहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज जमहूरिया के अपने चार दिन के दौरे पर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले अपने बयान में जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि उनके दौरे से वस्ती एशिया में भारत की स्ट्रेटजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और खित्ते से तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। उन्होंने कहा है कि हालिया बरसों में भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटजिक साझेदारी में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। वजीर आजम ने कहा कि वो तजारत और सरमायाकारी, डिजिटल कनेक्टिविटी, दिफा और तवानाई के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने और विकसित भारत और यांगिया उज्बेकिस्तान के मुश्तरक विजन को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोफ के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो किर्गिज जमहूरिया के सदर सादिर जापारोव की दावत पर शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बिश्केक जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मौके की बुनियाद पर खित्ते के लिए भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने और दहशतगर्दी, अलाहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी की लानत से पाक खित्ते के लिए साथी अरकान के साथ मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। उज्बेकिस्तान में भारतीय सफीर स्मिता पंत ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगु में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तेजी के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सभी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुहतरमा स्मिता पंत ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान कारोबार में कई गुना इजाफा हुआ है और वजीर आजम के इस दौरे में दोनों मुल्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रुकावटों को दूर करने पर बातचीत करेंगे। मुहतरमा स्मिता पंत ने यह भी कहा कि वजीर आजम मोदी के दौरे के दौरान नायाब मैदानियात के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उज्बेकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है और जनाब मोदी के ताशकंद के दौरे के मौके पर इस सिलसिले में सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर भी बातचीत की जाएगी। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन अचानक सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर आज सुबह तक 626 हो गई थी, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। पुलिस ने चितवन से 233, नवलपरासी ईस्ट से 158, गोरखा से 48, नवलपरासी वेस्ट से 47, धादिंग से 45, नुआकोट से 41, तनाहून से 31 और रासुआ से 13 लाशें बरामद की हैं। बासरा जिला में बचाव और इमदादी कामों के साथ साथ लापता अफराद की तलाश जारी है। बचाए गए अफराद को महफूज जगहों पर ले जाया जा रहा है। वजारत खारिजा ने कल बताया था कि 320 भारतीय बाशिंदों का अभी तक कुछ नहीं पता चला है या वो बुध को अचानक सैलाब में लापता हो गए हैं। वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि तकरीबन 100 भारत नजाद अफराद से भी जिनके पास दूसरे मुल्कों की शहरियत है कोई रब्ता कायम नहीं हो सका है। वजारत खारिजा के तर्जुमान जनाब जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन पन बिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय बाशिंदों को बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ वाले इलाके में 400 के करीब भारतीय बाशिंदे महफूज हैं और उन्होंने अपने कुंबे से राबता कायम कर रखा है। सरकार ने वजारत खारिजा में कंट्रोल रूम कायम किया है जो रात दिन काम कर रहा है। काठमांडू और पीचिंग में भारत के सफारतखाने बाहमी तालमेल से काम कर रहे हैं। काठमांडू में वाकई भारत के सफारतखाने का ये नंबर है +9779851316807 +9779701075000 +9779810321117 पीजिंग में भारत के सफारतखाने का ये नंबर है +86185142849 05। इसी दौरान भारत ने नेपाल को

0: इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद के काम में और तेजी कर दी है। डिजिटल इमदादी सामान लेकर भारत की तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू पहुंची। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने नामा निगारों से कहा कि भारत नेपाल को लगातार इमदादी सामान बहम पहुंचा रहा है और इमदादी कोशिशों में हाथ बटा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तालिबानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू इस महीने की 31 तारीख से 1 सितंबर तक सर्बिया के शहर बेलग्राद में आला सतह की एक यादगारी मीटिंग में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। मीटिंग का मौजू है नामा वाबस्तगी की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि यह मीटिंग नावाबस्तगी की तारीख के सरबराहाने ममलकत व हुकूमत की पहली कॉन्फ्रेंस के 65 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। वेनेजुएला के साथ ये तारीखी मुआहदा अमरीका को 65 अरब बैरल से ज्यादा के तस्दीक शुदा खाम तेल के जखायर पर अक्सरियती कंट्रोल फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा अमरीकी टैक्स दहिंदगान के किसी खर्च के बगैर हासिल किया गया है और इससे कुल अमरीकी तेल के जखायर दोगुना से भी ज्यादा हो जाएंगे। अमरीकी इंतजामिया का दावा है कि अमरीकी तेल की सप्लाई में इस बड़े इजाफे से तवील मुद्दत में मुल्की गैसोलीन की कीमतों में कमी आएगी, जबकि वेनेजुएला की मईशत इकतसादी बहाली की राह पर गामजन होगी। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमरीका के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार है, साथ ही वो मोहतात भी है। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर अमरीका समझौते का एहतराम करता है तो ईरान भी उसकी पासबानी करेगा। ईरान के सदर ने कहा है कि जून के अमन समझौते के मुफाहमतनामे को फिर से सरगर्म करने के लिए सिफारती कोशिशें मरकूज की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने लगभग 9 करोड़ बैरल तेल बरामद किया है, जबकि समझौते को अमली जामा पहनाया जा रहा है। भारत के खेलों की कदीम शान शख्सियत मेजर ध्यानचंद का यौमे पैदाइश आज मुल्क भर में खेलों के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत के खेलों के मालामाल विरसे की अहमियत को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है और लोगों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की जाती है कि वो खेलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज का दिन एक घंटा खेल के मैदान में मौजू के तहत मनाया जा रहा है और उसके 3 अहम सुतून तय किए गए हैं, प्ले, ट्रिब्यूट और मूव। इस मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के महनाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की शानदार कारकर्दगी आने वाली नस्लों को हौसला फराहम करती रहेगी। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को गुलहाय अकीदत नजर किए। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का यौमे पैदाइश मनाने के लिए हर साल खेलकूद का कौमी दिन मनाया जाता है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से अहम नौइयत की साझेदारी मुस्तहकम होगी और वस्ती एशिया के साथ तहजीबी रवाबित गहरे होंगे। नेपाल में अचानक सैलाब आ जाने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 626 हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भारत ने इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो इंतहाई मोहतात है और आज खेलकूद का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आज के प्रोग्राम में आपने किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा तीन देवियां फिल्म से सुना। इससे पहले हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज में सौदागर फिल्म का नगमा, और आगाज में मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा आपने सुना था, फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। अब आज का मेरी पसंद प्रोग्राम खत्म हुआ।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है सूबाई लोकगीतों का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं बुंदेलखंडी लोकगीत।

सुभान लोकगीतों के प्रोग्राम में आपने आज बुंदेलखंड लोकगीत सुने। अब आज का ये प्रोग्राम खत्म हुआ। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नावें।

आवाज में ये नगमा भी हमने आपको सुनवाया। फिल्म का नाम था ये दिल आशिकाना। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में है। फिल्म है यार गद्दार।

0: हंसमुखी और नितिन मुकेश की आवाजों में ये नगमा भी आप सुन रहे थे बलमा फिल्म से। अब सुनिए उदित नारायण को फिल्म है हमराज।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में ये नगमा था दीवाना फिल्म से। अब सुनिए पंकज उदास के साथ अनुराधा पौडवाल को, फिल्म है दयावान।

दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश अंदाज फिल्म का नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था अंदाज फिल्म से। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप सबकी नजर है आयाजी कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की फिल्म है जीना मरना तेरे संग।

तेजस्वी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बिश्केक जाएंगे, जहां मोदी ने कहा कि वो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मौके की बुनियाद पर खित्ते के लिए भारत के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने और दहशतगर्दी, आलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के लानत से पाक खित्ते के लिए साथी अराकान के साथ मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। उज़्बेकिस्तान में भारतीय सफीर स्मिता पंत ने आकाशवाणी न्यूज के साथ खसूसी गुफ्तगु में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तेजी के साथ मुस्तकम हो रहे हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर सभी शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गुज़श्ता कुछ वर्षों में भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान कारोबार में कई गुना इजाफा हुआ है और वज़ीर आज़म के इस दौरे में दोनों मुल्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रुकावटों को दूर करने पर बातचीत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के दौरान नायाब मादनियात के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया जाएगा। नेपाल और तिब्बत में तबाह कुन अचानक सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर आज सुबह तक 626 हो गई थी, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद लापता बताए जाते हैं। पुलिस ने चितवन से 233, नवलपरासी ईस्ट से 158, गोरखा से 48, नवलपरासी वेस्ट से 47, दादिंग से 45, नोवाकोट से 41, नानाहून से 31 और रोसवा से 13 लाशें बरामद की हैं। मुतासरा अजला में बचाव और इमदादी कामों के साथ साथ लापता अफराद की तलाश जारी है। बचाए गए अफराद को महफूज जगहों पर ले जाया जा रहा है। जाद खाजा ने कल बताया था कि 320 भारतीय बाशिंदों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो बुध को अचानक सैलाब में लापता हो गए हैं। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया है कि तकरीबन 100 भारत नजाद अफराज से भी जिनके पास दूसरे मुल्कों की शहरियत है कोई राबता कायम नहीं हो सका है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान जनाब जायसवाल ने बताया कि 301 पर बिजली प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 63 भारतीय बाशिंदों को बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ वाले इलाके में 400 के करीब भारतीय बाशिंदे महफूज हैं और उन्होंने अपने कुंबे वालों से राबता कायम कर रखा है। सरकार ने वजारत खारजा में कंट्रोल रूम कायम किया है जो रात दिन काम कर रहा है। काठमांडू और बीजिंग में भारत के सफारतखाने बाहमी तालमेल से काम कर रहे हैं। इस दौरान भारत ने नेपाल को इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद के काम में और तेजी लाई है। 10 टन इमदादी सामान लेकर भारत की तीसरी परवाज कल शाम काठमांडू पहुंची। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने नामानिकारों से कहा कि भारत नेपाल को लगातार इमदादी सामान बाहम पहुंचा रहा है और इमदादी कोशिशों में हाथ बटा रहा है। नेपाल के हुकाम ने 229 ऐसी लाशों को जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है या जिनका कोई दावेदार सामने नहीं आया है उन्हें मिट्टी में दबाने का फैसला किया है। ये लाशें जुनूबी चितवन जिले में बहुत ही कोशी दरिया में आने वाले तबाह कुन सैलाब में बरामद हुई है। इन लाशों के मस्क होने और बीमारियां फैलने के खतरे की वजह से यह फैसला किया गया है। हुक्काम का कहना है कि आखिरी रसूम से पहले तमाम लाशों के डीएनए सैंपल जमा किए जाएंगे और शनाख्त का तमाम रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशे की जा रही हैं। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुहादे का ऐलान किया है। वेनेजुएला के साथ यह तारीखी मुहादा अमरीका को 65 अरब बैरल से ज्यादा के तस्दीक शुदा खाम तेल के जखायर पर अक्सरियती कंट्रोल फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि यह मुहादा अमरीकी टैक्स दहिंदगान के किसी खर्च के बगैर हासिल किया गया है और इससे कुल अमरीकी तेल के जखायर 2 गुना से भी ज्यादा हो जाएंगे। अमरीकी इंतजामिया का दावा है कि अमरीकी तेल की सप्लाई में इस बड़े इजाफे से तवील मुद्दत में मुल्की गैसोलीन की कीमतों में कमी आएगी, जबकि वेनेजुएला की मईशत अफसादी बहाली की राह पर गामजर होगी। ऐलान महीनों के शदीद अमरीकी सफारती दबाव, पाबंदियों के नफाज और जनूबी अमरीकी मुल्क के तवानाई के शोबे को मुस्तकम करने के मकसद से वेनेजुएला की तेल की बरामदात की बराह रास्त निगरानी के बाद सामने आया है। ईरान के सदर मसूद पज़श्कियान ने कहा है कि तेहरान अमरीका के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार

0: है, साथ ही वो मोहताज भी है। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर अमेरिका समझौते का एहतराम करता है तो ईरान भी उसकी पासदारी करेगा। ईरान के सदर ने कहा कि जून के अमन समझौते के मुफाहमतनामे को फिर से सरगर्म करने के लिए सफारती कोशिशें मरकूज की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने लगभग 9 करोड़ बैरल तेल बरामद किया है जबकि समझौते को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। ईरान के सदर की यह राजधानी ऐसे वक्त सामने आई है जब ईरान अंदरूनी मुल्क के इक्तसादी दबाव से दोचार है। भारत की खेलों की एक अजीम शान शख्सियत मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में खेलों के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत के खेलों के मालामाल विरसे की अहमियत को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है और लोगों की इस बात के लिए हौसला अफजाई की जाती है कि वो खेलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज का दिन 1 घंटा खेल के मैदान में मौजू के तहत मनाया जा रहा है और इसके तहत अहम सतून तय किए गए हैं। दिल्ली में मरकजी वजरा डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मांडविया ने आवाम पर जोर दिया कि वह सेहतमंद और फिट रहने के लिए हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में गुजारें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायनाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की शानदार कारकर्दगी आने वाले नस्लों को हौसला फराहम करती रहेगी। नौजवानों को उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर भारतीय हॉकी के मायनाज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को गुलाय अकीदत नजर किए। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ जमहूरिया के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे से हम नौयत की साझेदारी मुस्तहकम होगी और वस्ती एशिया के साथ तहजीबी रवाबित और गहरे होंगे। नेपाल में अचानक सैलाब आ जाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 626 हो गई है जबकि 2000 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। भारत ने इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में इजाफा कर दिया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल मुआहदे का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात। शाम के 5 बजते को है दूसरी मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। रात 9:15 पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नेट पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नेट पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नेट पर उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नेट पर सर्विस की तीसरे मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। सर्विस की तीसरे मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। सर्विस की तीसरे मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे।

Yeah.

सुन रहे सी प्रोग्राम चोक वाहिदी आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी पंजाबी सेवाएं हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम देश पंजाब।

0: बहुत डराना सपना से।
1: हाँ देखता सही, तू तो पसीने पसीने होया पिया है।
0: अशोक सपने च मैं नरक दे विच आ, उत्थे मैनू बहुत बड़ी अग च सुट रहे आ। मैं चीकदा हथ पैर मारदा पर कोई फायदा नहीं। फिर मैं देखदा ओह मैनू बहुत वड्डे डूंगे काले खूह च धक्का दे रहे आ। मैं भजन की कोशिश करदा पर कई आत्मावां मैनू घेर लैंदियां।
1: आत्मावां किस तरह दी आत्मावां?
0: अन्नियां लंगड़ियां हत्थां पैरां तो बिना पैड़े पैड़े रोकां वालियां आत्मावां।
2: नीच कमीने, तेरे कारण साड़ी ये हालत हुई है। रब ने धरती बनाई, किसानों ने अन्न उगाया, रब ने मीह नाल उसनू सींचिया, ते तू बेवकूफा स्वार्थी लालची पैसे दे पुत्र, तू अनाज च जहर मला दिता। तू औरतां दे सुहाग खोले, मामा कोलो पुत्र ते बच्चिया कोलो उना दे मां प्यो खोली ते। ओए कमीनिया, खानिया ता तू भी तू रोटिया ही सी, नोट ता तू नहीं खाने सी बेशर्मा। ओए तनु ता असी कच्चो खो जो मोगियो।
0: सचमुच मेनू खान दौड़ी, तो मेरी चीख निकल गई।
1: हुण मैं समझ गया
0: कि
1: तेरे पांव तेरे अगे आ रहे ने। तू बहुत बुरे काम कीते है, लोकां नू जहर खिलाई है, सुमरने कीती है,
0: पर यारे दे विच खराब गल की हो गई। सारे लोकी अजे ये काम करदे ने, जे मैं कर लिते तां की पहाड़ टुट पिया।
1: तू अपनी गलत कमा तू मैं सही दस रहा, तो तेरी आत्मा तेन कोसती होगी। वार्निंग भी तू ना सुने तो कोई की करे। सुपने वाली अग ते खूह तेरे कर्मा की तस्वीर है, जेड़ी तेरी आत्मा ने तेन विखाई है।
0: हाँ अशोक, तो हुण मैं की करा, कोई उपा दस।
1: उपा तो एदा इको ही है, पश्चाताप। पर तेरे कर्मा दा फल तेनू जरूर भोगना ही पैना है।
0: कर लूंगा पश्चाताप भी, पर पहला मैं विमल चंद दा नास्ता कर लवा।
1: आ गया ना अपनी आने वाली खा ते। ओ बाबा, पश्चाताप ते बदला नाल नाल नहीं चलदे।
0: ना चलन, पर मेरे भरा मेरी एक मदद कर दे। विमल दी पत्नी किरण तेनू प्यार कर दी है ना, तू जे किरण नू कहे विमल दी तिजोरी विचो जरूरी कागज मेनू दे देवे।
1: किरण नहीं करेगी ये काम, उहदे सुखी जीवन विच मैं तूफान नहीं लियावांगा।
0: ठीक है, ते हुण मैं जावांगा विमल दा बेड़ा डोबन। मैं पूत बन के धरती ते चलिया,
1: ते मैं तेरे पिछे पिछे आवांगा।
3: ਲੈ ਭੈਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਦੋਵੇਂ ਭੂਤ ਧਰਤੀ ਤੇ।
2: ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਤੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ।

0: देख अशोक, ओ देख भूल जानता महल, मजदूर ने मेरी दौलत हड़प के बना लिया महल, सौरिया होवेगा चांदी दे पलंग ते किरण नु बाहां च लैके, हुणे पठा पठाना जाके दोहां दा।
1: मैं तुहानूं ना मेरी किरण नु कुछ ना कही,
0: नहीं तां की कर लेगा ओ बिमल चंद, तू की बिगाड़ लिया ओ जड़ा तेरी किरण नु तेथों खो के लै गया। ले देखो शोकिया, और देख ओ बाग च संगमरमर दे थड़े ते दोनों गलवकड़ी पाई बैठे आ, और किरण नु दूजे बंदे दियां बाहां च देख के तैनू गुस्सा नहीं आउंदा? ओए जा जा, और देख किरण दियां कचरारियां अखां किस तरह उस भैड़े पतशकल विमल नु प्यार नाल देख रही है।
1: तैनू तैश बड़ी
0: होना, किरण नु हाथ ला के दिखा,
1: इम्तिहान आ रहा
0: यही समझ लै।

0: बोल चित्रगुप्त, अज दा कोई खास समाचार?
1: दो नवे जीव आए ने महाराज।
0: इन्हां दा वेरवा बोलो।
1: धरती उत्ते एक दा नाम टूनल सिंह ते दूसरे दा अशोक। महाराज 84 लाख जूना पोत के इन्हां नूं अपने कल्याण करने लई मनुख दी जून मिली सी, पर ये बंदे मोह माया विच ही फसे रहे।
2: एक झूठे धर्मराज, मैं कदी मोह विच नहीं पिया।
0: चुप रहो, साडे दरबार विच झूठ लई कोई थां नहीं। हां चित्रगुप्त,
1: इस अशोक नाम दे जीव नूं अपने हंकार नाल बहुत मोह सी। पुराने संस्कारा करके जो कर्म ये करदा सी उन्हां नूं अपना त्याग समझदा सी, ये अपने आप नूं खुले दरबार समझदा सी। इथों तक एदा प्रेम भी दूषित है महाराज।
2: नहीं महाराज, मेरा प्रेम दूषित नहीं सी।
0: चुप रहो
1: महाराज, इसका प्रेम भी दूसरे लोका वांग सी, पर ए उसनु त्याग ते आदर्श कहिंदा सी।
2: महाराज
0: तुहानू बोलन दा मौका देंगे।
1: ते महाराज इस दी प्रेमिका नू भी इस दे कारण हाथों बद तकलीफां कटनियां पईयां।
2: मेरे कारण?
1: हां हां तेरे कारण, क्योंकि तू उसनु प्यार करदे होए भी उस तो दूर हुंदा गया, अते इस विच तू सुख समझदा सी।
0: अशोक तू कुछ कहना चाहेगा?
3: नहीं महाराज, सिर्फ एक गल ते यकीन कर लो कि मैं किरण नु सच्चा प्यार करदा हां।
0: इस मोह कारण तैनु किरण दी कोख विचों जन्म लेना पवेगा। बहुत
4: जी महाराज,
0: इस जीव नु मुक्त कर दियो, इससे पल इसने किरण दी कोख विच दाखिल होना है।
4: जो आ गया महाराज।
1: जी
0: ए दूसरा जीव
1: बहुत ही मिन्ना मीसना जीव है यमराज।
0: पेट में बहुत लग रहा है।
1: कला पीठ ही नहीं महाराज, परले दर्जे दा कमीना ते स्वार्थी भी है। पैसे कमाउन लई रातो रात धन कुबेर बनन लई इसने हजारा बेगुनाह नु मार दिता महाराज।
2: बिल्कुल नहीं, मैं किसी नु नहीं मारिया।
1: देख ली इसकी आकड़, इसका नाम तूमल है महाराज। इस निर्लज अते जालम ने किसानां दे वाए अन्न विच वी जहर मलाया, लोकां नूं तरह तरह दियां बीमारियां दा शिकार बनाया। इस द्वारा कीती गई मिलावट दे कारण ही बहुत सारे लोग अपाहज लंगड़े ते अन्ने हो गए।
2: नहीं नहीं, मैं तां सिर्फ व्यापार कीता सी, व्यापार विच

0: मालिक मालिक जागो उठो, आप तो बोली जा रहे हो। हे रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है, मालिक नु होश आ गया।
1: डॉक्टर लगता है रब ने एक बार फिर धरती ते वापस भेज दिता है इन्हां नु। कांग्रेचुलेशंस।
2: मैं नरक चो

जीवन दे उस पार। तो सुनने से ए नाटक जिससे लेखक सन आर एस केलकर, हम सुन रहे हैं पंजाबी गीत, क्योंकि गीत संगीत दा साडी जिंदगी दे नाल अजिहा डूंगा रिश्ता हुंदा है कि जेहो जेहा भी असीं महसूस कर रहे हुए पर उस समय साडा संगीत सुन के मन भी खुश हो जांदा है ते माहौल भी खुशनुमा बन जांदा है। शुरुआत करदे हां पंजाबी गीतां दी इस लड़ी दे जसपिंदर नरूला दे गाए इस गीत दे नाल।

मिला हो गया है इस प्रोग्राम में थे खत्म करन दा आज सब इस पंजाब प्रोग्राम में थे वक्त अपने दोस्त करमजीत ने आज का प्रोग्राम खत्म करन दिए जा सकते फिर मुलाकात होगी तब तक नमस्कार।

0: संधू साहब जी करियो
1: आजो आजो प्रिंसिपल साहब लंघ आओ
0: जय हिंद कबूल करो संधू साहब
1: जय हिंद जी जय हिंद सुनाओ की हाल चाल
0: तुहानू देख के बागो बाग जी
1: अच्छा जी
0: हां जी तुहाडा खिड़िया चेहरा वेख के सारे दिन की थकावट लथ जांदी
1: गल इदा हुंदी है कि जेड़ा देखो हर चीज हुंदी है कि तुहाडे चेहरे दे एक छुपी जिदा हुंदी हैगी है या चेहरे ते एक नजर आ जांदी हैगी है
0: बिलकुल जी
1: कि सानू वधिया दिखाई जेड़ा है देना चाहिदा हैगा या खिले मत्थे होके मिलना चाहिदा जा हरेक नूं
0: बिलकुल संधू साहब ए आदमी दा ओरा है कि किसे कोल जाके तुहाडा दिल बागो बाग हो जांदा है ते किते जाके तुहाडा बागो बाग होया भी मुरझा जांदा है
1: मुरझा जांदा या सो इस करके जे आपां किसे नूं वधिया तरीके नाल गलबात करांगे बुलावांगे ते ओदा जदों जिदा खोज आवाज आउंदी है ना उसी फिर आवाज आएगी वधिया आवाज आएगी जे वधिया

कुल सही किया तुसी जी, इना नू कोई सूब ले होने है। तानू का एक बस एडिया डिया डारा बाढ़ के जाने पे थे। शाम नू रोज तुसी बनते चिट्टा शराब, पता नहीं होर केड़े केड़े नशे नू बेचन ते खरीदन वालिया दा तंता लगा हुंदा है। दूरों दूरों जिले दे नशा तस्कर इत्थे आउंदे ने, सोने दीया जवानी नू खेत च बुलाउंदे, पूरी जद्दोजहद करदे ने। पुलिस आउंदी है ते आके कई बार गोली नू चलाई, फट्टड़ भी कीता कईयां नू, कुछ भज्जण विच कामयाब हो जांदे ने ते

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यता का जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री मिर्जियायेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापरोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जलविद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि शवों की पहचान के लिए DNA नमूनों के विश्लेषण में सहायता हेतु भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञ दल आज काठमांडू पहुंचने वाला है। सुरंग बचाव के लिए एक विशेष तकनीकी दल कल काठमांडू पहुंचा। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत के तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और बड़े प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच

का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक से सुधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और श्रोताओं वक्त शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में और आज लेकर आए हैं विशेष जानकारियां और नए नए विषय।
4: जी हाँ, और अरविंद आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे पशुपालक भाइयों और बहनों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
3: बिल्कुल सीमा, हमारे देश में लाखों किसान और पशुपालक गाय भैंस भेड़ बकरी और अन्य पशुधन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। ऐसे में पशुओं को स्वस्थ रखना न केवल पशुपालक की आय के लिए जरूरी है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
4: बिल्कुल, इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि LHDCP संचालित किया जा रहा है। अरविंद, सबसे पहले हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि ये जो पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम है ये है क्या?
3: सीमा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पशुओं में होने वाली जो गंभीर और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उनकी रोकथाम और नियंत्रण करना है। इसके अंतर्गत बड़े स्तर पर टीकाकरण, रोगों की निगरानी, पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना और पशुपालकों तक पशु स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना शामिल है।
4: बिल्कुल, और अगर हम बात करें उन प्रमुख बीमारियों की जिनके नियंत्रण पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जा रहा है,
3: तो वो जो है खुरपका मुंहपका यानी कि FMD, बोवाइन ब्रुसोलोसिस, भेड़ और बकरियों में होने वाला PPR तथा शूकरों में होने वाली क्लासिकल स्वाइन फीवर जैसी प्रमुख बीमारियों के नियंत्रण पर काफी जोर दिया जाता है।
4: बिल्कुल, और अगर खुरपका मुंहपका का नाम तो हमारे पशुपालक अक्सर सुनते ही रहते हैं, ये

0: बीमारी पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी उत्पादकता को भी प्रभावित कर सकती है।
1: इसीलिए FMD के खिलाफ बड़े स्तर पर नियमित टीकाकरण कराया जाता है। सरकार ने साल 2030 तक FMD को नियंत्रित और समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह PPR को भी वर्ष 2030 तक नियंत्रण और समाप्त करने का लक्ष्य है।
0: और अगर हम बात करें कि टीकाकरण क्यों जरूरी है, तो अरविंद, कई बार पशुपालक सोचते होंगे कि जब उनका पशु बिल्कुल स्वस्थ है तो टीका लगाने की क्या जरूरत है।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नियमित और निर्धारित समय पर टीकाकरण से पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और बीमारी फैलने की संभावना कम होती है। इसीलिए किसान मित्रों को अपने क्षेत्र में चलाए जा रहे सरकारी टीकाकरण अभियान में अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाना बहुत ही जरूरी है।
0: एक सवाल और आ रहा है अरविंद हमारे जहन में कि आजकल जो पशुओं के कान में एक टैग भी लगा दिए जाते हैं, इसका क्या महत्व है?
1: जी हाँ सीमा, इसका महत्व है कि पशुओं की पहचान और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो रिकॉर्ड है उनको रखना। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किस पशु को कौन सा टीका कब लगाया गया और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी क्या है। तो एक मेडिकल रिकॉर्ड पूरा इकट्ठा रहता है। पशुओं की पहचान के लिए ईयर टैगिंग और उनके स्वास्थ्य तथा टीकाकरण से संबंधित जानकारी को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था की गई है। सीमा, एक और महत्वपूर्ण पहल है मोबाइल वेटरनरी यूनिट, यानी कि मोबाइल पशु चिकित्सक इकाई।
0: मतलब पशु चिकित्सा सेवाएं केवल पशु चिकित्सालय तक ही सीमित नहीं रहेंगी।
1: बिल्कुल, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों के दरवाजे तक अब पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
0: और ये सुविधा खासतौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए उपयोगी हो सकती है जहां पशु को लेकर दूर स्थित पशु चिकित्सालय तक जाना मुश्किल होता था।
1: तो उम्मीद है दोस्तों कि जानकारी आपके काफी काम आएगी और आपके पशुधन और स्वस्थ रहेंगे और इसी तरह से आपकी आय और जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ती रहेगी।
0: बिल्कुल, और अब हम आपको लेकर चलेंगे एक और उपयोगी विषय की ओर जो हमारे किसान मित्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ, और हमारा आज का विषय है पूसा संस्थान की किसान उपयोगी प्रौद्योगिकियां। इसमें विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मंजीत सिंह नैन, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा किसानों की सेवा में तत्पर रहते हैं और इसी प्रकार का एक कृषि संस्थान है जिसे हम पूसा के नाम से जानते हैं और वो किसानों के लिए नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास करता रहता है। अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने कौन कौन सी नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, इसकी विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजीत सिंह नैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो किसान भाइयों को बताइए कि जो पूसा संस्थान है इसका किसानों के लिए क्या महत्व?
3: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में हम IRI भी कहते हैं, ये देश का एक प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों में से एक है और ये नई दिल्ली में स्थित है। फसल सुधार, बागवानी, पौध संरक्षण, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी, जैव प्रौद्योगिकी और कृषि प्रसार जैसे अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला में केवल प्रयोग करना नहीं, इसका वास्तविक उद्देश्य है कि अनुसंधान से विकसित तकनीक, किस्में, ज्ञान किसान के खेत तक पहुंचे और किसान की आय, उत्पादकता और संसाधन उपयोग में दक्षता आए। इसलिए IRI की प्रौद्योगिकियों को हम तीन शब्दों में समझ सकते हैं, अनुसंधान से खेत तक और खेत से किसान की आय तक।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि अनुसंधान से खेत तक और खेत से किसान की आय तक। लेकिन हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसने अब तक किसानों के लिए कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो विकसित की हैं?
3: देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्कूल मोड में काम करता है। हमारे यहाँ 7 स्कूल हैं, हर एक स्कूल का अपना अपना अलग कार्य है। जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फसल सुधार
2: जी।
3: फसल सुधार का विद्यालय है, उसमें बेहतर किस्में, गुणवत्ता पूर्वक बीज उपलब्ध कराना, ये उसका कार्य है। दूसरा स्कूल है हॉर्टिकल्चर साइंस यानी उद्यानिकी स्कूल, इसमें फल, सब्जी, फूल, संरक्षित खेती, कटाई उपरांत प्रबंधन की तकनीकें विकसित करना है। तीसरा स्कूल है प्लांट प्रोटेक्शन स्कूल। प्लांट प्रोटेक्शन माने जैसे कीट, रोग, खरपतवार, अन्य जैविक समस्याओं के समाधान के साथ काम करता है।
2: जी डॉक्टर साहब, क्या मृदा सुधार या जल प्रबंधन पर भी कार्य हो रहा
3: है? ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का एक स्कूल है जो मृदा सुधार, जल का संरक्षण, उर्वरकों का रख रखाव, कृषि यांत्रिकी

0: और प्राकृतिक संसाधनों के जैसे पानी, मिट्टी, हवा, इनके बेहतर उपयोग पर केंद्रित है।
1: तो ये तो डॉक्टर साहब आपके संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी भी तकनीक हैं जो किसान के खेत के लिए उपयोगी हों?
0: लगभग सारी की सारी जो हमारी तकनीकें हैं वो किसानों के लिए ही हैं। किसान के लिए जब फसल उत्पादन करता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है किस्म का चुनाव। अगर अच्छी खेती के बावजूद भी किस्म उपयुक्त ना हो तो किसानों को अपेक्षित उत्पादन कम मिलता है, और अपेक्षित उत्पादन नहीं मिलेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ कदम हैं, जैसे सही फसल का चुनाव, सही किस्म का चुनाव, गुणवत्तापूर्वक बीज, सही समय पर बुआई, संतुलित पोषण, जल प्रबंधन, कीट व रोगों का ठीक से प्रबंधन, और कटाई उपरांत समन्वय बाजार।
1: कहने का मतलब यह है कि जब किसान खेत की तैयारी करता है, बीज खरीदता है, तो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना है, जब बिजाई करता है तो उसकी सावधानी रखनी है कि उसका जमाव ठीक से हो, और फसल जब तैयार होती है तो उसमें किसी तरीके की बीमारियां लगती हैं तो उसको भी प्रबंधन करना है। डॉक्टर साहब, पूसा संस्थान किसानों के बीच बहुत प्रचलित है बासमती धान के लिए, तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपसे विस्तार में जानना चाहूंगा तो आप बताएंगे किसान भाइयों?
0: देखिए, बासमती धान के बारे में कहा जाता है कि बासमती धान के जनक पूसा संस्थान ही है। यहाँ बासमती धान की बहुत सारी महत्वपूर्ण किस्में बनाई हैं, जिसमें से पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, 1718, 1882, 1769 और पूसा बासमती 1985 जैसी बहुत सारी किस्में हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश का जो निर्यात है केवल बासमती किस्मों का 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ये किसी भी एक फसल द्वारा जो निर्यात का अमाउंट है वो सबसे ज्यादा, और इनमें से बहुत सारी किस्में अलग अलग अवधि की हैं, रोग रोधिता के लिए जानी जाती हैं, कुछ किस्में डायरेक्ट सीडेड राइस जैसी परिस्थितियों के लिए भी उपयोगी हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने किस्मों की बात करी तो हमारे किसान भाई कहते हैं कि इनका बीज बहुत महंगा मिलता है, क्या इसकी बीज की गुणवत्ता का पता चल जाए तो किसान भाई को ये लगता है कि जो हमने बीज खरीदा है वो ठीक है?
0: देखिए, बीज किसी भी फसल प्रौद्योगिकी या फसल उत्पादन के लिए बीज शुरुआती कदम है, और ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीजों की बात करें तो यहाँ सीड क्वालिटी, सीड की टेस्टिंग, उसके ट्रीटमेंट, उसकी प्राइमिंग और सीड के एनहांसमेंट, इन सारी चीजों पर अनुसंधान किया जाता है। किसान को हमेशा प्रमाणित और गुणवत्तापूर्वक बीज देने की कोशिश की जाती है, और सलाह भी दी जाती है कि यदि पूसा संस्थान से ना लें, कहीं और से भी लें, तो गुणवत्तापूर्वक बीज ही लेना चाहिए। और गुणवत्ता जानने के लिए बीज की अंकुरण क्षमता, उसकी शुद्धता और रोग मुक्तता पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही फसल एवं अनुशंसा के अनुसार बीज उपचारित करना चाहिए। याद रखिए, अच्छा बीज आदि सफलता की नींव है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से हम बासमती धान के द्वारा देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, लेकिन धान के साथ एक जो हमारी पराली पैदा होती है तो उसका प्रबंधन किस तरीके से किसान भाई करें, और क्या इसके लिए पूसा संस्थान द्वारा कोई तकनीक विकसित की गई है?
0: वैसे तो पराली प्रबंधन के बहुत सारे तरीके अनुसंधान के आधारित पर किए गए हैं, लेकिन पूसा संस्थान का एक बहुत ही आयाम वाला तकनीक है जिसको हम पूसा डिकम्पोजर कहते हैं। पूसा डिकम्पोजर एक माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो धान की कटाई के उपरांत खेतों में बची हुई पराली को जलाने के बजाय उसे जैविक रूप में विघटित कर सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर में सूक्ष्म जीवों का कंसोर्सियम होता है जो क्रॉप रेजिड्यू डिकम्पोजिशन को तेज करने में मदद करता है। तो किसानों के लिए तो ये संदेश कहा जा सकता है कि पराली को कचरा नहीं, खेत की संपत्ति माने, ताकि उसके डिकम्पोज होने के बाद खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है।
1: जी सब, अगर किसान भाई पराली जलाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे बहुत से पोषक तत्व वो भी जल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो डिकम्पोजर की बात रही, क्या कोई जैविक नियंत्रण भी है, कोई ऐसी तकनीक विकसित की गई है संस्थान द्वारा?
0: जो पूसा डिकम्पोजर है ये जैविक ही है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज से ही डिकम्पोजिशन होता है। उसके अलावा यदि

0: पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, बेलिंग, ये भी कुछ टेक्नोलॉजी हैं जिसका प्रयोग हमारे पंजाब और हरियाणा में काफी मात्रा में किया जा रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो रहे फसलों की बात, और बहुत से हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादन करते हैं, क्या सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में संस्थान द्वारा कोई तकनीकों का विकास किया गया है?
0: सब्जी उत्पादन संस्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जियों पे काम किया जाता है, जैसे टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और बहुत सारी फसलें हैं जिनकी विकसित किस्में की गई हैं और किसानों के प्रयोग के लिए अवेलेबल है।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे जो सब्जी उत्पादक हैं, नई तकनीक को अपना के अगर सब्जी उत्पादन करें, एक तो अच्छी गुणवत्ता के जो भी हमारे खाने वाले हैं उन्हें मिलेगी, और उसके साथ साथ किसान भाई की आमदनी भी बढ़ेगी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सब्जियों के विकास में संस्थान ने काफी कार्य किया है, उस तरीके से क्या जो फल उत्पादक किसान भाई हैं उनके लिए भी कोई तकनीक संस्थान द्वारा विकसित की गई है?
0: यदि किस्मों की बात करें तो किस्मों में पूसा संस्थान की मैंगो की बहुत सारी वैरायटी बहुत फेमस हैं। उसके अलावा नींबू वर्गीय फसलों में हमारे बहुत सारी किस्में हैं। बात करें अमरूद की, पपीते की, इन सब फसलों पे हमारे संस्थान में काम होता है, और बहुत सारी किस्में किस क्षेत्र में लगाना है, वो मिट्टी की कैसी स्थिति है, इसके अनुसार किस्में हमारे पास अवेलेबल है।
1: किसान भाई कब लगाएं, उसको कितनी दूरी पे लगाएं, क्या इसके लिए भी संस्थान द्वारा जानकारी समय समय पर किसानों को?
0: समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा लगभग हर फसल के लिए खेत दिवस मनाते हैं, जिसे फील्ड डे कह सकते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों मैंगो डे हुआ था, उससे पहले फ्लावर डे संस्थान में फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। फरवरी या मार्च के हमारे यहाँ पे एक कृषि विज्ञान मेला होता है, जिसे पूसा कृषि विज्ञान मेला बोलते हैं।
1: जी,
0: लाखों लोग उसमें सहभागिता करते हैं।
1: जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने बताया कि फल और सब्जियों की बहुत सी किस्में संस्थान द्वारा निकाले गए हैं और किसान भाई उनका उत्पादन भी करते हैं, लेकिन देखने में आता है किसान मेहनत करके अच्छी किस्मों को प्रयोग करके उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसका नुकसान हो जाता है काफी मात्रा में, जैसे कटाई उपरांत नुकसान होता है या कहीं बाजार ले जाता है तब उसकी सब्जियां और फल खराब हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि इनको ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके?
0: किसान की आय केवल खेत के उत्पादन से ही नहीं, बल्कि उत्पाद के सुरक्षित रूप तक बाजार तक पहुंचने को भी तय करती है। IRI ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, जिसमें दो महत्वपूर्ण तकनीकों की बात मैं करना चाहूंगा। एक तो छोटे किसानों के लिए पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर।
1: ये क्या होता है?
0: ये एक तकनीक है जिससे बिना ज्यादा एनर्जी लगाए, कोई भी एनर्जी मतलब बिजली या किसी भी एनर्जी के साधन का प्रयोग किए बगैर, हमारा स्टोरेज की टेक्निक है जिसको कहते हैं पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। एक कमरा बनाते हैं, वातावरण को कंट्रोल करते हैं, और उसमें कुछ समय तक आप तोड़ी हुई फसलों को, खासतौर से सब्जियों की फसलों को संरक्षित कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक पूसा सन फ्रिज है, जिसमें आप वातावरण में जो हमारी सौर ऊर्जा है उसका दोहन करके एक ऐसा फ्रिज जो 2 टन तक सब्जियों को कम से कम 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रख सकता है। इसलिए बाजार में जो फोर्स्ड मार्केटिंग कई बार करनी पड़ती है कि उत्पादन ज्यादा हो गया और आपको बाजार भाव नहीं मिल रहा, तो पूसा सन फ्रिज जो है उस पे कुछ सरकारी राहत भी अवेलेबल है और उसकी तकनीक हमारे पास अवेलेबल है, जिसके माध्यम से बड़ा किसान या संयुक्त रूप से FPO के माध्यम से उसको लगा सकते हैं और काफी बड़े स्तर पे इसका भंडारण किया जा सकता है और कोई एनर्जी नहीं लगती, सूर्य की ताप से उसमें एनर्जी ग्रहण करता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से छोटे किसान होते हैं और उनके पास जो खेत की भूमि है वो बहुत छोटी, जो क्या उनके लिए कुछ कृषि यंत्र ऐसे विकसित किए गए?
0: हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक कृषि अभियांत्रिकी करके एक विभाग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसका काम ही कृषि मशीनरी और प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज के पर अनुसंधान करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बहुत सारी यंत्र प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी मशीनरी बनाई गई है, जिससे श्रम का भी बचाव होता है। छोटे किसान व्यक्तिगत रूप से मशीन खरीदने के बजाय कई बार ये भी अनुशंसित किया जाता है कि FPO के माध्यम से या कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसान खरीद सकते हैं, समूह में खरीद सकते हैं, जिससे लागत घटे और किसान ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके।
1: अब आजकल ड्रोन काफी चर्चा में है, ड्रोन तकनीक का कृषि में उपयोग के बारे में भी आपके संस्थान द्वारा कुछ किया जा रहा है।
0: हमारे यहाँ एक कृषि भौतिकी विभाग है जो ड्रोन पे काम कर रहा है और ड्रोन को रिमोट सेंसिंग से जोड़ के फसल निगरानी के लिए, फसलों में आने वाले कीट और रोगों के पहले से जानकारी लेने के लिए, फसल में जो भी स्ट्रेस होता है या तनाव होता है उसके आकलन के लिए, इनपुट एप्लीकेशन, उन सब के लिए ड्रोन का प्रयोग बहुत अच्छे से किया जा रहा है और आगे भी इसके तकनीक का विकास कर रहे हैं। जैसे सटीक कृषि या परिशुद्ध खेती या प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, उसमें ड्रोन का और आज इन तकनीकों का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें मदद कर रही है, जहां जितनी आवश्यकता वहां उतना ही इनपुट।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हर तरफ जिक्र हो रहा है जलवायु परिवर्तन का, और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किसानों की क्या मदद कर सकते हैं?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन हेतु कृषि क्षेत्र में बहुत सारी फसलों की किस्में बनाते हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें हों, उन पे काम हो रहा है। कोई स्ट्रेस टॉलरेंट है, स्ट्रेस से हमारा मतलब है अधिक सर्दी या अधिक गर्मी। जैसे हम कहते हैं कि गेहूं की कोई किस्म टर्मिनल हीट है, टर्मिनल हीट मार्च के महीने में ही आपके गर्मी ज्यादा बढ़ गई, तो टर्मिनल हीट टॉलरेंट, उसको हम क्लाइमेट रेजिलिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ क्रॉप फिजियोलॉजी पे काम करते हैं, कुछ जेनेटिक्स और रिसोर्स एफिशिएंसी पे अनुसंधान हो रहा है, जिसके तहत बहुत सारी तकनीक विकसित की गई हैं, जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज, दूसरा बुआई के समय में बदलाव, मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित एडवाइजरीज, पानी को बचाने वाली तकनीक, या कुछ ऐसी फसलों का चुनाव जो से क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन हो सके, विविधीकरण, इन सब चीजों पे अनुसंधान हो रहा है, तकनीकें विकसित हैं। यदि किसान चाहें तो अपनी स्थिति के अनुसार तकनीक का चुनाव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर मनजीत सिंह नैन जी, किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं अपने संस्थान की तरफ से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि कम लागत, कम जोखिम, कम संसाधन उपयोग, अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक आय, यही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मिशन।
1: डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत
2: तो अभी आप सुन रहे थे ये महत्वपूर्ण चर्चा, और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मंजीत सिंह नैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग से हमारे साथ रहे। इतनी सुंदर जानकारी के बाद अब वक्त है एक बहुत ही सुंदर सी रागिनी का, तो आइए सुनते हैं ये रागिनी।

0: और इस खूबसूरत रागनी के बाद चलते हैं मनमोहक मौसम की तरफ और कहां कैसा मौसम रहेगा कल, आइए जान लेते हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बारिश के जो आसार हैं वो बहुत कम हैं। आसमान में हल्के बादल रहेंगे लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। तापमान 35 से 37 डिग्री तक जा सकता है जिसमें उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। और हम अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो वो लगभग 34 से 36 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है और वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के आसपास रह सकता है। और सीमा मौसम के बाद ही अब आगे चलते हैं मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं के बारे में जो कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए इस समय।
1: बिल्कुल, और अगर हम बात करें कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें, कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें, वो सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें, फल मक्खी से प्रभावित फलों को तोड़कर गहरे गड्ढे में दबा दें।
0: इस मौसम में किसानों को सलाह है कि अगर टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो उसे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर करें। किसानों को यह भी सलाह है कि इस समय सरसों साग, पूसा साग एक, मूली वर्षा की रानी, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक ऑल ग्रीन तथा धनिया पंत, हरितमा या संकर किस्मों की बुवाई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर करें।
1: और साथ ही साथ अगर हम फलों में बात करें आम, नींबू, अमरूद की, तो नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंधन करके इनकी रोपाई जल्दी से जल्दी करें।
0: और सीमा, अब हम बढ़ते हैं कुछ बाजार भाव की तरफ, जान लेते हैं आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के आधार पर क्या हैं कुछ फल और सब्जियों के भाव।
1: जी बिल्कुल,
0: अगर हम बात करें प्याज की तो वो लगभग 30 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। वहीं टमाटर 36 रुपए प्रति किलो की दर से, बैंगन 25 रुपए और खीरा 30 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। और वहीं अगर आप भिंडी खाना चाहते हैं तो वो 50 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। और फलों के क्या भाव चल रहे हैं सीमा? अभी
1: अगर हम फलों की बात करते हैं और उसमें सेब की बात करें तो सेब लगभग 180 रुपए प्रति किलो का हिसाब चल रहा है इस टाइम बाजार में। और साथ ही साथ अगर केले की बात करें तो 25 रुपए दर्जन और अमरूद 80 रुपए किलो, मौसम्बी 41 रुपए प्रति किलो और पपीता 30 रुपए प्रति किलो। और इसके अलावा हम अगर अनानास की बात करें तो 70 रुपए प्रति किलो और तरबूज 17 रुपए प्रति किलो के भाव से आपको मिल सकता है।
0: तो दोस्तों, ये थी मौसम बाजार और मौसम आधारित कृषि सलाह। उम्मीद है ये उपयोगी रहेगी जब आप अपनी खेती बाड़ी में और इसका इस्तेमाल करेंगे।
1: और किसान भाइयों, कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं आप हमें ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com पर। इस पर आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें किसी विषय पर आप चर्चा चाहते हैं तो वो भी इस पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, आपकी ईमेल का हमें रहेगा इंतजार। तो दोस्तों, आज की कड़ी में इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। समय शाम के 7:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कसलों पर केंद्रित ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एनएनआरएल, एनआईआरएल, एनसीआरटीसी, रिन्यूएबल्स लिमिटेड के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने की पहल। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने विश्व बैंक विशेषज्ञों के साथ की बैठक। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। सीएनजी की कीमत में 3.89 रूपये की बढ़ोतरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सुबह से नई दरें लागू की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की लगभग 60% बिजली की जरूरत को अब कैप्टिव सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने एनएनआरएल, एनआईआरएल, एनसीआरटीसी, रिन्यूएबल्स लिमिटेड के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: इस सौर संयंत्र का विकास एनएनआरएल द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन में किया जाएगा। संयंत्र में उत्पन्न बिजली उत्तर प्रदेश राज्य ग्रिड के माध्यम से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्थित एनसीआरटीसी के रिसीव सबस्टेशनों पर पहुंचाई जाएगी। एनसीआरटीसी ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 450 करोड़ रूपये है। संयंत्र से मिलने वाली बिजली से नमो भारत कॉरिडोर बिजली खर्च में लगभग 25% की कमी आने का अनुमान है। इस परियोजना से हर वर्ष लगभग 1,77,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आने की संभावना है। यह परियोजना ऊर्जा लागत को कम करने के साथ साथ दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह पहल भविष्य के शहरी और क्षेत्रीय ट्रांजिट नेटवर्क के लिए एक मॉडल का काम करेगी। एनसीआरटीसी ने बताया कि वर्तमान में इस कॉरिडोर पर लगभग 1,00,000 यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: दिल्ली नगर निगम एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने आज राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विश्व बैंक की टीम ने टोक्यो, न्यूयॉर्क और बार्सिलोना में अपनाए जा रहे विभिन्न प्रबंधन मॉडलों की जानकारी दी। श्री खिरवार ने कहा कि दिल्ली के लिए समयबद्ध, व्यापक और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति जरूरी है, जिसमें कौशल संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, वैज्ञानिक निस्तारण शामिल है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे बायो माइनिंग और कचरा निस्तारण

0: ने कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि भलसवा लैंडफिल साइट पर प्रतिदिन करीब 15,000 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। श्री वाही ने कहा कि फिलहाल लगभग 4 से 5 लाख टन कचरा शेष बचा है और इसे जल्द हटाने के लिए कार्य की गति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लैंडफिल साइट पर कचरे से ईंधन संयंत्र लगाने का कार्य भी जारी है। श्री वाही ने बायो माइनिंग कार्यों में तेजी लाने के लिए लैंडफिल साइट पर अतिरिक्त मशीनें लगाने के आदेश दिए। दिल्ली भाजपा ने आज दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की घोषणा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की मेहनत, संस्कृति और प्रगति में पूर्वांचल समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वांचल के विकास, सम्मान और अवसरों को मिली नई गति से ये रिश्ता और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में दिल्ली में ये विश्वास और मजबूत हो रहा है। श्रीमती गुप्ता ने विश्वास जताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष अपने सेवाभाव, सक्रियता और जनसंपर्क के जरिए दिल्ली के पूर्वांचल समाज की अपेक्षाओं और हितों को प्रभावी ढंग से सामने रखेंगे तथा जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करेंगे। दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अगले महीने की 17 तारीख से 17 अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज हुई बैठक के दौरान ये घोषणा की गई। श्री मल्होत्रा ने बताया कि इस अभियान के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल होंगे, वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा इसके नोडल मंत्री होंगे। अभियान की शुरुआत अगले महीने की 17 तारीख को रक्तदान शिविर से होगी। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान राजधानी में परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान 1,635 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 12 पुला एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर आज सवेरे से लागू हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रूपये प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रूपये और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। IGL ने कहा कि कीमत बढ़ने के बावजूद दिल्ली में CNG उपभोक्ताओं के लिए अब भी सबसे किफायती ईंधन विकल्पों में शामिल है। कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण पश्चिम एशिया संकट के फिर से गहराने को बताया है। कंपनी के अनुसार तनाव बढ़ने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते LNG की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक LNG कीमतें संकट से पहले के स्तर की तुलना में करीब दोगुनी हो गई हैं। इसके अलावा सर्दियों का मौसम नजदीक आने के कारण यूरोप में प्राकृतिक गैस का भंडार बढ़ाने और फिर से भरने की जरूरत भी बढ़ गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक

0: तैयार करने का निर्णय लिया है। इनमें हजरत निजामुद्दीन प्रयागराज, इंदौर हजरत निजामुद्दीन, भावनगर शकुर बस्ती, ओखा शकुर बस्ती, कोटा हजरत निजामुद्दीन, हरिद्वार साबरमती समेत कई स्पेशल रेलगाड़ियां शामिल है। यात्री रेलवे मदद हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा रेलवे पूछताछ वेबसाइट www.inquiry.indianrail.gov.in पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय में से रह रहे 4 विदेशी नागरिकों को द्वारका जिले के उत्तम नगर इलाके से हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान चारों विदेशी नागरिक भारत में अपने वैध प्रवास से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस के अनुसार FRR2 द्वारा स्थापन प्रक्रिया पूरे करने के दौरान चारों को दिल्ली के शाहजहांबाग स्थित सेवा सदन डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली सरिता विहार उपमंडल में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। ये आयोजन सरिता विहार, ओखला औद्योगिक क्षेत्र और कालिंदी कुंज पुलिस थाना क्षेत्रों में किया गया। पुलिस ने बताया कि इस तरह की सुनवाई प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों का शीघ्र निपटान और पारदर्शी समाधान करना है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
1: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहले देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों के जुनून और दृढ़ संकल्प के समर्पण को सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय उमस बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं कल

का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एनएनआरएल एनआईआरएल एनसीआरटीसी रिन्यूएबल्स लिमिटेड के साथ 110 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने की पहल। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने विश्व बैंक विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। सीएनजी की कीमत में 3.89 रूपए की बढ़ोतरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सुबह से नई दरें लागू की। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: चाहूंगा, मतलब पेशे खिदमत है। न तेरे पास कोई संग है न सर साई,
1: न तेरे पास कोई संग है न सर साई,
0: न तेरे पास कोई संग है न सर साई, चला है धुन में मोहब्बत की तू किधर साई, चला है धुन में मोहब्बत की तू किधर साई, निकल के देख कभी वहशतों के सहरा से,
2: निकल के देख कभी
0: वहशतों के सहरा से, तुझे बनाना है सचमुच का एक घर साई, तुझे बनाना है सचमुच का एक घर साई, और जरा सी ठेस से मिल जाएगा ये मिट्टी में, जरा सी ठेस से मिल जाएगा ये मिट्टी में, तेरा बदन है कोई कांच का हुनर साई, और कदम में डूब का खतरा कदम में पार का रंग, कदम में डूब का खतरा कदम में पार का रंग, यही किनारे दरिया यही भंवर साई, यही किनारे दरिया यही भंवर साई, और खुद अपने आप को पहचानना जरूरी है, खुद अपने आप को पहचानना जरूरी है, खुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साई, खुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साई, और शिकस्ते ज़ात भी उम्दा शिकस्ते दुनिया भी, शिकस्ते ज़ात भी उम्दा शिकस्ते दुनिया भी, मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साई, मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साई। और एक दूसरी गजल है कि दिल उसी शख्स के ध्यान में है, दिल उसी शख्स के ध्यान में है, वो जो मसरूफ इम्तिहान में है, दिल उसी शख्स के ध्यान में है, वो जो मसरूफ इम्तिहान में है, खूबरूई में खाल खाल एक दिल, खूबरूई में खाल खाल एक दिल, नाक के ऐन दरमियान में है, खूबरूई में खाल खाल एक दिल, नाक के ऐन दरमियान में है, और बात से कबल बुए खुश का हुनर, बात से कबल बुए खुश का हुनर, उन लबों के गुलाब दान में है, उन लबों के गुलाब दान में है, और एक हरे रंग की परी शायद, एक हरे रंग की परी शायद, मेरे ख्वाबों के आसमान में है, और एक गुलाबी तरंग का अफसू, एक गुलाबी तरंग का अफसू, उसकी भीगी हुई जबान में है, नींद मेरी मेरा सुकून तसनीफ, नींद मेरी मेरा सुकून तसनीफ, उसी आगोश मेहरबान में है। एक गजल कुछ यूं है कि किस बहारा से होकर आए थे, किस बहारा से होकर आए थे, कौन सी फसल हो गए हैं हम, कोई भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल कत्ल हो गए हैं हम, कोई भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल कत्ल हो गए हैं हम, और कुछ भी कहने से डरते रहते हैं, बात इशारों में करते रहते हैं, कुछ भी कहने से डरते रहते हैं, बात इशारों में करते रहते हैं, भीड़ की नजर हो गए हैं हम, खौफ की नस्ल हो गए हैं हम, भीड़ की नजर हो गए हैं हम, खौफ की नस्ल हो गए हैं हम, और उसकी सब बददिमागियों पर हम हुस्न को दे रहे हैं बस तरजीह, उसकी सब बददिमागियों पर हम हुस्न को दे रहे हैं बस तरजीह, इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मन अक्ल हो गए हैं हम, इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मन अक्ल हो गए हैं हम, और डालियों पर फुदकने वालों को किसने दी है सजाए यकरंगी, डालियों पर फुदकने वालों को किसने दी है सजाए यकसमती, बंदरों की सिफात वाले थे भेड़ की नकल हो गए हैं हम, बंदरों की सिफात वाले थे भेड़ की नकल हो गए हैं हम। एक अशार और पढ़ देता हूँ, ये गजल के चंद अशार यूं हैं कि जुर्म है राहे अदब में ये हुनर पाना भी, जुर्म है राहे अदब में ये हुनर पाना भी, अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी, अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी, इतना बेफहम हूँ बेरंग हूँ बेफायदा हूँ, इतना बेफहम हूँ बेरंग हूँ बेफायदा हूँ, कि समझना मुझे बेकार है समझाना भी, कि समझना मुझे बेकार है समझाना भी, और तुझसे मुमकिन हो तो उस सांस पे कर रक्स बदन, तुझसे मुमकिन हो तो उस सांस पे

0: रक्स बदन जिसको आता हो किसी दीप सा जल जाना भी, जिसको आता हो किसी दीप सा जल जाना भी, काहिली मेरी तबीयत है अमल इश्क मेरा, काहिली मेरी तबीयत है अमल इश्क मेरा, कुछ न होने से ही होगा यहाँ हो जाना भी, कुछ न होने से ही होगा यहाँ हो जाना भी, और ये सलीका ये अदा और ये बातों का रचाओ, ये सलीका ये अदा और ये बातों का रचाओ, तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना भी, तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना भी, और लहर खाती हुई साड़ी की कसम जाने अदा, लहर खाती हुई साड़ी की कसम जाने अदा, तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी, तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी। बहुत शुक्रिया। मैं अब हमारे दरमियान मौजूद उसामा जाकिर साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो अपनी गजल के अशआर सुनाए।
1: मैं एक गजल से इत्तला करता हूँ, पेश खिदमत है। अपने नूर को मिट्टी कर और मेरी मिट्टी पानी कर, मौला मेरी मूरत को सोलह आने मनमानी कर, और मेरा नाम ठिकाना हो,
0: मेरा नाम ठिकाना हो
1: सब खुश आवाज परिंदों का।
0: क्या आवाज है, मेरा नाम ठिकाना हो,
1: मेरा नाम ठिकाना हो सब खुश आवाज परिंदों का, मेरी जात को जंगल कर और जंगल कोहिस्तानी कर।
0: वाह,
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद,
0: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद,
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद, मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है।
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद, मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर, और क्या तेरा दिल बहलाएगी सूखे घुटनों की चटपट।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या तेरा दिल बहलाएगी,
1: क्या तेरा दिल बहलाएगी
0: सूखे
1: घुटनों की चटपट, मन में प्रेम का रस भर मौला हर सजदा नूरानी कर।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छे,
1: मन में प्रेम का रस भर मौला हर सजदा नूरानी कर, और या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई।
0: आए हैं चाह की गहराई का जवाब, वाह।
1: और या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी कर।
0: वाह वाह वाह,
1: या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी कर, और पीले रेगिस्तान से सुनकर नीले पानी की गाथा, पीले रेगिस्तान से सुनकर नीले पानी की गाथा, चिकनी चिकनी मिट्टी चीख रही है बाबा खत्म कहानी कर।
0: चिकनी मिट्टी चीख रही है,
1: चिकनी मिट्टी चीख रही है बाबा खत्म कहानी कर। एक और गजल के कुछ
0: जी
1: शेर, प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं,
0: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ,
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं, सूखी आंखों में पानी भरने वाला हूँ मैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: और एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ,
0: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी,
1: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं, और मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी तू नवजात शिशु।
0: आया है, क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी तू नवजात शिशु, तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूँ मैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूँ मैं।
0: क्या बात है,
1: और मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू,
0: मेरी आंख में टूटने वाली,
1: मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू, तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूँ मैं।
0: हाय हाय, वाह वाह, फिर से पढ़िए, वाह वाह वाह।
1: मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू, तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूँ मैं। और एक और गजल के चंद शेर
0: जी,
1: अपने तेवर थाम संवरिया,
0: अपने तेवर थाम संवरिया,
1: कांप कांप बल खाए सड़क।
0: क्या बात है,
1: अपने तेवर थाम संवरिया,
0: कांप कांप
1: कांप कांप बल खाए सड़क, चलने वाली तेरी चाल पे जालिम मर ना जाए सड़क।
0: क्या बात है,
1: और पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल,
0: पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में,
1: पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल, रात को एक साए के पीछे पीछे चलती जाए सड़क।
0: हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: और चलते चलते सोच रहे हो,
0: चलते चलते सोच रहे हो,
1: चलते चलते मत सोचो।
0: वाह वाह, चलते चलते सोच रहे हो, चलते चलते मत,
1: चलते चलते सोच रहे हो,
2: चलते चलते,
1: चलते चलते मत सोचो, सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क।
0: क्या बात है, वाह वाह,
1: सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क, और दीवानों को चूमने वाले,
0: दीवानों को चूमने वाले,
1: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे तारी हो,
0: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे तारी हो,
1: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे तारी हो, घर को लौटने वाले तुझको रस्ते में मिल जाए सड़क।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा।
1: घर को लौटने वाले तुझको रस्ते में मिल जाए सड़क। एक और गजल है, दुनिया भर से ऊब गए हो, आओ पधारो
0: दिल हारो, वाह वाह,
1: दिल हारो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी गजल है।
1: दुनिया भर से ऊब गए हो, आओ पधारो दिल हारो, खुद से भी बेजार हुए हो,
0: क्या बात है,
1: मौका मारो
0: दिल हारो,
1: दिल हारो।
0: बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।
1: और हर बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल गुलाब।
0: क्या बात है, हर बंदूक की काली नाल,
1: हर बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल गुलाब, हर अंधी सरहद की आंख में गोली मारो,
0: वाह वाह, दिल हारो। क्या बात है, वाह वाह, कमाल की गजल है, क्या शेर।
1: जो भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो,
0: जो भी धड़कता दिल मिल जाए,
1: जो भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो, ख्वाब भरी सारी आंखों की नजर उतारो,
0: दिल हारो।
1: और दिन निकले तो सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो।
0: क्या बात है, वाह वाह, दिन निकले तो,
1: दिन निकले तो सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो, और रातों को चांद का कोमल नूर निहारो,
0: दिल हारो। वाह वाह, क्या बात है, उसमा कमाल।
1: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है।
0: क्या बात, सच्चाई है बिल्कुल, वाह।
1: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे संवारो दिल हारो। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे संवारो दिल हारो। सामईन, आप सुन रहे थे अभी उसामा जाकिर को, जिन्होंने बड़े कमाल के अशआर सुनाए, और उनका लहजा आपने महसूस किया होगा कि बेहद मुनफरिद था। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे दरमियान मौजूद इस महफिल के आखिरी शायर जनाब विपुल कुमार से कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं।
3: कुछ शेर
0: इरशाद।
3: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई नहीं,
0: खाने सोख्ते दिल का मकीन,
3: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई नहीं, तू नहीं है तो मेरे शोला नशीं कोई नहीं।
0: क्या
1: बात, क्या बात,
3: तू नहीं है तो मेरे शोला नशीं
0: कोई नहीं। क्या बात है, वाह वाह।
3: चांद चेहरे भी चमकते हैं गुलो सुंबुल भी,
0: चांद चेहरे भी चमकते हैं,
3: चांद चेहरे भी चमकते हैं गुलो सुंबुल भी, तेरी दुनिया में मगर दिल सा नगी कोई नहीं।
1: वाह
0: वाह,
3: एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
0: एक आवाज लगाता हूँ,
1: एक आवाज लगाता,
3: एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ, एक आवाज सी आती है कहीं कोई नहीं।
0: क्या बात है, वाह वाह, क्या शेर है, बहुत अच्छा।
3: एक आवाज लगाता हूँ कोई है भी यहाँ,
0: बहुत अच्छा।
3: एक आवाज सी आती है कहीं कोई नहीं,
0: वाह वाह।
3: एक आलम है फरावानी मर्दुम से मगर, एक आलम है फरावानी मर्दुम से मगर, मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ वहीं कोई नहीं।
2: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह।
3: मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ वहीं कोई
2: नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
3: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो,
2: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा
3: हो, सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो, लहू का राग हो और सुरतराज प्यासा हो। सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी,
2: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां,
3: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो। सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो।
2: क्या बात है, वाह वाह।
3: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते हूँ,
2: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते,
3: किसी का रंज उदासी की तान लेता हो, किसी कनार की खुशबू से शेर खुलने लगे हैं, कि बात बात नहीं हो बस एक इशारा हो।
2: क्या बहुत अच्छा।
3: अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम,
2: अब आ गए हैं
3: कि आखिर तेरी गली का भरम, कहीं किवाड़ की दस्तक ही से ना खुलता हो। अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम, कहीं किवाड़ की दस्तक ही से न खुलता हो।
2: क्या जबान है, बहुत अच्छे भाई।
3: मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ,
2: मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता
3: हूँ, कोई तो बाग में मेरा हिसाब लिखता हो। इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा मुझमें,
2: इस धमक से तू अगर पाँव रखेगा
3: मुझमें, फिर कोई चश्मा नया फूट बहेगा मुझमें। क्यों न कुछ शोर उठाऊं के वो खामोश मिजाज,
2: क्यों
3: न कुछ शोर उठाऊं के वो खामोश मिजाज, बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझमें। क्यों न कुछ शोर उठाऊं के वो खामोश मिजाज, बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझमें। घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझमें। घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझमें। इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से, इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से, सैर अच्छी है मगर कौन रहेगा मुझमें। वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर,
2: वक्त
3: झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझमें, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा।
1: दोबारा पढ़ो यार, बहुत अच्छा।
3: वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर, और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझमें। एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
2: एक ही बुत से निकल जाएगा,
3: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर, सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझमें।
2: वाह वाह वाह, क्या बात, फिर से पढ़ी, वाह वाह।
3: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर, सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझमें। मेरे नाजुक मेरी मिट्टी पे बहुत रक्स न कर, मेरे नाजुक मिट्टी पे बहुत रक्स न कर, ध्यान की रुत है कोई फूल खिलेगा मुझमें। आंखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए, आंखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए, इस पर भी वो कहता है कम है सुरमे की कलम करने के लिए। मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं, मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं, कई नदियां बहती रहती हैं मेरी खाक को नम करने के लिए, कई नदियां बहती रहती हैं मेरी खाक को नम करने के लिए। तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है,
2: किन बागों का हुस्न लिए,
3: तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है, ऐ आहुए मस्ती होश में आ एक दश्त है रम करने के लिए। कहता है वो जालिम सब्र करो क्या तेग के नीचे गर्दन है, کہتا ہے وہ ظالم صبر کرو کیا تیغ کے نیچے گردن ہے، اور ایک اشارہ ہوتا ہے مجھے گردن خم کرنے کے۔

जी नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतना। अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में और साथ में कुमार सानू फिल्म दुश्मन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म दिल से उदित नारायण की आवाज में अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म दिल से और महालक्ष्मी की आवाज साथ में उदित नारायण, और इस गीत को लिखा गुलजार ने और खूबसूरत संगीत दिया एआर रहमान ने। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और मैं हूं आपके साथ चेतना। फिलहाल वक्त रात्रि के 8:40 हो चुके हैं। आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। चित्रा की आवाज है, तुम बिन फिल्म से ये गीत है, लेकिन आपसे मिलेंगे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अफर्ट ट्रैवल किए हुए हैं। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया

0: गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। द्वारा हमारे संवाददाता से।
1: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी पश्चिम भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा

0: लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रूपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख

रिजॉर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के जरिए और डीडी फ्रीडिश पर। आइए अब सुनते हैं खबरें। अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की खातिर दो रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है। 287 भारतीय शहरियों समेत 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब के पेश नजर भारत की राहत कोशिशों की सताइश की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिकागो कारोबारी गोलमेज में भारत के वसी बाजार और तवील मुद्दती सरमायाकारी सलाहियत को उजागर किया। इस साल जुलाई तक बहुत छोटे पैमाने पर आबपाशी की स्कीम फी बूंद ज्यादा फसल के तहत 115 लाख हेक्टेयर अराजी का इहाता किया गया है। यूक्रेन के बुका डिस्ट्रिक्ट पर रूस के हमले में 37 अफराद हलाक हो गए हैं और पीर तक ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वस्ती एशियाई ममुल्क उज्बेकिस्तान के दो रोजा दौरे पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियायोफ ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने सदर शौकत मिर्जियायोफ की मौजूदगी में यांगी उज्बेकिस्तान पार्क में गुहे अकीदत पेश किए। दोनों रहनुमा बाहमी फायदे के तमाम मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। हमारे नामा निगार के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए राजधानी ताशकंद को खसूसी तौर पर सजाया गया है। कल सदारती बहल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियायोफ दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। ये ताल्लुकात सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों पर कायम हैं और मजबूत अवामी रवाबित से मजीद मुस्तहकम हुए हैं। दोनों रहनुमा तजारत सरमायाकारी दिफा डिजिटल राबते तवानाई तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान राबतों के शोबों में बाहमी इश्तराक का जायजा लेंगे। वो विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के मुश्तरका तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने की खातिर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तेहादन शरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। हिमालयी मुल्क के मुतासिरा जिलों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। हुकाम के मुताबिक पुलिस लापता अफराद को तलाश करने और सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए मकामी लोगों और दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी इमदाद में इजाफा किया है। वजारत खारजा के मुताबिक बुध के रोज आए सैलाब के बाद से नेपाल में अब तक 88 भारतीय शहरियों को बचाया जा चुका है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि 287 भारतीय शहरी लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर मुल्कों की शहरियत रखने वाले तकरीबन 128 भारत निजात अफराद भी लापता हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि आज रसूआ में वाकई पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम से 4 भारतीय शहरियों को बचाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 120 भारतीय शहरी आज चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत को नेपाल में बहरान की इस सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। लखनऊ में नामनिगारों से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल को जरूरत की सभी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है।
وزیر دفاع

ने मजीद कहा कि भारत नेपाल को मुसलसल इमदादी सामान भेज रहा है। नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने आज नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तशवीश और हुकूमत हिंद की जानिब से फराहम की जाने वाली मदद पर शुक्रिया अदा किया। नेपाल ने बहरान के वक्त भारत की इमदादी कोशिशों को सराहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद गैर मामूली तौर पर फराख दिल करार दिया है। नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वागले ने कहा है कि नई दिल्ली से खुसूसी इमदादी सामान भेजा गया है और भारत ने तामीर नौ के लिए भी भरपूर मदद फराहम करने का इंदिया दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि आलमी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन और सरमायाकारी के का नए सिरे से जायजा ले रही हैं और भारत न सिर्फ एक वसी बाजार मुहैया कराता है बल्कि तवील मुद्दती सरमायाकारी और दीगर सरगर्मियों के लिए भी अहम मकाम है। अमरीका के शिकागो में सरकर्दा सरमायाकारों और कारोबारियों के साथ एक आला सतही कारोबारी गोलमेज से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए भारत की वसी तर तरक्की, इस्लाहात की तेज रफ्तार और वसत पा रहे इम्कानात को उजागर किया। मुख्तरमा सीतारमन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में सरमायाकारी करने के इम्कानात, वसी तर पैमाने पर तब्दीली, पायदार इकतसादी तरक्की, हुनरमंद अफरादी कुव्वत, आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे, तकनीकी पेशरफ्त और एक दहाई की मुसलसल इस्लाहात पर मबनी हैं। आत्मनिर्भर भारत और आईडेक्स जैसी पहल को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत ड्रोन्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजियों के सिलसिले में भी घरेलू सलाहियतें मुस्तहकम कर रहा है। इस गोलमेज का इनेकाद भारत अमरीका कलीदी शराकतदारी फोरम के साथ इश्तराक में शिकागो में भारतीय कौंसल जनरल की जानिब से किया गया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत न सिर्फ एक बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर भी उभरा है जिसे एक मुल्क के तौर पर अपनी तहजीबी विरासत, सकाफत और सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 11वें जलसाए तकसीम असनाद से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आज जब भारत कुछ कहता है तो दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। वजीर दिफा ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली यह हुई है कि मुल्क अब न सिर्फ ये कि आलमी जवाबित पर मजीद अमल नहीं करता बल्कि वो इजाबते बनाने में ताउन भी करता है। हुकूमत ने कहा है कि फीबून ज्यादा फसल स्कीम के तहत इस साल जुलाई महीने तक 115 लाख हेक्टेयर जरिए अराजी पर बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी की जा रही है। इस पहल का मकसद काश्तकारी की सतह पर पानी के किफायती और कम से कम इस्तेमाल को फरोग देना है। यह स्कीम मरकज के जेर सरपरस्ती बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी के तौर पर जनवरी 2026 में शुरू की गई थी। आज यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बूचा डिस्ट्रिक्ट पर रूस के एक हमले के बाद कम से कम 37 अफराद हलाक हो गए। इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 50 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है जिसके बाद बड़े पैमाने पर घरों और रेस्तरां में भी आग लग गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि धमाके के बाद मायला के गांव में एक गोदाम को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आइंदा दो रोज के लिए ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के मकामात पर भी कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड और विदर्भ में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के खातिर दो रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है।
287 भारतीय शहरियों समेत 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब

0: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। आइए इस प्रोग्राम के तहत जानते हैं स्वाइन फ्लू के हवाले से कुछ जरूरी बातें डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की जुबानी।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को लगे कि उसको स्वाइन फ्लू हो गया है तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए?
2: इसमें तो पहले हमें देखना है कि ये H1N1 जो स्वाइन फ्लू है कि जनरल वायरल फीवर है। इस टाइम में जैसे बहुत सारे नॉन सीरियस वायरल बीमारी भी होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी में सिंसिटिव वायरस हम जिसको बोलते हैं वो भी होते हैं, कोल्ड के वजह से भी बहुत सारे। तो अगर इसमें लगता है कि सिम्टम्स जैसे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खांसी है, बॉडी में एक है, नजल सिक्रेशन ज्यादा है, पानी आ रहा है नाक से ज्यादा, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि शायद हो जाए। अगर टेस्टिंग का फैसिलिटीज है तो इमीडिएट टेस्टिंग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि टेस्टिंग नहीं फैसिलिटीज है और इसमें स्वाइन फ्लू लगता है तो इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और नहीं तो प्रोफाइलेक्स भी हम देते हैं। टेबलेट अवेलेबल है, ट्रीटेबल है, इस वायरस को हम ट्रीट कर सकते हैं। सांस के साथ ही अंदर जाता है ये वायरस, और निमोनिया टाइप का जो सिम्टम्स है, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, कफ, खांसी, जुकाम, बॉडी में दर्द, इस टाइप का सिम्टम्स लक्षण दिखाई देता है। और इससे अभी तक जैसे कि इस साल लगभग 9,000 करीब लोग इस वायरस पीड़ित हुए हैं, और दिल्ली में कम से कम 1,600 करीब कंफर्म केसेस पाया गया है।
1: तो डॉक्टर मिश्रा साहब बता रहे थे कि इसके जो सिम्टम्स है यही है जो नजला, जुकाम होना, खांसी होना, इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स
2: है? बुखार के साथ ही होता है।
1: अच्छा, बुखार भी होगा और नजला जुकाम भी रहेगा।
2: बुखार होता है और जैसे नाक से पानी गिरना एक सिम्टम्स है, गला जैसे गला में दर्द होना, खांसी होना, थोड़ा सा गला में जो सिम्टम्स गले का थ्रोट, सो ये एक लक्षण है। तो नाक से पानी और गले में थोड़ा सा दर्द होना, खुसखुस करना और हेडेक होना, बॉडी में दर्द, जैसे वायरल सिम्टम्स उस टाइप का है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हमारा लंग्स का, उसमें ज्यादा ये देखा गया कल्चर, उसमें ग्रोथ होते हैं वायरस। और ये जो इसमें क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही होता है, जैसे और भी कॉन्टाजियस, जैसे हाथ और किसी चीज इन्फेक्टेड मेटेरियल को हम अगर टच कर लिया तो उसमें भी वो वायरस होते हैं और एक से दूसरे को ट्रांसफर होते हैं। जैसे हम अभी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोई भी, उसके साथ अगर हैंडशेक कर लिया तो उसके थ्रू से भी, हैंडशेकिंग थ्रू से भी आपको इन्फेक्ट हो सकता है। ये
1: बहुत अहम बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और अब हम तकरीबन अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की जान बराबर दवा है, कुछ और एहतियात आप हमारे लिसनर्स को कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो हेल्दी रहें? बिल्कुल,
2: हाँ देखिए, ये तो सीजनल फ्लू है, स्वाइन फ्लू
1: जी जी,
2: और इस सीजन में आपको एक एक स्टेट में, जैसे किसी किसी स्टेट में आपको हाई एंडेमिसिटी होता है
1: जी जी,
2: कहीं ट्रांसमिशन होता है, तो कहीं पे भी हो अगर इस बीमारी का जैसे रिपोर्टेड है तो पहले तो आपने आपको बचाओ और कैसे बचाएं कि आपको इस सीजन में ज्यादा क्राउड में ना जाए, अवॉइड करें, जरूर जाए बट प्रोटेक्शन लेके जाए। और अगर किसी को इस टाइप का लगता है कि बीमार जुकाम है तो खुद वो बाहर क्राउड में ना जाए, और घर पे अगर कोई आइसोलेटेड रूम हो, कोई अलग से रूम हो तो उसमें रेस्ट ले, ना ऑफिस जाए, कम से कम 5 दिन तक, 4 से 5 दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, और स्कूल भी नहीं जाना चाहिए, दफ्तर नहीं जाना चाहिए, और जब थोड़ा सा ठीक हो जाए तो आप जरूर काम पे जाए, क्योंकि आप अगर चाहेंगे क्राउड में जाएंगे तो जरूर ये बीमारी सोसाइटी में फैलेगी और ज्यादा आपको बढ़ सकती है बीमारी, और ये खतरा भी बढ़ता है देश के लिए भी, वो आपका
1: ठीक नहीं है।
2: तो ये क्योंकि ये कॉन्टेक्ट से ही एक से दूसरे को फैलता है, और इसकी इलाज है अगर आप अर्ली पहचाने इस बीमारी को, जब भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स हो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, सरकारी हॉस्पिटल।

0: हॉस्पिटल में जाइए, और इसमें सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट भी होता है, और आपको इमीडिएटली अगर जरूरत पड़े मेडिसिन आपको दे देंगे, और इसकी इलाज है बीमारी का, स्वाइन फ्लू का मेडिसिन है, प्रॉपर मेडिसिन, और इसको वैक्सीन भी है, अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं वैक्सीन के लिए, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देश भर में बहुत सारे स्टेट में आउटब्रेक चल रहा है, ऐसे ही बीमारी रिपोर्टेड है, लोग पैनिक है, बट आपने आपको पैनिक ना हो, अपने आपको ये बचाव करे और ध्यान रखे कि अपने आप जब भी किसी को थोड़ा बहुत हो वो बाहर ना घूमे, प्रॉपर इलाज करें।
1: बहुत सारी मालूमात एक साथ आपने डॉक्टर साहब दे दी।
2: सामने अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ एफ सी आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े विषयों पर गहरी समझ रखने वाले पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: जी नमस्कार. थैंक यू. नमस्कार.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जाने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस फॉल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक. सेंसेक्स एंड निफ्टी ड्रॉप्स ओवर 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट. सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.3% फिसले. अमरीकी शेयर बाजारों में इस सप्ताह बढ़त हुई और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे.
0: As a disclaimer, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं, बिना विलंब किए जानते हैं कि सप्ताह के दौरान हमारे दोनों ही यानी कि प्रमुख शेयर सूचकांक यानी कि बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा. सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 0.3% उड़ गए. सेंसेक्स फिसलकर 77,265 पर आया, वहीं निफ्टी लुढ़ककर 24,176 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में सप्ताह के दौरान 0.5% से अधिक की वृद्धि हुई. क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो निफ्टी मेटल, आईटी, फार्मा और हेल्थ केयर सूचकांकों में 2% से अधिक की तेजी आई. वहीं दूसरी ओर निफ्टी एफएमसीजी में लगभग 1.5% और निफ्टी ऑयल एंड गैस, ऑटो तथा डिफेंस सूचक

0: ये तो रही मोबाइल की बात, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ईवी पर, तो ईवी पर आपकी क्या राय रहेगी?
1: देखिए, ईवी को लेकर के थोड़ा सा बुलिश मैं इसलिए हूं क्योंकि कई तरह के प्रोत्साहन की बात चल रही है, कई तरह की योजनाओं की बात चल रही है। यहां तक कि अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं, उन्होंने भी प्रोत्साहन योजनाएं की बात की है। तो ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं या जो भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनके लिए स्थिति बेहतर तो नजर आ रही है। लेकिन एक चीज अभी ध्यान में रखना है कि जो हमने कहा कि चिप की बात है और कीमतों को लेकर के बढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, और अभी भी हमारे यहाँ ईवी में एक कंसर्न आता है इंफ्रास्ट्रक्चर
0: की बात।
1: तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा उसको पीछे खींचती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और खासतौर पे जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है।
0: और ईवी का विजन खाली यही तो नहीं है ना कि हम अभी वो बुलिश हो रहा है या वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम एक ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं अगर,
1: बिल्कुल,
0: तो ईवी बहुत किफायती भी है हाउस होल्ड के लिए।
1: नहीं, कीमत के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो ईवी आपको एक सामान्य जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है उससे थोड़ा महंगा होता है
0: शुरुआत में।
1: हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसकी जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप गाड़ी तो ले आते हैं, चार्जिंग कहाँ कराएंगे?
0: जी,
1: और खासतौर पर अगर मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करूं, वहां पर एक समस्या है अभी भी। तो एक कॉशस है, लेकिन चूंकि ये ईवी बनाने वाली जो कई कंपनियां हैं वो फॉसिल फ्यूल भी बनाती हैं और जहां पर हम अच्छी खासी बिक्री देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो स्थिति अच्छी है। वो
0: दिल्ली से हमारे साथ वत्स राज जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मार्केट मंत्रा। नमस्कार सुशील सिन्हा जी। सर, मेरा सवाल है कि क्या एक कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है? और अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है तो जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो क्या उसको उसके पैसे कुछ वापस मिलते हैं जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उस समय की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? प्लीज, थैंक यू।
1: देखिए, कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक जिनको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहते हैं, जिनको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनकी स्थिति कह सकते हैं कि जब कंपनी अगर मान लीजिए कि बंद हो गई, कंपनी का सारा कुछ बिकने की स्थिति में आ गया, तो पहला वहां पर हक क्रेडिटर का बनता है। तो जो आपका मूल सवाल था कि क्या वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है या सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कैटेगरी में आएगा। पहली बात, उसको हम क्रेडिटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने कर्ज नहीं दिया है, उसने शेयर खरीदे हैं, तो वो क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आता है। वो उसको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी पहले कर्जदारों ने जिससे पैसे लिए उसको चुका दिया, सरकार का जो बकाया है उसको चुका दिया, कर्मचारियों का बकाया है उसको चुका दिया, उसके बाद अगर पैसा बचा तो जो फेस वैल्यू है उस शेयर का, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके मान लीजिए 1, 2, 5, 10 जो भी फेस वैल्यू, उतने ही पैसे उसको मिलेंगे। अब दूसरा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है वो एक तरीके से उसका इंटरेस्ट पे भी हक बनता है, और जब कभी भी कंपनी बंद हो जाए या कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो उसका हक जो है वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में आगे रहता है, उनको सबसे पहले भुगतान किया जाता है।
0: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार जी, मैं दिल्ली से अमित झा बात कर रहा हूँ सर।
1: जी अमित जी बोलिए।
3: हाँ सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि हमने, बड़ी अच्छी बात है कि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए सर, परंतु सर पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो सर हमारी जीडीपी की रफ्तार वही है, उतनी ही रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो है औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा भी कोई खास उत्साहजनक है नहीं सर। तीसरी चीज सर, ग्रोस सॉरी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता घाटा है, अगर हम निर्यात बढ़ता है हमारा निर्यात तो हमें खुशी मिलती है, तो साथ में आयात भी बढ़ जाता है तो ट्रेड बैलेंस वहीं पर रह जाता है जिसके तरह से। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस गति से अगर हम वृद्धि कर रहे हैं जीडीपी और आईआईटी में, तो क्या चमत्कारी को ये होने वाला है कि 2047 में हम एकदम से विश्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ जाए? हमारी कोई जादू की छड़ी है इस हिसाब से रफ्तार से? तो मुझे लग नहीं रहा कि सर हम,
1: अमित जी आपकी आशंकाएं गलत नहीं है कि इस तरह के विकास की रफ्तार से क्या हम 2047 में 30 अरब डॉलर, माफ कीजिएगा, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन सकते हैं कि नहीं। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरीके से विकास हमारी रही है कि देखिए 6% के ऊपर या 6.5% के ऊपर फिर से अगर आप 6.5% की दर से विकास करते हैं तो वो एक संतोषजनक स्थिति है। ये ध्यान जरूर रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही प्रतिकूल हैं और उनके बावजूद भी अगर हम 7% या उससे ऊपर की दर से विकास करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। अब रहा सवाल कि क्या इसी रफ्तार से हम 2047 में $30 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाएंगे, मेरा जवाब होगा नहीं। यहां पर आपको विकास की रफ्तार ऊंची चाहिए, आपको 8% या 8% के ऊपर चाहिए, 9% का चाहिए, लेकिन वो केवल आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई कहे कि केवल और केवल सरकार ही सब कुछ करेगा, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो अगर आपके हिसाब से नहीं है, कच्चे तेल के भाव काफी ऊपर चल रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आशंकाओं से सहमति रखता हूं।
4: Joining us from Bengaluru is NR Prasad. A warm welcome.
5: Hi, good evening, Market Control. This is NR Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji.
4: Hello.
5: Mr. Sinha, just one question. What is exactly this CAS starting from the SEBI closing action session and from 3:15 to 3:30 p.m. And in that first 5 minutes is called IEP. Really, I don't know how it works. My broker is starting this new session from Monday onwards. Can you just detail on this, what exactly how it works? Thank you. This is my question.
1: Mr. Prasad, I may not be able to give you much detail about the CAS, but I can tell you that CAS is basically all talking about the price discovery during the last 15 minutes of the session, trading session, which is between 3:15 and 3:30, and that is based on the future and that's basically on the derivative trading. So that is one thing. There are a lot of differences are there. There are a lot of issues are there because this is a new system. So of course there will be some teething problem and what we have seen during last 15 days. But when we were talking to SEBI chairperson, he made it very clear that we are not going to make much change into that. But of course, all the views and all the suggestions are most welcome. So if I just summarize it into just one sentence, it is a new mechanism for the price discovery. There are some issues because the brokers are not very much aware about this new system. So there are some problems like what happened on Friday also. But trust me that within 15 days or within a month or so, we believe that this system will stabilize and there will be a proper price discovery which is going to benefit the market.
0: दिल्ली से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: जी नमस्कार आपको। देखो मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि मार्केट में ऐसे मार्केट में खास तौर पर कि जो लार्ज कैप है उनका ग्रोथ रेट स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा कम रहता है और आने वाले 10 साल या 15 साल या 12 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप लार्ज कैप को बीट कर देते हैं। तो एक डिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है कि वो लार्ज कैप में एलोकेशन ले, यानी कि क्यों ना वो अपना 50% ज्यादा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में ले अगर उसने निश्चित कर ही लिया है कि उसको 15 से 20 साल का इन्वेस्टेड रहना है।
1: योगेश जी, यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप खरगोश की रफ्तार से रखना चाहते हैं या कछुए की रफ्तार से चलना चाहते हैं। बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव अगर आए वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। स्मॉल कैप और मीडियम कैप के साथ, मिड कैप के साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है कि उसमें बहुत ज्यादा हम तेजी से उतार चढ़ाव देखते हैं और इसीलिए आपको लगता है कि उसमें जो फायदा हो रहा है या उसकी जो कीमतों में अंतर है वो लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। ध्यान रखिए कि लार्ज कैप के रास्ते में बैरिक जो कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर्स उस तरीके के नहीं होते हैं जैसे आपको स्पीड ब्रेकर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप गलत नहीं है, अगर गलत होते तो बाजार में उसकी अनुमति ही नहीं होती। बाजार में वो है यानी कि वो सही है, लेकिन एक निवेशक के लिहाज से और एक कहते ना कि आप एक लंबे समय के लिए आप बने रहना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए ये एक बेहतर होता है कि आप लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में कम रखते हैं।
4: जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ, वार्म वेलकम जितेंद्र।
7: जितेंद्र जयपुर से, नॉर्थ दिल्ली, ठीक है। हेलो
1: जी, जयपुर से ही हैं आप जितेंद्र जी, बताएं।
7: अच्छा हाँ हाँ अच्छा सर, ये पिछले बार आपने बहुत अच्छा बताया कि टुकड़े टुकड़े में प्रॉफिट भी बुक करिए और इंस्टॉलमेंट पे परचेज भी करिए, बहुत अच्छा लगा। और आपने हिंट भी दे दिया था लार्ज कैप फंड का, ठीक है। तो आप हमसे सर बस ये दो चीज बताइए कि सर जैसे भी कौन सा सेक्टर मतलब थोड़ा सा भी सस्ता है हम लॉन्ग टर्म के लिए ले, ऐसे तो मैंने आईटी में शुरू कर दिया है आईटी में। इसके अलावा
1: तो आपका ये पहला प्रश्न है।

0: आपने कहा दो प्रश्न पूछने हैं।
1: नहीं,
0: अच्छा एक ही प्रश्न है। अच्छा अच्छा जितेंद्र जी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया है कि आईटी में आपने शुरू किया है, क्योंकि मेरी अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो राय रही है कि आईटी सेक्टर एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, संभावनाएं काफी अच्छी बन रही है, तो उसमें आप किस्तों में आप निवेश करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है। दूसरा, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है कि इस समय में आकर्षक हैं, और तीसरा फार्मा भी है, और इसके साथ साथ अगर डिफेंस में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई हैं, और अभी आपको बताएं कुछ दिन पहले डीआरडीओ की तकनीक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही गई थी, यानी कि वहां पर भी डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के लिए एक अच्छे दिन है। तो आप ये चार सेक्टर्स को ध्यान में रखकर के आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको मैं एक छोटा सा सुझाव जरूर दूंगा, पैसा आपका अपना है, थोड़ा सा पैसे पे मेहनत जरूर करिएगा, अपने स्तर पर भी थोड़ा शोध करिएगा। हमने आपको शुरुआती सुझाव दिए हैं, अंतिम स्वरूप आपको खुद देना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अतिरिक्त मेहनत करनी है।
2: शिशिर जी, लेकिन गौरतलब बात यह भी है कि अभी जब जितेंद्र जी हमसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौन सा क्षेत्र सस्ता है, यानी उनके शायद कहने का अर्थ ये हो कि सस्ते इवैल्यूएशन के जो शेयर होते हैं वो कहां है। तो ये कितना सही है कि हम किसी को कोई अगर शेयर 17 रुपए का हमें मिल रहा है तो हम इस इंटाइसमेंट में चले जाएं, कि इस लालच में चले जाएं कि यार ये तो 17 रुपए का है, चलो खरीद लो इसे।
0: नहीं नहीं,
2: क्या ये सही है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि आप उसकी, जिसको कहते हैं ना, उस कंपनी और उस क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस कंपनी की कीमत को आप आंके,
2: क्योंकि हो सकता है कि 17 रुपए आपने जो लगाए हैं वो भी आपके डूब जाए।
0: बिल्कुल। और आपको एक चीज बताऊं कि हमारे जो शेयर बाजार है उसमें 68 जो है वो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। सरकारी कंपनियों के शेयर अपने बराबर के जो दूसरे उसी क्षेत्र में काम करने वाले निजी कंपनियों के जो शेयर है उससे काफी सस्ते में मिल जाते हैं। तो क्या सरकारी कंपनियों के शेयरों में स्थिति अच्छी नहीं है? वो स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां पर संभावनाएं अगर अच्छी बन रही है तो मुझे लगता है कि कीमत उसी हिसाब से आंकी है।
2: बिल्कुल।
0: केवल और केवल आप ये मत देखिए कि वो 4 रुपए का है, 5 रुपए का, 6 रुपए का है, तो उसके हिसाब से तो आप 56 शेयर में चले जाइए, जिसको लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं।
3: मूविंग ऑन, मेजर यूएस स्टॉक इंडेक्सेस एंडेड लोअर यस्टरडे एज इन्वेस्टर्स टर्न कॉशियस आफ्टर द फेडरल रिजर्व चेयर केविन वॉश रिइटरेटेड द सेंट्रल बैंक्स फोकस ऑन फाइटिंग इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट्स फॉर अ रेट हाइक। The Nasdaq Composite Index slipped over 0.5%. The S&P 500 dipped more than 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average ended almost flat with a negative bias. However, for the week, the Nasdaq rose 0.8%, the Dow climbed over 0.5%, and S&P 500 gained 0.5%. Meanwhile, in his debut speech at the Central Bank's annual symposium in Jackson Hole, Fed Chair Kevin Warsh said that the Fed's predominant focus should be on prices, noting that inflation remains above its target. He added, better than expected inflation readings over the summer had not convinced him that underlying price pressures had meaningfully improved. The Fed chair said the central bank needs to be confident that the underlying price pressures are moving towards its 2% target at a sufficient pace, or further policy action may be required. We will discuss, if time permits, on this. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. A warm welcome, Shankar.
4: Good evening, sir.
3: Good evening.
4: So my question is about interest rate, which you have said it is likely to go up. Is the low interest rate era will be over, because RBI thought it will be good to have a lower interest rate, ministry thought, government thought lower interest rate will boost the business thoda bahut to boost hua hoga, but jyada tar to real estate prices have gone up like anything, because necessity commodities have been under control more or less, but the real estate prices have gone up by leaps and bounds. So is this the reason they are controlling, going to increase interest rate, number one? Number two, sir, ये एनसीएलटी के क्या लॉज अभी इतने टाइट नहीं है कि पीपल आर एबल टू गेट अवे विथ अगेन विथ इजीली विदाउट हैविंग एक्चुअली पेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट केस विच इज इन द लाइमलाइट, सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा।
0: Going by your first question about the lower interest rate, see, I mean, the primary responsibility of Reserve Bank of India is to control the inflation, and if the inflation is high, that there are various tools, and one of the important tool is the interest rate. And not just in India, but if you talk about any country, and I believe you are taking cue from what Federal Reserve Chief has said. So he has talked about

0: indicated that interest rate could go up because of the inflation. And in India, we are seeing that now the inflation is, of course, below 5%. It is around 4.5%. But because of the monsoons and because of the some other regions, we are likely to see some hike or some rise in the interest rate. If it happens, then of course there will be some issue on that. Going back, going to your second question, of course I don't have any comment to offer about that particular case, but I can say you that NCLT has a set rules and regulation, and it decides on that only.
1: Global crude oil prices logged weekly losses amid hopes of a possible agreement to facilitate shipping through the Strait of Hormuz. Meanwhile, the traders also assessed comments from the US Fed chair on inflation. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude October futures fell by 5.4% to settle at $89.31 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures dropped 4.2% to end at $83.40 per barrel.
2: Mumbai se hamare saath Ratnakar jud rahe hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
3: Hello. Ji. Sawal hai ki aane wale samay mein FMCG, defense aur pharma sector, kaun se sector mein niveesh karna uchit rahega? Thank you.
0: हम रत्नाकर जी के सवाल के जवाब के पहले एक छोटी सी बात जोड़ना चाहेंगे जो एनसीएलटी की बात की थी. एनसीएलटी से कोई भी अगर नाराज है या उनको लगता है कि शायद उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है तो एनसीलैट में जा सकते हैं, जो एपिलेट है. वहां से भी अगर उनको संतोषजनक उनकी जो निर्णय है वो नहीं है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है, जो इस मामले में हम देख रहे हैं. अब आपका जो प्रश्न है रत्नाकर जी, आपने एफएमसीजी की बात करी, आपने डिफेंस की बात की,
2: फार्मा
0: और फार्मा की बात की. दो जो बात के हैं, डिफेंस और फार्मा, मैंने अभी दो श्रोताओं के प्रश्न के जवाब में खासतौर पर उसका जिक्र किया था कि आप फार्मा में और डिफेंस में जा सकते हैं. इसके अलावा आईटी सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिति थोड़ी अच्छी मुझे लग रही है. तो ये चार क्षेत्र हैं जहां पर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं.
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अराइव्ड इन ताशकंद, Uzbekistan today on a two-day visit. The business between both the countries has increased manifold in recent years, and the visit of PM Modi is expected to further increase the business opportunity. We have a report from a correspondent.
4: India is among top 10 partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion. Both countries want to double this figure in the next 3 years. Talking to Akashvani News, Alisher Shaikhov, advisor to the chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, said that both countries have the potential to double their business in the coming years.
5: With India, of course, the first is the pharmaceutical, healthcare, tourism, and the medical tourism especially, and also IT, AI, and digital transformation. Because all the countries now are just moving to the digital transformation, and that's the where is we easily can find a lot of the potential to realize and just to get a huge profit just providing services not only to Uzbekistan, Central Asia, CIS countries, but also to Europe, and also it can be Japan, South Korea, this where is the aging society is giving potential for us just to be present there.
4: Speaking to Akashvani News, Smita Pant, the ambassador of India in Uzbekistan, said that both countries will also discuss off connectivity issues.
6: Despite connectivity bottlenecks, India or Uzbekistan natural markets hain. Hum zyada niryat kar sakte hain. Hum equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, isko hum export kar sakte hain. Hum unse zyada import bhi kar sakte hain. Because ye resource rich nation hai. Stumbling block jo hai, wo hai connectivity. To isko leke dono leaders baat karenge, dekhenge ki kya kiya ja sakta hai.
4: For Market Mantra, this is Sushil Chandra Tiwari from Tashkent, Uzbekistan.
2: केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है. उन्होंने अमरीका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही. ये किस तरीके से हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं शिशिर जी?
0: अभी आपने एक प्रश्न आया था कि हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें विकास की स्थिति क्या रहेगी. आप देखिए, एक मंत्री निर्मला सीतारमण जी और

0: पीयूष गोयल जी दोनों ही बाहर से ज्यादा निवेश लाने में जुटे हुए हैं, ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।
1: शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक, सेंसेक्स एंड निफ्टी ड्रॉप्स ओवर 0.3%, US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नफ़ों का प्रोग्राम तामील इरशाद। समय की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

हैं, अभी आप सुन रहे थे नगमा निगार शैलेंद्र का लिखा हुआ नगमा आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दिल्ली का ठग से, जिसकी मौसीकी सजाई है रवि ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बाबू डब्बू ने हांसी से, और सुनना चाहते हैं पीरजादा मेराजुद्दीन नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन पहलगाम से। देवरामिक रशरामिक रक्षरामिक रात गम के अमरावती से सुनना चाहते हैं, और उत्तम गौड़ हिमांशु गौड़ यश गौड़ उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सुनना चाहते हैं मुकेश कासलकर राजेश सोनी महाराष्ट्र से, और पंजाब रामटेके रामटेके शव्य रामटेके यवतमाल से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं चंदू कुलकर्णी हेमलता और सी आर कुलकर्णी दुर्गई सेलू से, बागपत से इलियास मुस्कान कुरेशी और बा जैद कुरेशी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं सैयद शमा परवीन बेबी ए सुफियान और आरशी सुल्तान झारखंड से, संबल से छोटे अंसारी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। माधुसूदन भट्ट आरती भट्ट जैस्मीन भट्ट जय राजपुर राजकोट से सुनना चाहते हैं। जफर मोहतम शेख तबसुम शेख बेबी अलीजबा शेख रघुवीनगर नई दिल्ली से सुनना चाहते हैं। और सुनना चाहते हैं जसबीर सिंह अरोड़ा जितेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर निम्नाबाद हरियाणा से, और प्रकाश वर्मा निखिल वर्मा प्रियशस्वी वर्मा पलारी से सुनना चाहते हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शाहवासर बुलंदशहर से सुनना के ख्वाहिशमंद हैं।

0: रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे
1: सामी नबी। आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर से, जिसको मौसीकी से सजाया था शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में इस प्रोग्राम की अगली पेशकश, जिसको सुना चाहा मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी और तौसीफ हाशमी ने रेलवे रोड बस्ती गंजनवारा से। राजदीप जोशी, रंजेश रंजन बेन जोशी और दिनकर जोशी राजकोट से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं रेलवे रोड गंजनवारा से मोहम्मद करीम जख्मी, नजम गुमनास, बेबी फातिमा शेख और सुनना चाहते हैं आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी खंडवा मध्य प्रदेश से और कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मंजू वटीला नई दिल्ली से सुनना चाहते हैं। प्रभुदास कोटेजा, अंसर कोटेजा, आशीष कोटेजा राजकोट से सुनने के ख्वाहिशमंद और अजीज मतीन, शेख चंद फारूक तेलंगाना से सुनना चाहते हैं।

सफरतला हो गए हैं और देर तक उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वस्ती एशियाई मुल्क उज़्बेकिस्तान के दो रोजा दौरे पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायेव ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर शौकत मिर्ज़ायेव की मौजूदगी में यांगी उज़्बेकिस्तान पार्क में एक यादगार पर गुलाय अकीदत नजर किये। दोनों रहनुमा बाहमी फायदे के तमाम तर मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। हमारे नामा निगार के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए राजधानी ताशकंद को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने हालात का इजहार करेंगे। यह महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, एआईआर न्यूज की वेबसाइट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला और शरीयत की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर किया जाएगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आए तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 669 तक पहुंच गई है, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता है। हिमालयी मुल्क के मुतासर जिलों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। हुकाम के मुताबिक पुलिस लापता अफराद को तलाश करने और सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए मकामी लोगों और दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी इमदाद में इजाफा किया है। वज़ारत खारजा ने कहा कि बुध के रोज आए अचानक सैलाब के बाद से नेपाल में अब तक 88 भारतीय शहरियों को बचाया जा चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणबीर जायसवाल ने कहा कि 287 भारतीय शहरी लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर मुल्कों की शहरियत रखने वाले तकरीबन 128 भारत नजर अफराद भी लापता हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि आज रसुआ में वाकई पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम से 4 भारतीय शहरियों को बचाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 120 भारतीय शहरी आज चीन से नेपाल में दाखिल हुए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत को नेपाल में बुरान की सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। लखनऊ में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल को जरूरत की सभी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि भारत नेपाल को मुसलसल इमदादी सामान भेज रहा है। दूसरी जानब नेपाल के सदर रामचंद्र पाउडेल ने आज नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तशवीश और हुकूमत हिंद की जानब से फराहम की जाने वाली मदद पर शुक्रिया अदा किया है। नेपाल ने बुहरान के वक्त भारत की इमदादी कोशिशों को सराहा है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद गैर मामूली तौर पर फराख दिल करार दिया है। नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वाघेले ने कहा कि नई दिल्ली से खसूसी इमदादी सामान भेजा गया है और भारत ने तामीर नौ के लिए भी भरपूर मदद फराहम करने का इंडिया दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खजाने और कॉरपोरेट उमोर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि आलमी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन और सरमाकारी का नए सिरे से जायजा ले रही हैं और भारत न सिर्फ एक वसी बाजार मुहैया कराता है बल्कि तवील मुद्दती सरमाकारी और दीगर सरगर्मियों के लिए भी अहम मकाम है। अमेरिका के शिकागो में सरकर्दा सरमाकारों और कारोबारियों के साथ एक आला सतही कारोबारी गोलमेज से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने तवील मुद्दती सरमाकारी के लिए भारत की वसी तरक्की, इस्लाहात की रफ्तार और वसत पा रहे इम्कान को उजागर किया। मुहतरमा सीतारामन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में सरमाकारी करने के इम्कान वसी तर पैमाने पर तब्दीली, पायदार इकतसादी तरक्की, हुनरमंद अफरादी कुत, आलमी मैार के बुनियादी ढांचे, तकनीकी पेशरफ और एक दहाई की मुसलसल इस्लाहात पर मबनी है।
आत्मनिर्भर भारत और आईडेक्स जैसी पहल को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारामन ने कहा कि भारत ड्रोन, ऑटोनोमस सिस्टम और दीगर जदीद टेक्नोलॉजियों के सिलसिले में घरेलू सलाहियतें

0: तय काम कर रहा है। इस गोल मेज का इनेकाद भारत अमरीका की निधि शराकत दारी फोरम के साथ स्टार्ट में शिकागो में भारतीय कौंसलर जनरल की जानिब से किया गया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत न सिर्फ एक बड़ी मईशत के तौर पर उभरा है बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर भी उभरा है जिसे एक कौम के तौर पर अपनी तहजीबी विरासत सकाफत और सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 11वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि आज जब भारत कुछ कहता है तो दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। वजीर दिफा ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली ये हुई है कि मुल्क अब न सिर्फ ये कि आलमी जवाबित पर मजीद अमल नहीं करता बल्कि वो ये जाब्ते बनाने में तावुन भी करता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान तालीम के मेयार और आम आदमी तक इसकी रसाई के मामले में बहुत बेहतरी हुई है। नायब-सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के साबिक वजीर आला रामकृष्णा हेगड़े की सत्साला तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए नायब-सदर जमहूरिया ने रामकृष्णा हेगड़े को एक मुदब्बिर सियासतदान करार दिया जो लामरकजियत तीन सतही हुक्मरानी मजबूत वफाकी निजाम और लोक आयुक्त को मजबूत बनाने के पुरजोर हामी थे। हुकूमत ने कहा है कि फी बूंद ज्यादा फसल स्कीम के तहत इस साल जुलाई महीने तक 115 लाख हेक्टेयर अराजी पर बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी की जा रही है। इस पहल का मकसद काश्तकारों की सतह पर पानी के किफायती और कम से कम इस्तेमाल को फरोग देना है। ये स्कीम मरकज के जरिए सरपरस्ती बहुत छोटे पैमाने पर की जाने वाली आबपाशी के तौर पर जनवरी 2026 में शुरू की गई थी। आज यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बूका डिस्ट्रिक्ट पर रूस के एक हमले के बाद कम से कम 37 अपराध हलाक हो गए। इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 50 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है जिसके बाद बड़े पैमाने पर घरों और रेस्तरां में भी आग लग गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि धमाके के बाद माइला के गांव में एक गोदाम को भी नुकसान पहुंचा है। बयान में यह भी कहा गया है कि बुजुर्ग और मजदूर अफराद के लिए देखभाल के मरकज और रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आइंदा 2 रोज के लिए ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय छत्तीसगढ़ और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल के मकामात पर भी कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। बिहार मशरकी मध्य प्रदेश मशरकी उत्तर प्रदेश झारखंड नागालैंड मणिपुर मिजोरम सिक्किम उत्तराखंड और विदर्भ में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अंडमान निकोबार जजायर में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल दुबई में बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। ये मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की खातिर 2 रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक आए तबाहकुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 669 तक पहुंच गई है। 287 भारतीय शहरियों समेत 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब के पेशेनजर भारत की राहत कोशिशों की सताइश की है। और पीर तक ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों के हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही बदरे सकीर की खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिल इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में।

वर्ष गौतम शबनम अनवार दबीरुल हसन गंज अनवार सुनने चाहते हैं और सादुल शहर से गंगा राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। सदाशिव थोरात कविता थोरात और शिया थोरात महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं और मुसरा जहाना तरजहाना फरजहाना सीतामढ़ी बिहार से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

अभी आप सुन रहे थे हाउस नंबर 44 से नगमा हेमंत कुमार की आवाज में। हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाहे गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने। मोहम्मद वहीद रोमानी, मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद नोमान तेलंगाना से सुनना चाहते हैं। पवन गौड़ अजतन में पूर्वीवाड़ से, शशि गौड़ कासगंज से सुनना चाहते हैं और अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले श्रीरामपुर से सुनना चाहते हैं और नशाद मसिदी अमित दिल्ली सुनना चाहते हैं निर्वाड़ से और जय प्रभा जयपुरिया अशोक जाटव सुनना चाहते हैं डोनट पावा कोरैया से और शबनम अकरम तबरेज ठिकरी मध्य प्रदेश से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

0: 曜日ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज उज्बेकिस्तान की दो दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं और यात्रा के दूसरे चरण में 31 अगस्त और 1 सितंबर को वे किर्गिज गणराज्य जाएंगे और बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी। क्या है इस यात्रा के विभिन्न पहलू, क्या है उनका महत्व भारत के लिए, किस तरह से ये हमें लाभान्वित करेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार और ताशकंद से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। आप दोनों का, एम्बेसडर सज्जनहार और सुशील जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: जी बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए
1: धन्यवाद। सुशील जी, आप ताशकंद में अभी हैं, हमें बताएं कि किस तरह का वहाँ माहौल है, किस तरह का उत्साह है और वहाँ पर किस तरह की उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा जो वो उज्बेकिस्तान में कर रहे हैं।
2: जी देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह तो जबरदस्त है क्योंकि उज्बेकिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं और उनमें भी लगभग एक मेजॉरिटी, आप कहें कि मोस्टली जो है वो छात्र हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं, जेंजी हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। दो दिनों से हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग बहुत उत्साहित है, छात्र, डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मा कंपनियों में काम करने वाले लोग, तो भारतीय समुदाय बहुत उत्साहित है लेकिन साथ के साथ उज्बेकी समुदाय भी काफी उत्साहित है। यहां के लोग भारतीयों से एक तरीके से कहें तो बेहद ही दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, भारतीयों से एक अपना रिश्ता महसूस करते हैं जो कि सदियों पुराना है। सिल्क रूट की वजह से भी पहले के जमाने में लोगों का आना जाना बहुत होता था और बॉलीवुड फिल्मों, बॉलीवुड के गानों, बॉलीवुड के सीरियल्स, यहां तक कि रामायण और महाभारत के सीरियल की भी बहुत ज्यादा यहां पर लोकप्रियता रही है। हमने बहुत से लोगों से हिंदी गाने गुनगुनाते हुए सुने और लोगों से बातचीत की, तो यहां पर चारों तरफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के और बैनर्स लगे हुए हैं, तिरंगा लहरा रहा है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है।
1: तो आपने तो हमें भी उत्साहित कर दिया एम्बेसडर सज्जनहार। अगर मैं आपसे थोड़ा सा और ब्रॉडली पूछूं, मध्य एशिया का भारत के लिए क्या महत्व है, अगर आप संक्षेप में बता सके।
2: जी बहुत धन्यवाद सुनो जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी
2: आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा है, ये चौथी यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान में और वो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो पांचों देशों की यात्रा कर चुके। 2015 में अगर देखा जाए, एक साल के बिल्कुल बाद जब वो सत्ता उन्होंने संभाली थी, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहला देश जो गए थे वो 2015 जुलाई में उज्बेकिस्तान था, उसके बाद कजाकिस्तान और फिर तीनों और देशों में भी। तो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि सुशील जी ने अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, जो वहां पर हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चला रहा है। अगर देखा जाए सम्राट अशोक के समय से ये पूरा जो मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का जो क्षेत्र है, ये सम्राट अशोक के राज्य में ये मिलता था। और अगर देखें तो यहाँ से सिल्क रोड का न केवल जिसे कहा जाए गुड्स बट आइडियाज, फिलोसफी, थॉट और बुद्धिज्म भी यहाँ से ही निकलकर चीन के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचा। परंतु जब से आजादी मिली है इनको सोवियत संघ से 1991 में, तब से हमारे जो संबंध हैं इतनी तेजी से आगे नहीं उभर पाए हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसे हम कहा जाए कनेक्टिविटी, जिसे हम कहें जो हमारे इनसे लैंड बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं।
1: जी
2: जो ये सब देश जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से इन देशों की जो है, इससे पहले भी इन देशों की शक्ति बढ़ती जा रही है और इन्होंने, ये पांचों देशों ने पहली बार 2018 से कहा जाए अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इस्टैब्लिश करना शुरू किया है। और हालांकि इससे पहले बहुत ही ये निर्भर थे चीन पर और रूस पर, अब वो चाहते हैं जो और देशों के साथ भी इनके जो संबंध हैं और भी सुदृढ़। इसमें भारत चाहे अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे अपने आर्थिक

0: व्यवस्था के लिए यहां पर इन देशों के पास तेल, गैस, यूरेनियम और जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थों का बहुत ही बड़ा भंडार है। तो यूं हम इनको इनसे कैसे ले सकते हैं, और हमारी जो शक्ति है, चाहे ट्रेड हो, निवेश हो, फिनटेक हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रीन एनर्जी हो, इन सब क्षेत्रों में हम इनमें कैसे, इनके साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन होगी। क्योंकि ये देश भी चाहते हैं जो अपने दायरे से बाहर निकलकर और देशों के साथ सहयोग को आगे ले जाए।
1: एम्बेसडर सज्जनभार, प्रधानमंत्री ने जब वो जा रहे थे उससे पहले कहा कि उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ में व्यापार और निवेश, जैसे आपने कहा डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। तो किस तरह के आपको लगता है कि आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, किस तरह के विषयों या कहें कि क्षेत्रों में समझौते जमीनी तौर पर होने की उम्मीद है आपको?
0: देखिए सोनू जी, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जो है बायलैटरल रिश्ते, द्विपक्षीय सहयोग जो है भारत का और उज़्बेकिस्तान का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, वहां पर तीन बड़े बड़े भारतीय विश्वविद्यालय उज़्बेकिस्तान में हमने इस्टैब्लिश की है। एक तो एमिटी यूनिवर्सिटी की है, एक शारदा यूनिवर्सिटी की है जो है, और वहां पर हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है फरगना वैली अंदिजान के क्षेत्र में, जहां से आपके सुनने वालों को याद होगा जहां से बाबर यहां पर भारत में आया था 1526 में, उसी क्षेत्र में हमने शारदा यूनिवर्सिटी का एक एस्टेब्लिशमेंट किया है। उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है ताशकंद में, और एक और यूनिवर्सिटी संभ्राम यूनिवर्सिटी, वो भी वहां पर एस्टेब्लिश की गई है। तो एक तो जो द्विपक्षीय संबंध है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब क्षेत्र हैं जिनमें हम उज़्बेकिस्तान के साथ सहयोग कर सकते हैं। दूसरा परिप्रेक्ष्य सोनू जी है भारत का और मध्य एशिया के देशों का, और इसमें मैं बताना चाहूंगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल ली गई थी 2022 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जिसे कहा जाता है इंडिया सेंट्रल एशिया समिट लेवल पर, मतलब वहां के पांचों देशों के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने वर्चुअली एक समिट ऑर्गेनाइज किया था। उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और उसमें ये बात तय की गई थी जो इस समिट का आयोजन किया जाएगा हर साल दो साल के बाद, और 2022 के बाद अभी तक बहुत कारणों की वजह से ये अभी तक दूसरा समिट, दूसरा शिखर सम्मेलन हम नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं जो अगर अपने संबंधों को हमने और आगे गति देनी है, तेजी लानी है
1: जी,
0: तो जिस शिखर सम्मेलन को हमें आयोजित आगे जल्दी करना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी शौकत मिर्ज़ायेव से ताशकंद में और नेताओं से बिश्केक में, जिसका आपने जिक्र किया, वहां पर 26वां एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो हमको ये द्वितीय शिखर सम्मेलन को भारत में आयोजित करने में इसको और गति मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी, और वो हमारे रिश्तों को एक नए सतह पर, एक नए लिमिट की तरह और लेकर जा सकते।
1: बिल्कुल सुशील जी, अगर आपके पास आए इससे पहले कि हम बिश्केक में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो होने वाला है समिट, उस पर बात करें, पहले बात से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें समझौते हो सकते हैं जो भारत को भी लाभान्वित करेंगे और उज़्बेकिस्तान को भी लाभान्वित करेंगे?
2: देखिए कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, हमारी यहाँ की जो एम्बेसडर हैं स्मिता पंत जी से भी बात हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो उज़्बेकिस्तान है वो मिनरल रिच कंट्री है, तो रेयर अर्थ जो कि आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खनिज है और जिसकी बहुत दुनिया में मांग है, वो यहां पर प्रचुर मात्रा में है, और उसको लेकर के कोई समझौते की गुंजाइश हो सकता है कि बन भी सकती है, उस पर बातचीत होगी, ऐसा एम्बेसडर महोदया ने भी कहा। और दूसरी चीज है रक्षा में बहुत सहयोग है दोनों देशों के बीच में, दस क्लिक करके उनका आपस में एक साझा संयुक्त सैनिक अभ्यास भी होता है। भारत के पूर्व रक्षा प्रमुख मनोज पांडे भी, जो थलसेना प्रमुख थे, वो भी यहां आ चुके, तो दोनों देशों के बीच रक्षा है। एक महत्वपूर्ण निवेश का क्षेत्र और व्यापार का क्षेत्र जो है वो एग्रीकल्चर है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर के भी जो है वो कुछ कॉन्क्रीट चीजें हो सकती हैं।

0: कि ईरान से पहले सामान यहां पर लोग मंगाते थे और अब वो रास्ता लगभग बंद हो चुका है ईरान युद्ध के बाद से, तो चीन के रास्ते माल आता है तो वो महंगा पड़ता है। हमारे स्थानीय व्यापारिक समुदाय के लोगों से ही बात हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है मेडिकल का, फार्मा का। यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी, कई भारतीय छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, यहीं पर अपने हॉस्पिटल्स और फार्मा सेक्टर के जो फैक्ट्रियां हैं वो स्थापित की, तो वो भी एक बड़ा सेक्टर है। पर्सन टू पर्सन जो बड़ी संख्या में लड़के आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, एक बड़ी आबादी जो यहाँ रहने वाले भारतीयों की है उसमें लगभग 80 से 90% तो सिर्फ छात्र है जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। हमारी बहुत से छात्रों से बातचीत हुई तो उन्हें भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उनके आने जाने को लेकर के, उनके प्रोफेशन को लेकर के हो सकता है कि कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें निकल करके आए।
1: और इसके बाद का जो सेकेंड लेग है इस यात्रा का प्रधानमंत्री जी का, जिसमें वो किर्गिज गणराज्य जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेने, उसके समिट में, आप हमें बताएं एम्बेसडर सज्जन हार की जो उन्होंने विजन दिया है भारत का, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी SCO सिक्योरिटी कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी, इसको आप कितना कहे कि एक सटीक एक उम्मीद की किरण मानते हैं, हर एक पहलू पे आप किस तरह से आपसी सहयोग आते हैं, आगे के क्या पोटेंशियल है?
2: जी देखिए, मेरे विचार से संभावनाएं तो बहुत हैं इसमें, परंतु इसको ये भी देखा जाए जो इसमें लिमिटेशंस भी हैं। भारत में इसके दो सबसे महत्वपूर्ण उच्च श्रेणी के ये शिखर सम्मेलन होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, क्योंकि ये सब जो देश हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो सबके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट अलग होते हैं। तो हमने भारत में शिखर सम्मेलन किया था प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर 2020 में, और सबसे उच्च स्तर पर उच्च श्रेणी का जो शिखर सम्मेलन होता है वो हेड ऑफ स्टेट का होता है, जो कि 2023 में हमने उसकी अध्यक्षता की थी, और उसमें हमने बहुत से वो लिए थे, नए इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि बुद्धिज्म के ऊपर, जैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, जैसे मिलेट्स को, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा हम कहें एग्रीकल्चर में फूड स्केयरसिटी, फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, तो बहुत हमने अच्छे इसमें इनिशिएटिव्स लिए। तो मैं समझता हूँ संभावनाएं इसमें बहुत है। सिक्योरिटी अच्छी बात है क्योंकि इसको एस्टैब्लिश ही इसीलिए किया गया था, जो ये वाला सभी जो क्षेत्र है इसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, जो कैसे ये देश मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात है कनेक्टिविटी, और उसमें हम कहते रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया जो पाकिस्तान के थ्रू तो हम नहीं आ सकते, तो हमने चाबहार के ऊपर बहुत अधिक जोर देना शुरू किया था, और उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, परंतु जब से ईरान के ऊपर इतने अंकुश लगे हैं, इतने सैंक्शन आए हैं, तो उसको हम आगे ठीक तरीके से नहीं ले जा पा रहे हैं। परंतु कजाकिस्तान का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सोनू जी, और उज्बेकिस्तान, ये दोनों देश इनमें बहुत रुचि रखते हैं, जो INSTC और चाबहार को आगे हम और ज्यादा प्रगति की ओर ले जा सके। तो काफी अगर नॉमिनल टर्म में देखा जाए तो हमारी करीब 30% से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था है, तो ये अगर एक साथ मिलकर काम करें तो ये बहुत ही अच्छा इनमें सहयोग की संभावनाएं हैं, और मैं समझता हूं जो बातचीत होगी उसमें इन सभी सहयोग के पहलुओं को हम आगे ले जाने में सक्षम होंगे।
1: एम्बेसडर सज्जन हार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील चंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
2: बहुत धन्यवाद सोनू जी, मुझे आमंत्रित करने, धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की महत्वपूर्ण यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094।
4: फाइनल अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है मौसीकी प्रोग्राम। आइए प्रोग्राम की तरह सुनते हैं पंडित विदुर मलिक से रागनाथ भैरवी में ख्याल।

I don't know.

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी आप सुन रहे थे इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत सुधीर गौतम का संतूर में बजाई हुई धुन में राग भैरवी और बसंत मुखरी। इसी साथ ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं प्रोग्राम आखिर शब। सुनिए इस प्रोग्राम की पहली पेशकश मुकेश की आवाज में फिल्म अनोखी अदा से।

सामने अभी आप सुन रहे थे सुरैया की आवाज में अनमोल घड़ी फिल्म से ये नगमा, जिसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने और बोल थे तनवीर नकवी के। हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म नूर महल से।

या सुन रहे थे नूर महल फिल्म से नगमा सुमन कल्याणपुर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी जानी बाबू कव्वाल ने। इसी के साथ आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं खबरें। ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की खातिर दो रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब में हलाक होने वाले की तादाद बढ़कर 669 हो गई है। 287 भारतीय शहरियों समेत 2014 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब के पेश नजर भारत की राहत कोशिशों की सताइश की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिकागो कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के वसी बाजार तवील मुद्दती सरमाकारी की सलाहियतों को उजागर किया है। यूक्रेन के बूचा डिस्ट्रिक्ट पर रूस के हमले में 37 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में दुबई बैन अवी क्रिकेट स्टेडियम भारतीय टीम थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप की अपनी मुहिम का आगाज करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वस्ती एशियाई मुल्क उज्बेकिस्तान के दो रोजा दौरे पर कल शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के सर शौकत मिर्जियोयेव ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने सदर शौकत मिर्जियोयेव की मौजूदगी में यांगी उज्बेकिस्तान पार्क में गुलहाय अकीदत नजर किए। दोनों रहनुमा बहामी फायदे के तमाम मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। हमारे नामाकार के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए राजधानी ताशकंद को खूसी तौर पर सजाया गया है। पूरा शहर भारत के परचम इस्तकबालिया बैनरों से सजा

भाई, क्योंकि उज्बेकिस्तान को वजीर आजम मोदी के चौथे दौरे का बेसब्री से इंतजार था। ताशकंद में मुकीम भारतीय बिरादरी भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुसूसी इस्तकबाल के लिए जमा हुई। आज सिद्धार्थी महल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। ये ताल्लुकात सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों पर कायम है और मौजूद अवामी रवाबित से मजीद मुस्तहकम हुए हैं। दोनों रहनुमा तजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल राबते, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे। विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान सन 2030 के मुश्तरक तरक्याती विजन को आगे बढ़ाने खातिर अपने ख्याल का तबादला करेंगे। वजीर आजम मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के महात्मा गांधी सेंटर जाने का भी तवक्को है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये महान रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईएन न्यूज की वेबसाइट और एआईएन न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईएन न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तला और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल पर बराह सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिया के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 669 हो गई है, जबकि 2007 अफराद अब भी लापता हैं। हिमालयी मुल्क के मुतासर जिलों में तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। हुक्काम के मुताबिक पुलिस लापता अफराद को तलाश करने, सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए मकामी लोगों और दीगर अदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी इमदाद में इजाफा किया है। वजारत खारजा ने कहा कि बुध के रोज आए सैलाब के बाद से वहां नेपाल में अब तक 88 भारतीय शहरों को बचाया जा चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत खारजा का तर्जुमा रणदीप जायसवाल ने कहा कि 287 भारतीय शहरी अब भी लापता पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि दीगर मुल्कों की शहरियत रखने वाले तकरीबन 128 भारत निजात अफराद भी लापता हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि कल रसुआ में वाकई पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम से 4 भारतीय शहरों को बचाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 120 भारतीय शहरी कल चीन से नेपाल में दाखिल हुए हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को नेपाल में बहरान की सूरत हाल पर तशवीश है। लखनऊ में नामरिगारों से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नेपाल को जरूरत की सभी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि भारत नेपाल को मुसलसल इमदादी सामान भेज रहा है। नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने कल नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तशवीश और हुकूमत हिंद की जानिब से फराहम की जाने वाली मदद पर शुक्रिया अदा किया। नेपाल ने बहरान के वक्त भारत की इमदादी कोशिशों को सराहा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद गैर मामूली तौर पर फिराजिल करार दिया। नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वागले ने कहा है कि नई दिल्ली से खसूसी इमदादी सामान भेजा गया है और भारत ने तामीर नौ के लिए भरपूर मदद फराहम करने का इंदिया दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खजाने और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आलमी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन और सरमाए कार्य का नए सिरे से जायजा ले रही हैं और भारत न सिर्फ एक वसी बाजार मुहैया कराता है बल्कि तवील मुद्दती सरमाएकारी और दीगर सरगर्मियों के लिए भी अहम मकाम है। अमरीका के शिकागो में सरकर्दा सरमाएकारों और कारोबारियों के साथ एक आला सतह कारोबारी मेज से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने तवील मुद्दती सरमाएकारी के लिए भारत की वसी तर तरक्की, इस्लाहात की रफ्तार, वसत पार रहे इम्कान को उजागर किया। गौतमा सीतारमन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में सरमाएकारी करने के इम्कान वसीतर पैमाने पर तब्दीली, पायदार इकतदारी तरक्की, हुनरमंदी, अफराद कुवत, आलमी मीयार के बुनियादी ढांचे, तकनीकी पेशरफ्त और एक जहां के मुसलसल इसलाहत पर मबनी है। पार्लियामेंट उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू इस महीने की 31 तारीख से 1 सितंबर तक सर्बिया के शहर बलग्राद में आला सतह की एक यादगारी मीटिंग में भारतीय वक्त की क्यादत करेंगे। मीटिंग का मौजू है नावाबस्ती की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि मीटिंग नावाबस्ती की तहरीक के सरबराह ने मुमलिकत व हुकूमत की पहली कॉन्फ्रेंस के 65 साल मुकम्मल होने के पर हो रही है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल महले का

0: आईबीएम जैसी पहल को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत ड्रोन ऑटोनोमस सिस्टम और दीगर जदीद टेक्नोलॉजियों के सिलसिले में घरेलू सलाहियतों को मुस्तहकम कर रहा है। उन्होंने आलमी शराकतदारों को आलमी बाजारों के लिए मिलकर काम करने मिलकर तामीर नौ के लिए भी ये कहते हुए दावत दी कि वह न सिर्फ भारत एक बाजार के तौर पर देखें बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी माने जहां से दुनिया के लिए साजो सामान तैयार किया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बूचा डिस्ट्रिक्ट पर रूस के एक हमले के बाद कम से कम 37 अपराध हलाक हुए। इलाकी फौजी इंतजामिया के सरबराह के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 50 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वो रेस्तरा में भी आग लग गई। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि धमाके के बाद माइला के गांव में गोदाम को नुकसान पहुंचा। खवातीन क्रिकेट में दुबई में बैन अवी क्रिकेट स्टेडियम भारतीय टीम थाईलैंड के खिलाफ टी20 एशिया कप की अपनी मुहिम का आगाज करेगी। मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान होंगी जबकि स्मृति मंधाना नायब कप्तान होंगी। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की खातिर दो रोजा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक आए सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 669 हो गई। 287 भारतीय शहरियों समेत 2000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल ने तबाहकुन सैलाब के पेश नजर भारत की राहत कोशिशों की सताइश की है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने शिकागो कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के वसी बाजार तवील मुद्दती सरमायाकारी की सलाहियत को उजागर किया है। यूक्रेन के बूचा डिस्ट्रिक्ट पर रूस के हमले में 37 अपराध हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज दुबई बैन अवी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम थाईलैंड के खिलाफ टी20 एशिया कप की अपनी मुहिम का आगाज करेगी। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का बिल चाहता है उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारा खास कार्यक्रम गीत सुनहरे। इसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, जो आज भी हम सबकी पहचान है, आज भी हम सबके लिए यादगार हैं।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिससे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि

दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे, जहां वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम गीत बहार का, जिसमें आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, एक से बढ़कर एक ऐसे गाने जो आप सबको पसंद है। आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए यार लाइव न्यूज 24/7।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान के दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता है। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास या उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का आधार भी है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत इस गजल के साथ, इस गीत के साथ, इस पहली पेशकश के साथ।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज एक नगमा एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूं, जानना चाहती हूं, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूं। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूं, पलटती हूं, उसे देखती हूं, तस्वीर बन जाती हूं, खुद को भूल जाती हूं, बेखुद हो जाती हूं।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजने को है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्रोताओं 4:20 हुए हैं, वक्त है नाद ब्रह्म कार्यक्रम का। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में नाद स्वरम प्रस्तुति दुर्गा प्रसाद और साथियों की।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त सन 2026 सुबह के 4:54 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे

इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। तो आप 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें कार्यक्रम। 5:20 का समय देशभक्ति गीतों का है और 5:30 पर आप सुन सकते हैं स्वर रंजनी कार्यक्रम। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी 6:00 हिंदी समाचारों के साथ और 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा। श्रोताओं, 6:40 पर आप सुन सकते हैं चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ अयोध्या कांड भाग 33 आप सुन पाएंगे।

0: अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम प्रफुल्ल सत धारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई
1: सुख टल गुर सेविया सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो जटिया तुग डिठे सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी पट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सुशांदा शाह जिस पास बैठिया सो ही है सज्जन सच्चा पातशाह सुशांदशाह जिस पास बैठिया सो ही है सन्नादा विसाह

तिस पह आप विचारी दर्शन हर देखन कै ताई कृपा करहि तर सतगुर मिलहै।

अखी काड धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहल ता तुझै अरादी जे मार कढे पी त्याई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदा ता छोड़ न जाई जे तुद वाल रह ता कोई कहो आखा

नानक विचार भया दीवाना हर तो दर्शन कहताई चखड़ चागी भी हो वरसा ई गुर देखन जाई समुंद सागर होवे बहु खारा गुर सिख लंग गुर पह जाई जो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई जो धरती सोभ करे जल बरसाए त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का होए सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई

भर भक्ति हर तेरे जिस पावै तिस देवाई जिस तों दे सोई जन पाए होर निफल सब चतराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगै नानक विचारा हर दासन दास कराई जे गुर छिड़के ता मीठा लागै जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोलै सो थाए पाए मनमुख किस थाए न पाई पाला कक्कर वर्फ वरसै गुरसिख गुर देखण जाई सब दिन सिरैण देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेको पाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रैन दिनस गुर चरण राधी दया करहु मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अगाई नानक का प्रभु पूर रहयो है जत कत

dance kar, din se raat na.